ना समझ ही रहने दीजिए अब हमें, ना समझ ही रहने दीजिए अब हमें, इतना समझदार होकर भी क्या करना है। समझदारी के इस दौर में समझ में ही नहीं आता है जब कुछ, समझदारी के इस दौर में समझ में ही नहीं आता है जब कुछ, इससे तो हम ना समझ ही अच्छे हैं। 5:37 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।

बनी रहने दीजिए कुछ ख्वाहिशें अधूरी ही सही, बनी रहने दीजिए कुछ ख्वाहिशें अधूरी ही सही, सारी पूरी हों ये ज़रूरी तो नहीं, सुकून ए ज़िंदगी पर ही ध्यान दीजिए सारा, सुकून ए ज़िंदगी पर ही ध्यान दीजिए सारा, क्योंकि ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं।

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, आसमान से आया फरिश्ता। 5:46 हो चुके हैं, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम भोर सुहानी। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 17वीं तिथि के तदनुसार 8 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:53 हुए हैं। अब हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 5:57 हो चुके हैं। आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दे दें। ठीक 6 बजे का समय रहेगा।

6:44 पर आप सुन सकेंगे श्री रामचरित मानस गान। ठीक 6:55 का समय रहेगा संस्कृत में समाचारों का। ठीक 7 बजे एक बार फिर से होंगे हिंदी में समाचार। 7:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। सात बजकर 10 पर रोजाना की तरह आप सुन सकेंगे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात। 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज सवेरे और ठीक 8 बजे आप सुन सकेंगे समाचार प्रभात।

8:15 पर आप सुन सकेंगे मॉर्निंग न्यूज, 8:30 पर आप सुनेंगे उर्दू में समाचार, 8:45 का समय रहेगा आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है म्यूजिकल दिल लगी। ठीक 9:00 का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का, 9:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार, 9:10 पर जारी रहेगा कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी। ये थी आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। पांच 5:59 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने

बुधवार के इस सुहाने सुबह में आइए अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं अर्पण के जरिए। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और आज साथ हूं मैं आपके बबीता। नमस्कार, सुप्रभात।

मनुष्य को जो सबसे बड़ी विभूति प्राप्त है वो है मानव जीवन। चाहे तुलना निम्न योनि के प्राणियों से करें या देवताओं से, मानव जीवन से श्रेष्ठ और बहुमूल्य संपदा ईश्वर के विभूति भंडार में और कोई है ही नहीं।

क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे,

सदा मतलब निकालने की ही फिराक में नहीं रहना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि स्वार्थ के लिए किसी के साथ अनर्थकारी बर्ताव तो नहीं हो रहा।

वक्त तो चला है 6:30 और 45 सेकंड। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत से परिपूर्ण अर्पण, आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

हम स्वयं ही कर्ता और भोक्ता हैं। कर्म करने की पूरी पूरी स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। जैसे कर्म हम करते हैं ईश्वरीय विधान के अनुसार वैसा फल भी तुरंत या देर में मिल ही जाता है। इस प्रकार अपने भाग्य का निर्माण करने वाले भी हम स्वयं ही हैं। परिस्थितियों को के जन्मदाता भी हम खुद हैं। इसलिए दूसरों पर दोषारोपण करना उचित नहीं है।

श्री राम की बारात के स्वागत में तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही, इन पांच वाद्य यंत्रों से वेद ध्वनि, वंद्य ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि तथा हुल ध्वनि, ये पंच ध्वनि हो रही है और उसके साथ गूंज रहा है मंगल गान। ब्रह्मा समेत श्रेष्ठ देवता ब्राह्मणों का वेश धारण कर ये समारोह निहार रहे हैं। समारोह की सुंदरता तथा गरिमा की उपमा के अभाव में कवि इतना ही कह पाते हैं कि इनके समान यही हैं। समाधियों के मिलन को देखकर ब्रह्मा का कहना है कि जब से उन्होंने जगत की रचना की, बहुत विवाह देखे और सुने, किंतु सभी प्रकार से समान साज समाज और समता वाले समधि आज ही देखने

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा. अथ वार्ताः. भारत इण्डोनेशिया रणनीतिक सहभागित्वस्य सुदृढाह्वानं कुर्वन् प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् एतत् न केवलं द्वयोः देशयोः समृद्धौ अपितु क्षेत्रीय वैश्विक शान्ति स्थिरतासु च योगदानं प्रदास्यति इति. जकार्ता नगरे इण्डोनेशिया देशस्य संसदं सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं विकासस्य मार्गम् अनुसरति न तु विस्तारवादस्य.
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास. आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ. भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है.
0: श्री मोदी द्वयोः देशयोः जनानां लाभाय यूपीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप इत्येतान् शिक्षां नवानवेषणं च समेत्य आंकिकीय सार्वजनिक अवसंरचनायां सहयोगस्य वर्धनाय अपि बलं प्रदत्तवान्. तत्पूर्वं प्रधानमन्त्री मोदी जकार्ता नगरे इण्डोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियान्तो इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तां कृतवान्. उभय नेतृभ्याम् परस्पर हितस्य क्षेत्रेषु सहयोगं वर्धयितुं ज्ञापनपत्राणाम् आदान प्रदानमपि कृतम्. श्रीमोदी वर्याय एकस्मिन् समारोहे राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियान्तो इत्यनेन इण्डोनेशिया गणराज्यस्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारं बिन्ताङ्ग आदिपूर्णा इति प्रदत्ता. शिलातैल प्राकृतिक वातेन्धन मंत्री हरदीप सिंह पुरी अवदत् यत् यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तरे अशोधित तैलस्य मूल्यानि स्थिरानि उतवा न्यूनानि भवन्ति तर्हि आंतरिक पेट्रोल डीजल इत्येतयोः मूल्यानि सकारात्मक दिशि प्रवर्धन्ते इति अपेक्षा अस्ति. मंत्री विश्वासं प्रकटितवान् यत् उपभोक्तृभ्यः दृक्पथः अनुकूलः एव अस्ति यतः वैश्विक तैल वातेन्धनापूर्तिः निरन्तरं विस्तृता अस्ति इति. नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य विकसित भारत शिखर सम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीपुरी अवदत् यत् भारतेन अद्यतनीयेषु दशकेषु वैश्विकोर्जा व्यवधानानां कूटनीतिक संवादस्य समायोजित नीतिगत हस्तक्षेपस्य देशीयोत्पादन वर्धनस्य आयातस्य विविधीकरणस्य च संयोजनमाध्यमेन सफलतया समाधानम् अकरोत् इति. विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकर अवदत् यत् भारत बहरीन सहभागित्वं निरन्तरं गहनं भवति. डॉ जयशंकर ह्यः बहरीन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देश समृद्ध होंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं बल्कि विकास के मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: श्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने संबंध समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को इंडोनेशिया में परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर की बहरीन यात्रा कल संपन्न हो गई। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के सुल्तान हमद बिन ईसा अल खलीफा और शहजादे तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्र ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए। इससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन अवैध धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। अमरीका ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर हुई कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अंतिम 16 में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वैंकूवर में दोनों टीम निर्धारित समय में कोई गोल नहीं कर सकी। इसके बाद स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज की। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक सौराष्ट्र कच्छ विदर्भ राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हर सुबह हमें ये अवसर देती है कि हम अपने सपनों की ओर एक नया कदम बढ़ाएं। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर नई सुबह की सुनहरी किरणों के साथ आपका स्वागत है गोल्ड सुप्रभात में। और आज साथ हूँ मैं आपके बबीता। नमस्कार, सुप्रभात।

कल से हो रही बारिश ने मौसम का मिजाज बिल्कुल बदल दिया है। मौसम हो गया है बेहद सुहाना और तापमान में भी गिरावट आई है। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो चलिए इस खूबसूरत बदलाव को महसूस करते हुए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

वक्त तो चला है 7:22 और 21 सेकेंड। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं गोल्ड सुप्रभात, और आज साथ हूँ मैं आपके बबीता।

ये ज़रूरी नहीं कि खुशी सिर्फ बड़े बड़े काम करने से मिलती है। खुश होना इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप छोटी छोटी बातों को किस नज़रिए से देखते हैं और जीवन के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है वो कैसा है। आप अपनी भावनाओं को दबा के रखते हैं या उसका इजहार करते हैं। तो भाई, हम तो आपको यही सलाह देंगे कि जीवन में अपने लक्ष्य को आप आसानी से पा सकें उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहें और वैसा ही काम करें जिसमें आपको संतुष्टि मिले, साथ ही खुद के लिए भी समय निकालें और अपना शौक पूरा करने की भी पूरी पूरी कोशिश करें। आकाशवाणी का FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं गोल्ड सुप्रभात। तो आइए इस भीगे हुए खूबसूरत मौसम को एंजॉय करते हैं और सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात। इजाजत दीजिए बबीता को और आइए अब सुनते हैं समाचार सेवा प्रभात का कार्यक्रम आज सवेरे।

0: नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग।
1: बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो।
0: मित्रता की सच्ची परीक्षा संकट में नहीं, उत्कर्ष में होती है। जो मित्र के उत्कर्ष को बर्दाश्त कर सके, वही सच्चा मित्र होता है।
1: चलाती वो खुद अपने राह बनाता, गिरता संभलता।
0: एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
2: नमस्कार मनोज एंड टू आवर लिसनर्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। वेल वी वेलकम यू अलोंग टू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। टुडे इट्स 8th ऑफ जुलाई 2026। वेल मेक ईच डे, every hour, every minute, every second count. With that, let's start with our news magazine program with the headlines first.
0: जी, भारत और इंडोनेशिया ने सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति के अंतर्गत नामित आतंकवाद और आतंकवादी संगठनों सहित विश्व स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने आतंकवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले हिंसक उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। आतंकवाद के प्रति कड़ी नीति की पुष्टि करते हुए दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र और वित्तीय कार्रवाई कार्यबल सहित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ाने का संकल्प लिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के बीच संबंधों का उल्लेख करते हुए भारत और इंडोनेशिया ने अपने घरेलू कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुसार सूचना साझा करने और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग पर समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत किया। इस पर जल्द ही हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। दोनों देशों ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने विकसित भारत

0: 47 विजन और इंडोनेशिया के इंडोनेशिया एमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति सुबियांतो को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दोनों देश सदियों के साझा इतिहास, समुद्री संबंधों और सांस्कृतिक आदान प्रदान से जुड़े स्वाभाविक और भरोसेमंद साझेदार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम विश्व एक परिवार है और इंडोनेशिया के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भिनेका तुंगल इका, विविधता में एकता के साझा मूल्य, भारत इंडोनेशिया साझेदारी का मार्गदर्शन करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा ऐतिहासिक अनुभव, विकासात्मक चुनौतियां और समान आकांक्षाएं भारत और इंडोनेशिया को रणनीतिक साझेदार के रूप में नई ऊंचाइयों तक ले जाने का आधार है। भारत की विकास यात्रा और विकसित भारत 2047 तथा स्वर्णिम इंडोनेशिया 2045 की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में गहन सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करने और एक स्वतंत्र, समावेशी और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए इंडोनेशिया के साथ मिलकर काम करने पर भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया।
1: The Prime Minister's office held a high-level review meeting yesterday to review possible impact of El Niño on various sectors and preparedness measures. The meeting was held under the chairmanship of Principal Secretary to Prime Minister Dr. P.K. Mishra at the Seva Teerth. Secretaries and senior officials of more than 15 ministries were present at the meeting. Dr. Mishra directed that the overall situation should be continuously monitored and the impact of the monsoon or delayed monsoon on vulnerable districts must be assessed in coordination with states so that remedial action can be taken up when necessary. During the meeting, officials of the IMD presented the overall rainfall situation in June and July till yesterday.
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। ईडी की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रेयर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 एसपी हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी के एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है।
1: The US military has launched new strikes against Iran hours after 3 merchant ships were struck in the Strait of Hormuz. In a statement posted to social media, US Central Command said American forces launched the strikes to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. One US official said the military is targeting Iranian air defense systems, coastal surveillance systems, ground-to-air missiles, as well as launch sites for anti-ship cruise missiles and drones. Iranian state media reported the sound of explosions in Keshem and Bandar Abbas. Iran's Deputy Foreign Minister Kazem Gharib Abadi said the new attacks by the US are a violation of the agreement.
0: पुरुष टी20 क्रिकेट

0: इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया है। पांच मैचों की श्रृंखला के तीसरे मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए कल रात नॉटिंघम में इंग्लैंड ने भारत को 202 रन का लक्ष्य दिया। भारतीय टीम 12वें ओवर में मात्र 76 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की ओर से जोश टोंग ने 4 विकेट लिए जबकि जोफ्रा आर्चर ने 3 विकेट लिए। जोफ्रा आर्चर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ इंग्लैंड श्रृंखला में 2-0 की बना चुका है।
1: In football, Switzerland beat Colombia 4-3 in a penalty shootout in Vancouver to reach the quarterfinals of FIFA World Cup for the first time since 1954. In another round of 16 match, Argentina defeated Egypt 3-2 in Atlanta. Argentina was trailing by 2 goals till 78th minute when the defending champions pulled off a stunning comeback with Cristiano Ronaldo scoring the first goal at 79 minutes. The equalizer came through Messi in 83rd minute, while Enzo Fernandez completed the turnaround with the winner in the extra time. With this win, Argentina entered the quarterfinals of the tournament.
0: अब महानगरों का रुख करते हैं। पहले दिल्ली की खबर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल जिला विकास समिति DDC चेयरमैन एपेक्स कमेटी की बैठक में दिल्ली के विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं की समीक्षा की। बैठक में मिशन कायाकल्प के अंतर्गत जर्जर सरकारी विद्यालयों के पुनर्विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। श्रीमती गुप्ता ने आगामी कांवड़ यात्रा और मानसून के दौरान संभावित जल भराव से पटने की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को समन्वित और प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री उदय योजना के अंतर्गत अनधिकृत कॉलोनियों में विशेष पंजीकरण शिविर आयोजित करने को कहा ताकि नागरिक इस वर्ष की 31 अक्टूबर से पहले अपना पंजीकरण करा सके। दिल्ली की एक और खबर। जामिया मिलिया इस्लामिया के मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र में कल से राजभाषा हिंदी और विभिन्न कार्यालयों में उसका प्रयोग विषय पर 6 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र में भारत सरकार के राजभाषा विभाग के संयुक्त निदेशक कार्यान्वयन कुमार पाल शर्मा ने कहा कि प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रभावी प्रयोग सुशासन और जनसंपर्क को मजबूत बनाता है। 13 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में राजभाषा नीति, कार्यालयी हिंदी और प्रशासनिक लेखन जैसे विषयों पर विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे।
1: मनोज, वी विल नाउ हेड टू चेन्नई।
0: जी,
1: फर्स्ट अपडेट। The Directorate of Vigilance and Anti-Corruption seized 3.4 lakh rupees unaccounted cash while on a sudden inspection at an RTO office on the Tamil Nadu-Karnataka border near Hosur yesterday. The operation was headed by DSP Jayakumar. A team of 10 senior officers along with over 100 police personnel began the inspection around 5 in the morning. During the raids, officials confiscated unexplained unaccounted cash. Another update, U.S. Consulate General Chennai celebrated 250 years of American independence in engaging ways across the city. The Freedom 250 initiative, this is the initiative, the Freedom 250 honors this historic milestone by highlighting America's rich history and underscoring the deepening convergence of U.S.-India strategic interests. Among the highlights of the celebrations, Chennai's iconic Ripon Building, headquarters of Greater Chennai Corporation, and VIT Chennai, a premier South Indian technology institution, were illuminated in the colors of the American flag. The U.S. Consulate General, this building actually, also transformed, adorned with giant U.S. flags and striking red, white, and blue lighting, which is in fact, these are the colors of the American flag.
0: अब मुंबई की खबर। मुंबई नगर आयुक्त अश्विनी भिड़े ने मंगलवार को नालियों की अपर्याप्त सफाई को हालिया जलभराव का कारण बताए जाने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि शहर की कटोरे नुमा स्थलाकृति, अत्यधिक तेज वर्षा और उच्च ज्वार इसके मुख्य कारण थे। उन्होंने कहा कि बीएमसी ने नालियों की सफाई का काम किया था और जमा हुए वर्षा जल की त्वरित निकासी सुनिश्चित की थी। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि मैन होल से संबंधित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सूक्ष्म स्तर की योजना में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मुंबई में 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच 300 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई।

0: ये दिल्ली, पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों से अधिक है। उन्होंने कहा कि 6 पंपिंग स्टेशनों, 9 मिनी पंपिंग स्टेशनों और 540 जल निकासी पंपों की मदद से जल भराव को शीघ्रता से साफ कर दिया गया, जबकि तेज बारिश के बावजूद सड़क और उपनगरीय रेल सेवाएं काफी हद तक सुचारू रूप से चलती रहीं। मुंबई की एक और खबर, 7 जुलाई तक मुंबई की 7 झीलों में जल भंडार 28.92% तक पहुंच गया है। नगर निगम ने बताया कि पिछले 24 घंटों में जलाशयों का जलस्तर 12% बढ़ा है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जल संग्रहण क्षेत्रों में अभी भी पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है। बृहन मुंबई नगर निगम ने कहा कि वो जल उपलब्धता पर कड़ी नज़र रख रही है और ज़रूरत पड़ने पर जल कटौती पर उचित निर्णय लिया जाएगा।
1: The first update from Bengaluru, a Karnataka NDA delegation led by former Chief Minister H.D. Kumaraswamy met Chief Election Commissioner and submitted a memorandum alleging serious irregularities in the Special Intensive Revision SIR of electoral rolls in Karnataka. The delegation claimed to have submitted documentary and video evidence of the violations, including bulk filling of enumeration forms, lack of mandatory door-to-door verification and other alleged lapses. It urged the Election Commission to order re-verification of the completed forms, appoint central observers from outside Karnataka, and initiate action against those found responsible for any violations. Another update, this is about Safe Footpath campaign. So street vendors across Bengaluru have called for a complete shutdown and a mass protest today against the Greater Bengaluru Authority's ongoing Safe Footpath campaign, alleging illegal evictions, harassment and loss of livelihood. So 6 major street vendor unions have jointly called for the protest, alleging that push carts and goods were seized without due process in violation of the Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act 2014. They have demanded an immediate halt to evictions, restoration of vending spaces, return of confiscated goods, compensation for losses, and a fresh survey of vendors.
0: अब पश्चिम बंगाल कोलकाता की खबर, पश्चिम बंगाल में बंद पड़ी सभी जूट मिलें 10 जुलाई तक फिर से खुलने वाली हैं। मंगलवार को नए सचिवालय में श्रम मंत्री की उपस्थिति में त्रिपक्षीय बैठकें हुईं, जिनमें हुगली, हावड़ा, उत्तर 24 परगना और पूर्वी बर्धमान जिलों की इंडिया जूट हेस्टिंग्स, गोंदलपाड़ा, एम्पायर, लूमटेक्स, शक्तिगढ़ और हावड़ा जूट मिलों के प्रबंधन और श्रमिक संघ के प्रतिनिधि शामिल थे। बैठक में श्रम राज्य मंत्री भास्कर भट्टाचार्य, विशेष श्रम आयुक्त आशीष सरकार और अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि ये सभी जूट मिलें 10 जुलाई तक फिर से खुल जाएंगी। इस निर्णय के बाद मिल अधिकारी काम पर लगी रोक हटाने के लिए नोटिस जारी करेंगे। पहले रखरखाव का काम शुरू होगा और उत्पादन 16 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा। श्रम मंत्री अर्जुन सिंह और श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा शुरू किए गए इस निर्णय से 20,000 से अधिक जूट मिल श्रमिकों को रोजगार फिर से मिलने की उम्मीद है।
1: हैदराबाद नाउ, The Telangana government has established 4 specialized working groups to strengthen the Hyderabad Unified Metropolitan Transport Authority in a major push to create a unified data-driven traffic management system. The initiative follows a proposal by Hyderabad Unified Metropolitan Transport Authority's managing director aimed at boosting inter-agency coordination, streamlining integrated urban mobility planning and accelerating technology adoption across the Hyderabad metropolitan area.
0: अब महानगरों दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल जानते हैं। दिल्ली में आज आम तौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होगी। यहाँ का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और तेज़ बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आज आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं शगुन से।
1: सो मनोज, आई एम बिगिनिंग विद चेन्नई।
0: जी जी,
1: चेन्नई इज लाइकली टू

0: Witness a partly cloudy sky. The temperatures are expected to range between minimum 30 degrees Celsius and maximum 38 degrees Celsius. If we talk about Bengaluru, is forecast to experience a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature is expected to be around 21 degrees, while the maximum may reach 29 degrees. Hyderabad is likely to see a generally cloudy sky, much like Delhi, light rain or drizzle. Temperatures are expected to range from 27 degrees Celsius to 34 degrees Celsius. So this was all about weather in the metro cities.
1: और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का. आज 8 जुलाई है, देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है.
0: Right, Manoj. So first, we'll take our listeners way back in time. In the year 1497, Vasco da Gama sailed from Lisbon with a fleet of 4 vessels, and he ultimately opened a sea route from Western Europe to Asia by way of the Cape of Good Hope, ushering in a new era in world history.
1: जी, 1858 में आज ही के दिन ग्वालियर के किले के पतन के बाद लॉर्ड कैनिंग ने शांति की घोषणा की थी.
0: In 1889. The financial world changed with the publication of the inaugural issue of the Wall Street Journal.
1: 1918 में आज ही के दिन भारतीय संविधान में सुधार के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई.
0: In 1947, reports emerged about a UFO crash landing in Roswell, New Mexico. UFO crash. Wow.
1: 1954 में आज ही के दिन सतलुज नदी पर निर्मित भाखड़ा नांगल पनबिजली परियोजना पर बनी सबसे बड़ी नहर का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था.
0: भाखड़ा नांगल डैम.
1: 1975 में आज ही के दिन म्यांमार के बगा में आए भूकंप में हजारों मंदिर ध्वस्त हो गए तथा जान माल की भारी क्षति हुई. 2005 में आज ही के दिन जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर समूह 8 के देशों में सहमति बनी. 2012 में आज ही के दिन असम में भयावह बाढ़ ने विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 13 गैंडों समेत 500 से अधिक वन्य प्राणियों को लील लिया.
0: In 2022, the world mourned the assassination of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe.
1: और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्य तिथि है. तो आपसे शुरू करते हैं.
0: राइट, फर्स्ट वी आर रिमेम्बरिंग क्रिस्टियन हाइगंस, वेल द पॉलीमैथ हु इज परहैप्स बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन ऑप्टिक्स, वेयर ही मेड ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट. इन 1678, मनोज, ही पब्लिश्ड अ बुक कॉल्ड त्रेते द ला लुमियर, which detailed his discoveries about the behavior of light waves. So Trete is, I think, the traits of the light. Lumiere means light. He was the first person to propose that light traveled in waves rather than particles, which was a radical idea at that particular time. Huygens also discovered the phenomenon of diffraction, which is bending of light around obstacles. Science students will get to know about it, will be actually understanding what I'm actually explaining them. But Huygens' contributions to physics extended beyond optics. He also made significant advancements in the field of mechanics. Now, science students might be understanding this as well. He was the first person to describe the concept of centrifugal force, which is a force that acts on an object moving in a circular path. Huygens also developed a new theory of motion, which helped to explain the motion of objects in a gravitational field. Well, groundbreaking discoveries. He also discovered Saturn's moon Titan in 1655 using a telescope that he had built himself. How? He also made significant contributions to the study of rings of the Saturn, which were a mystery at that particular point of time. So he had a profound impact on the scientific community of his time and helped to pave the way for many of the scientific advancements that followed. Many contributions to his name.
1: आज पुण्यतिथि है सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी की. उन्हें लोग उनके वास्तविक नाम से न जानकर जगदीप के नाम से जानते हैं. उनका जन्म 19 मार्च 1939 को दतिया, मध्य प्रदेश में हुआ था. वे भारतीय सिनेमा के मशहूर हास्य अभिनेता थे। उन्होंने अपने हास्य अभिनय से दर्शकों में काफ़ी लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में फिल्म अफसाना से की थी। जगदीप ने 400 से अधिक फिल्मों में काम किया। वे साल 1975 में आई मशहूर फिल्म शोले में सूरमा भोपाली के किरदार से काफ़ी चर्चा बटोरने में कामयाब रहे थे। आइए सुनते हैं उन पर फिल्माया एक गीत और

0: सूरमा भाई माफ कर दो, वो तो मैं माफ कर देता, मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आग कैसे गए।
1: फिर क्या हुआ?
0: अरे फिर होना क्या था, ये तो स्टिक रखता हूँ, अब जो मैंने पिन फिनाई तो जाना सुधाई कर दी, धटा धट धटा धट, बहुत मारा बहुत मारा।
1: फिर क्या हुआ?
0: बस फिर होना क्या था, मैंने दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा।
1: क्या कहा?
0: क्या कहा?
2: Still cracks us up. Today we are also remembering Louis Austin. Well, band leader, session musician, composer, singer and arranger during the 1920s classic blues eras. She and Lil Hardin Armstrong, they are often ranked as two of the best female jazz blues piano players of the period.

आज जन्मदिन है रेवती का। उनका असली नाम आशा केलुन्नी है। वे एक दिग्गज भारतीय अभिनेत्री और निर्देशक हैं, जिनका जन्म 8 जुलाई 1966 को कोच्चि, केरल में हुआ है। वे मुख्य रूप से तमिल और मलयालम सिनेमा में सक्रिय हैं। उन्होंने बॉलीवुड की कई बेहतरीन फिल्मों में भी शानदार अभिनय किया है और 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं। रेवती ने 1983 में तमिल फिल्म मन वासनई से डेब्यू किया। सलमान खान के साथ फिल्म लव और फिर मिलेंगे, इसके अलावा रात और हाल ही में टाइगर 3 में उनकी भूमिकाओं को काफी सराहा गया है। रेवती ने मित्र, माय फ्रेंड और हाल ही में काजोल अभिनीत सलाम वेंकी जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया है। आइए सुनते हैं उन पर फिल्माया एक गीत।

0: आज जन्मदिन है बिप्लब चैटर्जी का। बिप्लब चैटर्जी का जन्म 8 जुलाई 1948 को अविभाजित भारत की बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ है। बिप्लब चैटर्जी एक जाने माने भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्देशक हैं। वे बांग्ला सिनेमा में खलनायक और नकारात्मक किरदार निभाने के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। उनके फिल्मी करियर की शुरुआत प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की फिल्म प्रतिद्वंदी से हुई थी। आइए सुनते हैं उनकी एक फिल्म का संवाद।
1: ডায়রি তাহলে তোমাকে এটা লিখতে হয়েছে। হ্যাঁ
2: আগে হ্যাঁ ওই লেখা পর্যন্ত তদন্ত আর কে করছে?
1: না না না না না, তদন্ত তোমাকে করতেই হবে দাদুগা, তদন্ত একটা করতেই হবে। সুতরাং দেরি না করে তাড়াতাড়ি একটা তদন্ত শুরু করে দাও।
3: Today, listeners, we're also remembering a country music singer, songwriter, and an actor and a businessman as well, Toby Keith Covell. Well, he began using the stage name Toby Keith early in the music career. Well, his debut single, Should Have Been a Cowboy, topped the Billboard Hot Country Songs chart, and another song also topped the charts, How Do You Like Me Now? The song that we have chosen is As Good As I Was, As I Once Was.

का 1966 में सूरज के साथ आई थी। उन्होंने 1966 में प्रदर्शित फिल्म 10 लाख में रूपा और फिल्म दो कलियां में दोहरी भूमिका निभाई। आइए सुनते हैं उन पर फिल्माया गीत।

आज जन्मदिन है नीतू सिंह का। नीतू सिंह का जन्म 8 जुलाई 1958 को नई दिल्ली में हुआ है। वे हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। उन्होंने 8 साल की उम्र में बेबी सोनिया के नाम से अभिनय की शुरुआत की। बाल कलाकार के रूप में उनकी पहली भूमिका

0: और अब समय आपसे विदा लेने का हो गया है, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यही समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट।
1: थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन।
0: नमस्कार।

0: रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
3: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और अक्सर उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। बंदास गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
4: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। नौवीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रंक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने

0: जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत पहली जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
2: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
3: अमरीका के एक अधिकारी ने बताया कि अमरीका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमरीका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमरीका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार। गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी। 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारत और इंडोनेशिया ने हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की है और इस लानत से निपटने के लिए तालमेल के साथ फैसला कुन बैन अलाक्वामी कोशिशों की जरूरत उजागर की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करने वाले पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान और ज्यादा मजबूत कलीदी साझेदारी पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने एल नीनो के असरात का जायजा लिया है और मरकजी वजारतों से कहा है कि वो तैयारी के इकदाम पर रियासतों के साथ मिलकर काम करें। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने तृणमूल कांग्रेस से वाबस्ता बैंक खातों में माली बेजाबतगियों के सिलसिले में कोलकाता में कई मकाम पर तलाशी की कार्रवाई की है। अमरीका ने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों पर हमलों के बाद ईरान के खिलाफ हमले किए हैं और ईरान के तेल पर अपनी पाबंदियों में नरमी को मनसूख कर दिया है। और फुटबॉल में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत और इंडोनेशिया ने हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत की है और बैन अलाक्वामी कानून के मुताबिक इस खतरे से निपटने के लिए फैसला कुन मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। जकार्ता में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के दरमियान दोतरफा बातचीत के बाद जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में दोनों रहनुमाओं ने आलमी सतह पर करार दिए गए दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया, जिनमें वो दहशतगर्द और दहशतगर्द तंजीमें भी शामिल हैं जिन्हें अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 1267 बंदिशों की कमेटी ने नामजद किया हुआ है। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी और इसके लिए साजगार पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम और इससे निपटने में तआवुन को गहरा करने से इत्तेफाक किया है। तआवुन में दहशतगर्दी के लिए रुकूम मुहैया किए जाने और काले धन को जायज बनाने की रोकथाम को मुस्तहकम बनाने, दहशतगर्दाना सरगर्मियों को माली मदद पहुंचाने की रोकथाम, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के दहशतगर्द ग्रुपों के हाथों इस्तेमाल और लोगों को ऑनलाइन बुनियाद परस्त बनाए जाने से निपटने, नीज डिजिटल प्लेटफॉर्मों के जरिए दहशतगर्दों की भर्ती रोकने के इकदामात शामिल हैं। दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने वाले रवैये का जिक्र करते हुए दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दों के माली नेटवर्क्स को रोकने और दो तरफा व कसीर मुल्की तआवुन में इजाफा करने का आज़्म किया, जिसमें अक़्वामे मुत्तहिदा और माली कार्रवाई की टास्क फोर्स FATF की सरगर्मियां भी शामिल हैं। दहशतगर्दी और बैन मुल्की मुनज्जम जराइम के दरमियान ताल्लुक का एतराफ़ करते हुए भारत और इंडोनेशिया ने अपने घरेलू कवानीन और बैन अलाक़वामी जिम्मेदारियों के मुताबिक एक दूसरे को मालूमात फराहम करने और बेहतरीन तौर तरीकों से आगाह करने से इत्तेफाक किया। उन्होंने दहशतगर्दी के तआवुन से निमटने के लिए एक मुफाहमतनामे को जल्द मुकम्मल किए जाने का भी खैर मकदम किया। उम्मीद है कि इस पर जल्द दस्तखत किए जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ऐसे पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्होंने इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब किया। जकार्ता में इंडोनेशिया के कानून साज अरकान से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने ऐसे दोतरफा ताल्लुकात में एक नए दौर के लिए कहा जो मुश्तरका तहजीबी विरासत जम्मू

0: सतह की जायजा मीटिंग मुनाकिद की। वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पी के मिश्रा की सदारत में यह मीटिंग सेवा तीर्थ में हुई। इस मीटिंग में 15 से ज्यादा वजारतों के सेक्रेटरीज और आला अहदेदार मौजूद थे। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: इस मीटिंग में डॉक्टर मिश्रा ने यह हिदायत दी कि मजमूई सूरतेहाल पर लगातार नजर रखी जाए और रियासतों के साथ तालमेल कायम करके जल्द मुतासिर होने वाले जिलों पर मानसून या ताखिर से पहुंचने वाले मानसून के असरात का जायजा लिया जाए ताकि जरूरत पेश आने पर जरूरी इकदामात किए जा सकें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन जिलों में पीने के पानी की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने दस्तियाब पानी का इस्तेमाल मुनासिब अंदाज से किए जाने की जरूरत उजागर की। इधर भारतीय मौसमियात महकमे के अफसरों ने जून और जुलाई में बारिश की मजमूई सूरतेहाल का खाका पेश किया। पीने के पानी और सफाई सुथराई के महकमे ने बताया कि वो लगातार नजर रखे हुए हैं और फिलहाल सूरतेहाल मुस्तहकम है। दिल्ली से प्रिया मोंडाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कोलकाता और उसके अतराफ 5 ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बाज बैंक खातों के जरिए मुश्तबा रकूम की मुंतकली गैर कानूनी तरीके से रकम इकट्ठा करने और मुबैना गैर कानूनी माली लेन देन के सिलसिले में की गई है। तलाशी की यह कार्रवाई एविएशन के शोबे में काम करने वाली प्राइवेट फर्म केयरवेल ग्रुप और उसके डायरेक्टर्स और एक मुबैना इलेक्टोरल ट्रस्ट से वाबस्ता ठिकानों पर की गई। ईडी की इब्तदाई छानबीन के मुताबिक 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मशकूक मकासद के लिए एविएशन और ट्रैवल कंपनियों के तवसुस से मुंतकिल की गई। एजेंसी ने इंकशाफ किया है कि अप्रैल 2023 और इस साल जून के दरमियान तृणमूल कांग्रेस के खातों से तकरीबन 160 करोड़ रुपए प्राइवेट एविएशन फर्म और उससे वाबस्ता इदारे को मुंतकिल किए गए। अमरीकी फौज ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ये हमले आबनाए हुरमुज में 3 तजारती जहाजों पर हमले के कुछ ही घंटे बाद किए गए हैं। अमरीका की मरकजी कमान ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा है कि अमरीकी फौजों ने यह हमले एक बैन अलावामी गुजरगाह में कमर्शियल जहाजों पर हमले करने का सख्त बदला लेने के लिए किए हैं जिनमें बेकसूर शहरी सवार थे। इधर ईरान के सरकारी मीडिया ने भी किशम और बंदरगाह और बंदर अब्बास में इन धमाकों की इत्तला दी है। ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमरीका की तरफ से ये ताज़ा हमले माहदे की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने एक लाइसेंस को भी मनसूख कर दिया है जिसके तहत अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई को ख़त्म करने से मुतालिक एक अबूरी समझौते के हिस्से के तौर पर ईरान के तेल की फरोख्त की इजाज़त दी गई थी। अमरीका के अफसर ने बताया कि यह लाइसेंस इसलिए मनसूख किया गया है कि आबनाए हुरमुज में ईरान की कार्रवाई नाकाबिले कबूल है और ज़रूरत है कि ईरान इसका नतीजा भुगते। फुटबॉल में स्विट्जरलैंड वंकूवर में पेनल्टी शूट आउट में कोलंबिया को 3-4 गोल से हराकर 1954 के बाद से पहली मर्तबा फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। इजाफी वक्त के बाद भी दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकी थीं। इधर प्री क्वार्टर फाइनल के एक और मैच में एटलांटा में अर्जेंटीना ने मिस्र को 2-3 गोल से हरा दिया। अर्जेंटीना 78वें मिनट तक 2 गोल से पीछे चल रहा था। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना की तरफ से क्रिस्टियानो रोमारो ने 79वें मिनट में पहला गोल किया। इसके बाद 83वें मिनट में मेसी ने गोल करके स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया और एन्जो फर्नांडेज ने इजाफी वक्त में फैसलाकुन गोल करके अर्जेंटीना की जीत की राह हमवार कर दी। मर्दों की क्रिकेट में नॉटिंगम में ट्रेंट ब्रिज के मकाम पर कल रात तीसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया। इस तरह इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। इंग्लैंड ने भारत के सामने 202 रन का निशान रखा था लेकिन भारत की पूरी टीम 11 ओवर्स और चार गेंदों में सिर्फ 76 रन बनाकर आउट हो गई। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे से मुतालिक खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, भारत इंडोनेशिया में शराकत दारी के सुनहरे बाब का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को इंडोनेशिया के आला तरीन शहरी एजाज से नवाजे जाने की खबर को भी अखबारात ने पहले सफ़े पर पेश किया है। माहौलियाती तहफ़ के बगैर तरक्की सरासर बेमाना है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को इनकलाब और दीगर अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने केरलम के वायनाड में बड़े पैमाने पर चट्टान खिसकने के वाक़े में कम अज़ कम 3 अफराद के हलाक और मुतअद्दिद के जख्मी होने की खबर को अपने पहले सफ़े पर शाये किया है। इसके अलावा आज के अखबार की चंद बैन

भीगे हुए इस खूबसूरत मौसम में गर्मा गर्म चाय की प्याली हाथ में लिए चलते हैं आज के म्यूजिकल दिल्लगी के सुरीले सफर पर, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आज साथ हूँ मैं आपके बबीता। नमस्कार।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

वक्त हो चला है 8:53 और 50 सेकंड। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। म्यूजिकल दिल लगी में एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। हम भाग्यशाली हैं कि कुदरत ने सिर्फ हमें यानी कि मनुष्य को ही हंसी का खजाना दिया है, फिर भी पता नहीं क्यों उसे बरतने में हम कंजूसी करते हैं। किसी ने कुछ हंसी

रोजाना कम से कम एक घंटा हंसी खुशी के माहौल में बिताने से तनाव बढ़ाने वाले हॉर्मोन्स घट जाते हैं और न्यूरोपेप्टाइड नाम के हॉर्मोन्स वैसे तो सामान्य तौर पर हमारे शरीर में बनते ही रहते हैं, लेकिन जानते हैं हंसने से ये ज्यादा मात्रा में बनने लगते हैं। वैसे भी थोड़ी सी हंसी जीवन को ढेर सारी खुशियों से भर देती है, तो हंसिए, खुश रहिए और अपनी उम्र दराज कीजिए और साथ ही सुनते रहिए FM गोल्ड।

इसी के साथ ही अनुमति दीजिए बबीता को, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा इसी चैनल पर। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार के बाद नाज होंगी आपके साथ म्यूजिकल दिल लगी में। तो फिलहाल मैं चलूं, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबायो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।
1: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे बड़े मंदिर हैं। भारत और इंडोनेशिया ने प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कल एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की। प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों में छापेमारी की। छापेमारी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों तथा एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों की गई। मामले की जांच जारी है। अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि होर्मुज में ईरान द्वारा निर्दोष नागरिकों द्वारा संचालित वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमेरिका के ये हमले समझौते का उल्लंघन है। फीफा फुटबॉल विश्वकप में स्विट्जरलैंड कोलंबिया को हराकर 1954 के बाद पहली बार विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड विश यू अ हैप्पी वाली मॉर्निंग। म्यूजिकल दिल्लगी लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी होस्ट और पक्की वाली दोस्त नाज। तो फिर चलिए करते हैं शो का आगाज और सुनते हैं आज की प्लेलिस्ट से ये पहला गाना।

फूल में रंग हो, खुशबू हो, लेकिन नमी न हो, तो समझना कि वो बुके होगा फूल नहीं। किताबें महंगी हों, मशहूर हों, लेकिन करीने से सजी हों, तो समझना कि वो रखी गई हैं, पढ़ी नहीं गई हैं। ठीक इसी तरह जिंदगी में सब कुछ हो, लेकिन इंतजार ना हो, दुख ना हो, कोई मलाल ना हो और पछतावे की कुछ सिलवटे ना हो, तो समझ लेना कि जिंदगी तो अभी ठीक से शुरू ही नहीं हुई।

जी हाँ, तो हंसते मुस्कुराते चलिए जान लेते हैं आज यानी 8 जुलाई को क्या है मौसम का हाल। तो राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में छाए हैं बादल, मौसम हो गया है सुहाना और रिमझिम बारिश ने गर्मी से दे दी है राहत। मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री और मिनिमम टेम्परेचर आज रह सकता है 27 डिग्री के आसपास। सूर्योदय हुआ है आज सुबह 5:29 के लगभग और सूर्यास्त का अनुमान है शाम 7:22 पर होने का। ह्यूमिडिटी का लेवल 90% यानी काफी ज्यादा रहने की उम्मीद है, तो ऐसे में रखना है अपना ख्याल, खान पान, स्वच्छता और सबसे ज्यादा मच्छरों से बचकर रहना है, क्योंकि यही मौसम है जब बैक्टीरिया और वायरस बहुत तेजी से फैलते हैं। तो थोड़ी सी सावधानी के साथ एंजॉय करना है ये रिमझिम मौसम भी और साथ में ये अगला ट्रैक भी।

है 8 जुलाई, दिन बुधवार और हर तरफ है रिमझिम बारिश की फुहार। इसके अलावा क्यों खास है आज की तारीख, चलिए अब इस पर हो जाए थोड़ी सी बात। तो भाई आज का दिन भारतीय क्रिकेट को एक नया तेवर, नया आक्रामक अंदाज देने वाले हमारे दादा यानी सौरव गांगुली जी को डेडिकेटेड है, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन। लॉर्ड्स के मैदान पर टी शर्ट लहराने से लेकर भारतीय टीम में जीत का जज्बा भरने वाले प्रिंस ऑफ कोलकाता को हम सब की ओर से जन्मदिन की ढेरों बधाइयां। दादा के इसी कप्तानी अंदाज और कभी न हार मानने वाले जज्बे के नाम आइए सुनते हैं रफ्तार और जोश से भरा ये अगला सॉन्ग।

0: तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान। शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

जारी है म्यूजिकल दिल लगी, जहां खूबसूरत गानों की झड़ी के साथ मिल रही है आपको आज के दिन से जुड़ी हर जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी। तो साल था वो 1497 और तारीख थी आज ही की, जब पुर्तगाल के मशहूर नाविक वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत तक का पहला सीधा समुद्री रास्ता खोजने के लिए अपना ऐतिहासिक सफर शुरू किया था।

फिर 20 मई साल 1498 थी वो तारीख जब वो कालीकट यानी केरल पहुंचे थे। दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय अखबारों में से एक द वॉल स्ट्रीट का पहला अंक आज ही के दिन साल 1889 में प्रकाशित हुआ था और साल 1776 की अगर हम बात करें तो फिलाडेल्फिया में पहली बार अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र को सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया गया था। और क्या कुछ खास समेटे है खुद में आज की तारीख जानेंगे, मगर पहले यह अगला ट्रैक सुनेंगे।

बिल्कुल सही, यही तो है जिंदगी। कतरा कतरा मिलती है और हम उन्हीं लम्हों को संजोकर जी लेते हैं। और यही बात बशीर बद्र साहब कुछ इस तरह बयां करते हैं। दुखों की धूप में भी मुस्कुराना पड़ता है, ये जिंदगी है, यहां सब कुछ भुलाना पड़ता है। कभी जमी पे कभी आसमान की जद में परिंदा थक भी जाए तो सफर जारी रखता है। ये मत सोचो कि जिंदगी में कितने दिन हैं, बल्कि ये देखो कि हर दिन में कितनी जिंदगी है।

म्यूजिकल दिल्लगी चल रहा है प्रोग्राम जिसे सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मेरे यानी नाज के साथ, जहां बात हो रही थी आज की तारीख यानी 8 जुलाई की। और आज की तारीख इसलिए भी है खास क्योंकि जन्मदिन है आज बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत और चुलबुली अदाकारा का, जिनकी एक मुस्कान पर हर दिल फिदा हो जाया करता था। आज भी है और नाम है जिनका नीतू सिंह कपूर। 70 से 80 के दशक में ऋषि कपूर साहब के साथ उनकी जोड़ी ने कमाल ही कर दिया था और उनकी जबरदस्त केमिस्ट्री की खनक आज भी हमें सुनाई देती है। कहां आप खुद ही सुन लीजिए।

और अब बात भारत सरकार की एक बेहद किफायती और लोकप्रिय टर्म इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा योजना की, जिसका मकसद है कम आय वाले परिवारों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाना। योजना का सालाना प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है, जबकि बीमा धारक की किसी भी वजह से अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी यानी उत्तराधिकारी को इस योजना के तहत 2,00,000 की आर्थिक मदद दी जाती है। हर साल 1 जून से अगले साल 31 मई तक के लिए ये योजना वैध होती है और सीधे बैंक खाते से प्रीमियम राशि के ऑटो डेबिट होने की सुविधा भी आपको मिल जाती है। 18 से 50 साल के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है। बस आवेदक के पास एक एक्टिव सेविंग्स बैंक अकाउंट और उसका आधार कार्ड से लिंक्ड होना जरूरी है। नजदीकी बैंक शाखा या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और इसके अलावा लगभग सभी बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए भी आप घर बैठे इस योजना के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंजॉय कीजिए अगला ट्रैक, मैं आपसे मिलूंगी इस गाने के उस पार।

देखिए, दिल और उसके जज्बात कुछ ऐसे ही होते हैं कि चाहे लाख कोशिशें कर ली जाएं, जोर इस दिल पर चलता नहीं। तभी तो कहा गया है कि वो जा चुके हैं छोड़कर कब के ये शहर, मगर ये दिल उनकी आमद की आस छोड़ता नहीं। दिमाग कहता है कि अब वो लौट कर नहीं आएंगे, मगर ये नादान दिल, ये दिल है कि मानता ही नहीं।

ये दिल माने या ना माने, और वो जिनका है इंतजार वो भले ही लौटे या ना लौटे, लेकिन मैं यानी नाज जरूर लौटूंगी और मिलूंगी आपसे अब ठीक 10:30 पर। प्रोग्राम होगा आपका फेवरेट दिल का मेल बॉक्स, और अभी इस गाने के उस पार सुनिएगा देश और दुनिया से जुड़ी हर जरूरी खबर हिंदी और अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबायो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।
1: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हैं। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे बड़े मंदिर हैं। भारत और इंडोनेशिया ने प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कल एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की। प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अलनीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धैर्य किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये देश को सबसे कठिन चुनौतियों के बीच भी एकजुट रहने की प्रेरणा देता है। संस्कृत का एक प्रेरक कथन साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि धैर्य किसी राष्ट्र को निरंतर प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों में छापेमारी की। छापेमारी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। मामले की जाँच जारी है। घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स 364 अंक गिरकर 77,816 पर, जबकि निफ्टी 139 अंक लुढ़क कर 24,260 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और अर्जेंटीना तथा स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और असर उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग पर समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। संदीप गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता के प्रम्बानन मंदिर जाएंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। भारत और इंडोनेशिया ने प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कल एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री तीन देशों के दूसरे दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। इस बीच ऑस्ट्रेलिया में

0: नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
1: हमारी संवाददाता ने बताया है कि न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की अनूठी छटा देखने को मिलती है।
2: पिछले 26 वर्षों से भारतीय देवी देवताओं की प्रतिमाओं, पूजा सामग्री, रंग बिरंगे भारतीय परिधानों और पारंपरिक वस्तुओं के माध्यम से स्थानीय लोगों को भारतीय संस्कृति से परिचित करा रहा है। आकाशवाणी से बातचीत में स्टोर की संचालिका किम होलोवाइट ने बताया कि बड़ी संख्या में न्यूजीलैंड के लोग हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ साथ भारतीय परिधानों और आध्यात्मिक परंपराओं में भी गहरी रुचि दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का शांति, प्रेम और सकारात्मकता का संदेश लोगों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। ऑकलैंड से मंजू मीणा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए।
3: अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमेरिका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमेरिका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत विकास लक्ष्य हासिल करने की समय सीमा में अब केवल 4 वर्ष शेष हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के
4: विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2015 में 2030 सतत विकास कार्य योजना को अपनाने के बाद निवेश, बेहतर नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने विश्व भर में अरबों लोगों के जीवन में सुधार हुआ है। लगभग 100 करोड़ लोगों को सुरक्षित पेयजल और 120 करोड़ लोगों को सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता की सुविधा मिली है। रिपोर्ट के अनुसार 2015 और 2024 के बीच नए HIV संक्रमणों में 30% की कमी आई है। और
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, वेलकम वंस अगेन इन योर फेवरेट शो जिसका नाम है दिल का मेल बॉक्स, और मैं हूं आपके साथ एफएम गोल्ड पर आपकी होस्ट और पक्की वाली दोस्त नाज। ट्यून कर चुके हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, तो देर बिल्कुल भी नहीं करनी है, जल्दी से लिख भेजना है अपना नाम, कहां से लिख रहे हैं और कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, साथ ही शेरो शायरी या फिर कुछ ऐसी बात जो आप सबसे कहना चाहते हैं। एफएम गोल्ड AIR delhi@gmail.com, जी हाँ, इसी मेल एड्रेस पर आप करेंगे ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज अगर आप भेजना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 9868686753 पर। बातों का सिलसिला जारी ही रहेगा और अभी हम एंजॉय करेंगे ये पहला गाना दिल का मेल बॉक्स में, जिसकी फरमाइश आई है रणजीत कारेगांवकर, कंचन कारेगांवकर, सृष्टि कारेगांवकर और समरजीत कारेगांवकर की ओर से, बसमत रोड परभणी महाराष्ट्र से।

और अब सुनिए कि सीधा मुंबई से अनु बड़जात्या जी क्या कह रही हैं। लिख रही हैं कि हंसते आ रहे सबके बीच, खिलते रहें आप फूलों के बीच, रोशन रहें आप हजारों के बीच, जैसे रहता है सूरज आसमां के बीच। क्या बात है। और साथ ही एक और बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने कि नल से पानी टपक रहा, उसे बंद कर दो भाई, दांत साफ करते समय नल को बंद कर जाई। अच्छा, राइमिंग मिलाने की कोशिश यहाँ पर की है, क्योंकि जल है तो हम हैं और हम हैं तो कल है। बिल्कुल सही बात है। अनु बड़जात्या जी, शमशुल खान और अनुराज बेनारा इस मैसेज में शामिल हैं सीधा मुंबई से। अगला मैसेज आया है रोहिणी दिल्ली से। सादा जीवन ही सबसे सुंदर गहना है, हर हाल में खुश और शांत रहना है, मिले जो मोड़ इस सुहाने सफर में, उसे मुस्कुराकर खूबसूरत जिंदगी कहना है। सत प्रकाश गोयल जी का ये मैसेज, जिसके लिए मैं कह रही हूं आपको थैंक यू वेरी मच। और अगला मैसेज चंडीगढ़ से आया है। किसी का बुरा सोचे बिना उसका भला करो, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथ में खुशबू अक्सर रह जाती है। बड़ी गहरी बात लिखकर भेजी है सतीश अनेजा बिमला अनेजा जी के साथ, सीधा चंडीगढ़ से। और साथ ही लिखकर भेजा है अपना फरमाइशी गीत भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मैसेज के लिए। अगला मैसेज हम शामिल करते हैं अब गांव चौहलदा बागपत से आया है ये मैसेज। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया इसमें शामिल हैं और साथ ही अपना फरमाइशी गीत भी लिखकर भेजा है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस मैसेज के लिए। एक और बेहतरीन मैसेज सीधा आया है हमारे पास सागर मध्य प्रदेश से। लिख रहे हैं कि ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी बात लिखी है कि रोटी पर घी और नाम के साथ जी। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। किसी को स्नेह देना सबसे बड़ा उपहार है, किसी का स्नेह पाना सबसे बड़ा सम्मान है।

तारीफ करने वाला बेशक आपको पहचानता होगा, मगर फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। क्या बात है। चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर, तन्वी गौहर ने भेजा है ये मैसेज सागर मध्य प्रदेश से, और किसी भी गीत में शामिल होने की ख्वाहिश है इनकी। तो बिल्कुल जी, हमने आपको शामिल कर लिया है प्रोग्राम में भी और अगले आने वाले गीत में भी। चलिए एक मैसेज और शामिल करते हैं, फिर सुनते हैं एक प्यारी सी फरमाइश। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से अभी अभी आया है मैसेज। आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी का इन्होंने भी अपनी फरमाइश लिखकर भेजी है। बहुत ही खूबसूरत गाना सुनना चाहते हैं। तो चलिए समाधि फिल्म से एक बड़ा ही प्यारा गाना अब मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ आशा जी की आवाज में, और इसकी फरमाइश आई है टोरोवाल नवा शहर पंजाब से। गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका वाणी ने इस गाने की फरमाइश की है, और चलिए हम भी इंजॉय करते हैं।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

स्वागत है आपका एक बार फिर। दिल का मेलबॉक्स चल रहा है प्रोग्राम, जहां आपके व्हाट्सएप मैसेजेस और ईमेल्स को हम कर रहे हैं प्रोग्राम में शामिल। तो फरमाइश आई है कि गीत कोई भी सुना दीजिए, हमारा नाम ज़रूर शामिल कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह का ये मैसेज है गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से। और इसी के साथ अगला मैसेज तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना भी इस मैसेज में शामिल हैं। और इसी के साथ अब अगला मैसेज मुझे नज़र आ रहा है किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से, जुबैर अली खान, सबीहा अंजुमन खान का। और इसमें शामिल हैं सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन, अनम यशफ और रसीद वारसी भी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस ईमेल के लिए। और इसी के साथ चलिए अगला मैसेज शामिल कर लेते हैं। खुद चुनो अपनी राहें, भीड़ का हिस्सा बनाया क्यों है। खुद चुनो अपनी राहें, भीड़ का हिस्सा बनाया क्यों है। वो करो जो दिल कहता है, वो करो जो दिल कहता है, हर बात दूसरों की सुनना क्यों है। राहें भी तुम्हारी हैं, सपने भी तुम्हारे हैं, फिर किसी और का रास्ता पकड़ना क्यों है। उड़ने दो ख्वाबों को खुलकर पिंजरे में, खुद को कैद रखा क्यों है। बहुत ही अच्छी बात। बोध राज खोरवाल, दीपांशु, अमन, सचिन इस मैसेज में शामिल हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत गीत की भी इन्होंने फरमाइश की है, जिसे मैं अब आपको सुनवाने जा रही हूं। लेकिन बता दूं कि इसी गीत की फरमाइश भेजी है फारूक अली खान, फैजी, फराज फरहीन, फरहान फारिया और ताहिरा ने भी।

हमारा मेल आप शामिल करें या ना करें, हम सुने बिना नहीं रह सकते। ये लिखा है भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा ने। देखिए, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो हमने भी आपका मेल शामिल कर लिया है, आप नाराज मत होइए। और अगला मैसेज शामिल करेंगे नवी हसन साहब का, और इन्होंने भी अपना फरमाइशी

पप्पी भाटिया इनके साथ शामिल हैं और एक बहुत ही खूबसूरत गीत की इन्होंने फरमाइश भी लिखकर भेज दी है। बिल्कुल। और अगला मैसेज शामिल करते हैं बबलेश पवार जी का, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से आया है। लिखते हैं कि अल्फाजों को कोई जेवर जैसे पहनाते हो, मखमली खाब जैसे बुनते हो, वो सादगी, वो लहजा, वो लहक का जादू, न रहे खुद पर काबू। प्रोग्राम पसंद आ रहा है, मुझे भी ये जानकर बहुत खुशी हो रही है। बबलेश पवार जी का ये मैसेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और इसी के साथ अगला मैसेज हम शामिल करेंगे संदीप मक्कड़ जी का, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ इसमें शामिल हैं। कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर, पंजाब से ये मैसेज आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस मैसेज को भेजने के लिए। चारू जटोलिया जी ने भी मैसेज कर दिया है, अपनी फरमाइश भी लिखकर भेजी है। साथ ही कौन कौन इस मैसेज में शामिल है ये मैं आपको बता देती हूँ। राजेंद्र जटोलिया, उषा जटोलिया, कृष्णा जटोलिया और पूजा जटोलिया के साथ कोमल और आरव भी शामिल हैं। दिल्ली नागलोई से आया है ये मैसेज। और अब चलिए, जिस तरह से घड़ी भाग रही है, मुझे शामिल करना होगा प्रोग्राम का आखिरी मैसेज, जो कि आया है हमारे पास हल्द्वानी से, उत्तराखंड हल्द्वानी से, बहुत ही खूबसूरत जगह। और अपनी बहन को शायद ये मैसेज इन्होंने डेडिकेट किया है। बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है कि खून का रिश्ता नहीं, दिल का कनेक्शन है। तू डांट भी लगाए तो उसमें भी प्रोटेक्शन है। बहना तू सबसे प्यारी है, तुझसे ही मेरी दुनिया सारी है। क्या बात है। कृतिका जोशी, रोहित जोशी और राघव जोशी इस मैसेज में शामिल हैं। और गाना भी बड़ा खूबसूरत है जिसकी इन्होंने फरमाइश लिखकर भेजी है, और ये भी इन्होंने अपनी बहन को ही डेडिकेट किया है। थैंक यू सो मच। और गाना एंजॉय कीजिए, जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि इस गाने के बाद होंगे समाचार और उसके बाद हम फिर मिलेंगे। प्रोग्राम होगा तस्वीर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित

0: आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।
1: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता में प्रांबानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रांबानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे बड़े मंदिर हैं। भारत और इंडोनेशिया ने प्रांबानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कल एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की। प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अलनीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों में छापेमारी की। छापेमारी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। मामले की जांच जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत की मानवीय सहायता को स्वीकार करने के लिए वेनेजुएला का धन्यवाद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जायसवाल ने कहा कि ये राहत अभियान दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता को दर्शाता है। भारत ने विनाशकारी दोहरे भूकंपों के बाद वेनेजुएला की मदद के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। गुजरात क्षेत्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में गरज के साथ आंधी की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। केरलम में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है, हालांकि जिलों में येलो अलर्ट जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धैर्य किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये देश को सबसे कठिन चुनौतियों के बीच भी एकजुट रहने की प्रेरणा देता है। संस्कृत का एक प्रेरक कथन साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि धैर्य किसी राष्ट्र को निरंतर प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, सुस्वागतम एंड हैव अ ग्रैंड वेलकम बाय मी, आपकी होस्ट नाज। ट्यून किया हुआ है आपने आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और जहां के स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त टाइम हुआ है 11:11 और 20 सेकंड्स भी। एंड एज यू ऑलरेडी नो, ये समय है सैर सपाटे का, क्योंकि ये समय है हमारी खास पेशकश तस्वीर का। और आज तस्वीर में हमारी गाड़ी का रुख हो रहा है उत्तर पूर्वी भारत के उस कोने की तरफ जिसे दुनिया पहाड़ों की रानी कहती है। ध्यान दीजिएगा, हम उत्तराखंड नहीं जा रहे हैं, हम चल रहे हैं पश्चिम बंगाल, और वहीं के एक खूबसूरत शहर की आज करेंगे सैर, जिसे कई नामों से पुकारा जाता है, क्वीन ऑफ द हिल्स, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, और साथ में चैंपियन ऑफ टीज का खिताब भी जिसे हासिल है। बस वहीं घूमेंगे फिरेंगे और वहीं की खुशबूदार चाय की चुस्कियां भी लेंगे। तो सुनिए ये गाना और फिर सोचिएगा कि कौन सी थी वो जगह जहां की खूबसूरत सड़कों पर राजेश खन्ना जी जीप में सवार पुकारते जा रहे हैं टॉय ट्रेन में सवार अपनी सपनों की रानी को।

जी हाँ, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है आपने। भगवती सिंह, गौरी शंकर, अनु बड़जात्या और महेश अग्रवाल जी, आपने भी पश्चिम बंगाल के खूबसूरत शहर दार्जिलिंग की सैर पर ही निकले हैं हम, जो खुद किसी सपनों की रानी से कम नहीं है। समुद्र तल से करीब 6,700 फीट की ऊंचाई पर बसा ये शहर अपनी कड़क और खुशबूदार चाय के लिए तो दुनिया भर में मशहूर है ही, साथ ही यहाँ की नेचुरल ब्यूटी के बीच बादलों की लुका छिपी दिल जीत लेती है। मौसम वैसे तो साल भर ही सुहाना रहता है यहाँ, लेकिन सबसे बेस्ट टाइम मैं आपको सजेस्ट करूंगी दार्जिलिंग आने के लिए मार्च से मई के बीच, क्योंकि तब आपको यहाँ गर्मी से राहत महसूस होगी। और इसके अलावा आप सर्दियों की शुरुआत यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच भी आ सकते हैं। आसमान तब होगा साफ और हिमालय की बर्फीली चोटियां आपको यहां से एकदम क्लियर साफ नजर आएंगी। कैसे पहुंचेंगे दार्जिलिंग ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये अगला ट्रैक सुनेंगे और अपने इस सफर पर लगाएंगे 4 मून्स यानी 4 चांद।

दार्जिलिंग आना है तो देखिए मुश्किल तो कहीं है नहीं। बाय एयर आने के लिए आप फ्लाइट लेंगे बागडोगरा एयरपोर्ट की, जिसकी दूरी दार्जिलिंग से सिर्फ 70 किलोमीटर के आसपास है। लैंड करने के बाद आराम से प्राइवेट या शेयरिंग टैक्सी आपको मिल जाएंगी। 2.5 से 3 घंटों के अंदर आप दार्जिलिंग में होंगे। बाय ट्रेन अगर प्लान बने तो न्यू जलपाईगुड़ी सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन आपको पड़ेगा, और जो कि दार्जिलिंग से 73 किलोमीटर दूर है। धीमी रफ्तार में नेचर को नज़दीक से महसूस करते हुए दार्जिलिंग पहुंचेंगे तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की टॉय ट्रेन का हाथ ज़रूर थामिएगा। पहाड़ों के बीच से होती हुई ये न्यू जलपाईगुड़ी से लगभग 7 घंटों में आपको दार्जिलिंग तक पहुंचाएगी। लेकिन यकीन मानिए, ये 7 घंटे आपकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन घंटों में से एक होंगे। तो फिर चलिए ठंडी हवा के साथ साथ और घटा के संग संग हम भी चल पड़ते हैं दार्जिलिंग की सैर करने, और साथ में एंजॉय करेंगे ये अगला ट्रैक भी।

0: सुनो कि तस्वीर का हर रंग अब बोलने लगा है, वक्त थम सा गया है, मौसम सरा मचलने लगा है। वो टॉय ट्रेन की छुक छुक, वो देवदार के साए, जैसे इस सुहाने सफर में कोई खूबसूरत नगमा गुनगुनाए। जब सुरों के धागे से बुना है इस सफर को, तो कंचनजंगा का सीना भी धीरे धीरे पिघलने लगा है। और जरा आप हमारे हमसफर बनकर तो देखिए, बिना कदम बढ़ाए ही चलिए, यहीं से आपको दार्जिलिंग घुमा लाए। दार्जिलिंग आए और यहाँ के टी गार्डन्स के बीच से होकर ना गुजरें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हैप्पी वैली टी एस्टेट जैसी जगहों पर आप जब महिलाओं को पारंपरिक लिबास में चाय की पत्तियां तोड़ते हुए देखते हैं ना, तो वो नजारा आपके दिल में हमेशा के लिए छप जाता है। अब बात करें ठहरने की, तो दार्जिलिंग के मॉल रोड के पास आपको हर बजट के बेहतरीन होटल्स मिल जाएंगे। और हाँ, अगर आपको ब्रिटिश जमाने का विंटेज एहसास चाहिए, तो यहाँ के कई हेरिटेज रिसॉर्ट भी आपके लिए अवेलेबल हैं, जहाँ की खिड़कियों से टी गार्डन्स और खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे आप निहार सकते हैं। और फिर जो हाल होगा ना आपका, उसे तो बस इस गाने के जरिए ही समझा जा सकता है।
1: दिलों का न पूछो सनम आपका।

0: तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान, शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर। भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

शिवालिक रेंज में मौजूद खूबसूरत दार्जिलिंग की सैर कर रहे हैं आप मेरे यानी नाज के साथ, और प्रोग्राम चल रहा है तस्वीर, जहां अब हम एक्सप्लोर करेंगे दार्जिलिंग की इनसाइड डेस्टिनेशंस को और जानेंगे कि क्यों आपको इन जगहों पर जाना ही चाहिए। सबसे पहले जाना बनता है टाइगर हिल, जो कंचनजंगा पर्वत की बर्फीली चोटियों पर खूबसूरत सनराइज के व्यू के लिए मशहूर है। साफ सुबह हो तो माउंट एवरेस्ट की झलक भी आपको दिख सकती है। इसके बाद बटासिया लूप, जो कि इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। बेसिकली एक घुमावदार रेलवे ट्रैक है, जहां दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे आपको खूबसूरत पहाड़ों के बीच पूरा 360 डिग्रीज का चक्कर लगवाती है। भारतीय सेना में सेवा देने वाले

गोरखा सैनिकों को समर्पित वॉर मेमोरियल भी आप इस दौरान देखेंगे और यकीनन इस खूबसूरत सफर को ताउम्र भुला तो बिल्कुल नहीं पाएंगे।

रॉक गार्डन और गंगा मैया पार्क, ये दो डेस्टिनेशंस ऐसी हैं दार्जिलिंग शहर के नीचे घाटी की ओर जो पिकनिक मनाने के लिए बेस्ट हैं। चट्टानों को काटकर बनाए गए इस खूबसूरत गार्डन में आपको मिलेगा एक नेचुरल वाटरफॉल।

भी, जिसे जिसके चारों ओर बैठने और घूमने के लिए बेहतरीन सीढ़ीदार रास्ते बनाए गए हैं। वैसे सीढ़ियों से एक गाना मुझे याद आ रहा है, देवानंद साहब और नूतन जी की बेहतरीन केमिस्ट्री, और वो भी सीढ़ियां उतरते हुए, भला कौन भूल सकता है, नहीं?

भारत का सबसे ऊंचा चिड़ियाघर भी आपको मिलेगा यही दार्जिलिंग में, जो खास तौर पर लाल पैंडा, हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड और तिब्बतियन भेड़ियों की दुर्लभ स्पीशीज का घर है और नाम है जिसका पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। और यहीं आपको मिलेगा हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट भी, जिसकी स्थापना तेंजिंग नॉर्गे, जो कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले व्यक्ति थे, उन्हीं की याद में की गई थी। एक शानदार म्यूजियम भी आपको यहां पर मिलेगा, जो माउंटेन क्लाइंबिंग के इतिहास, उपकरणों और अलग अलग मिशन से जुड़ी पुरानी तस्वीरें और जानकारी आपको देगा। और क्या कुछ है यहाँ दार्जिलिंग में जिसे आपको जानना और कम से कम एक बार एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए, जानेंगे। लेकिन पहले ये ट्रैक सुनेंगे और फिर जल्दी से वापस लौट कर भी आएंगे।

दार्जिलिंग, जहां की खूबसूरत सड़कों पर घूमते हुए आपको नजर आएंगी कई औपनिवेशिक काल की बनी हुई इमारतें। टाइगर हिल जब आप पहुंचेंगे तो जरूर जाइएगा घूम मठ भी, जिसका ओरिजिनल नाम है ईगा चोइलिंग तिब्बतियन मठ। इतिहासकारों की माने तो इस मठ की स्थापना धार्मिक कार्यों के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक बैठकों के लिए की गई थी। साल 1850 में एक मंगोलियन भिक्षु लामा शेरपा यालसू ने इस मठ को स्थापित किया था। और यहां आप देखेंगे भगवान बुद्ध की 15 फीट ऊंची मूर्ति, बहुमूल्य ग्रंथों का संग्रह भी आपको यहां पर मिलेगा, जिनमें से कई संस्कृत से तिब्बतियन भाषा में ट्रांसलेटेड हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा बहुत कुछ है यहां यानी दार्जिलिंग में, जिसे एक बार नहीं बार बार आप देखना चाहेंगे, जैसे कि अगला ट्रैक, जिसे भी आप एक बार नहीं बार बार सुनना चाहेंगे।

दिल भरेगा नहीं और आप थकेंगे नहीं दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों की सैर करते हुए। लेकिन हाँ, भूख जरूर लगेगी और उसका क्या इंतजाम है यहाँ, चलिए अब ये भी जान लीजिए। बेसिकली नेपाली, तिब्बतियन और बंगाली कुजीन का गहरा असर आपको यहाँ के खाने में मिलेगा। स्टीम्ड या फिर फ्राइड, जैसी आपकी इच्छा हो, गर्मा गर्म मोमो आपको हर कहीं मिल जाएंगे। इसके अलावा थुक्पा और ट्रेडिशनल नेपाली थाली आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। स्ट्रीट फूड में आप इंजॉय कर सकते हैं आलू दम और मिमी। इसके अलावा चावल के आटे से बनी एक ट्रेडिशनल नेपाली डिश आप इंजॉय कर सकते हैं जिसका नाम है सेल रोटी। दिखने में डोनट या फिर रिंग जैसी होती है और अक्सर ब्रेकफास्ट में आलू दम के साथ परोसी जाती है। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, दार्जिलिंग की वर्ल्ड फेमस चाय पीना और खरीद कर अपने साथ ले जाना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। और भूलना नहीं है हमें ये बताना भी कि मेरे यानी नाज के साथ आपको कैसा लगा दार्जिलिंग का ये सफर। फिलहाल घड़ी ने कर दिया है इशारा कि मैं लूं आपसे विदा इस वादे के साथ कि बहुत जल्द फिर किसी नए सफर की नई तस्वीर के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार और सायोनारा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: यहाँ पर आकर के करीब करीब हजार

0: 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
1: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव भी बरामद हुआ है और उसकी पहचान की जा रही है। केरलम सरकार ने वायडनास भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की दो टीमें अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। गुजरात क्षेत्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में गरज के साथ आंधी की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। केरल में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है, हालांकि जिले में येलो अलर्ट जारी है। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि बंदर अब्बास, केशम और सिरिक में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today visited the UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, along with Indonesian President Prabowo Subianto. The Prime Minister was accorded a traditional welcome with the resonant notes of gamelan ensemble and a classical Yogyakarta dance performance reflecting Indonesia's rich cultural heritage. The two leaders toured the 9th century temple complex where Prime Minister Modi offered prayers at the main Shiva temple. They also viewed the temple's intricate carvings before witnessing the ongoing conservation efforts being supported through India-Indonesia cooperation. Addressing a gathering at the Prambanan Temple in Yogyakarta in Indonesia, the Prime Minister said he was born in Vadnagar, home to Hathkeshwar, Mahadev, and that the Somnath Jyotirling in Gujarat, the first among the 12 Jyotirlingas, holds special significance, with him having direct responsibility for its development.
0: यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं, ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है.
2: India and Indonesia have strongly condemned terrorism in all its forms and called for decisive, coordinated international efforts to combat the threat in accordance with international law. In a joint statement issued after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta, the two leaders urged action against globally proscribed terrorists and terrorist organizations, including those designated under the UN Security Council's 1,267 Sanctions Committee. In the second leg of his three-nation tour, Prime Minister Modi will reach Melbourne today on a three-day visit, where he will participate in the third India-Australia Annual Summit with the Australian Prime Minister Anthony Albanese. Mr. Modi will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both the countries. He will also address a large gathering of the Indian diaspora, who constitute a strong pillar of the India-Australia relationship. The bilateral discussions between Prime Minister Modi and his Australian counterpart, the Honourable Anthony Albanese, are set to advance cooperation across several key domains. In Jammu and Kashmir, police today said that one terrorist has been killed in an encounter with security forces in Chanapora area of Shopian. Police said that the operation was conducted jointly with Army and the CRPF. Talking to Akashwani News, Inspector General of Police V.K. Birde said a body has been found with arms and ammunition at the spot and the identity is being ascertained. Union Home Minister Amit Shah today spoke to Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis regarding the heavy rainfall and flood-like situation in the state. During the conversation, Mr. Shah assured the Chief Minister of all possible assistance from the central government to support the Maharashtra government in dealing with the situation. The Prime Minister's Office PMO held a high-level review meeting to review the possible impact of El Nino on various sectors and the preparedness measures. The meeting was held under the chairmanship of Principal Secretary to Prime Minister Dr. P.K. Mishra at the Seva Tirth yesterday. Secretaries and senior officials of more than 15 ministries were present at the meeting. Dr. Mishra directed that the overall situation should be continuously monitored and the impact of monsoon or delayed monsoon on vulnerable districts must be assessed in coordination with states. The US has carried out a fresh round of airstrikes on Iran, targeting more than 80 locations in response to Iran's latest attacks on commercial ships passing through the Strait of Hormuz. According to US Central Command, the strikes targeted Iranian air defense systems, command and control centers, coastal radar sites, anti-ship missile systems, and more than 60 Islamic Revolutionary Guard Corps fast boats in and around the Strait of Hormuz. Iran Central Military Command warned that it would respond decisively to what it called an act of aggression and terrorism. In football, Switzerland beat Colombia 4-3 in a penalty shootout in Vancouver to reach the quarterfinals of FIFA World Cup for the first time since 1954. And that is the end of this news bulletin.

0: เงิน
1: घर आंगन के आज के शो में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला और
2: मैं हूँ रश्मि कुकरेती।
1: स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
2: नमस्कार।
1: और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही साथ इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 386.1 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर।
2: तो मंजुला, शुरुआत करते हैं एक बेहद खूबसूरत ख्याल से। शिक्षा ने महिलाओं को सिर्फ डिग्री या नौकरी ही नहीं दी है, बल्कि सबसे बड़ा उपहार दिया है वो क्या है?
1: आजादी।
2: नजरिया। वो नजरिया जो पूछना सिखाता है, क्या ये सही है, क्या मैं यही चाहती हूँ, और मैं तो कहूंगी ये ही है असली आजादी, है ना?
1: जी हाँ। तो आजादी दीजिए थोड़ी देर के लिए अपनी सभी परेशानियों, जिम्मेदारियों को, और अब याद कीजिए बस अपने खुशियों से भरे सपनों को, अपने बचपन को। तो आज का सवाल है, बारिश के मौसम में कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है? बारिश में भींगना, कुछ गुनगुनाना, या फिर कुछ? और अपने जवाब हमें लिखकर भेजिए इस ईमेल आईडी पर fmgoldg@gmail.com।
2: तो बने रहिए हमारे साथ, जहां हर पल मिलेगा मनोरंजन, नई जानकारी और जिंदगी को बेहतर बनाने वाली ढेर सारी बातें।
1: बिल्कुल।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म मेरा साया से। और दोस्तों, जब भी मौसम विभाग बारिश, तूफान या गर्मी की सटीक जानकारी देता है तो हम अक्सर सिर्फ मौसम का हाल सुनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में मौसम विज्ञान को इतना भरोसेमंद बनाने के पीछे किन लोगों का योगदान रहा? तो आज बात करते हैं भारत की वेदर वुमन अन्ना मणि की।
1: वाह, तो मुझे लगता है तुम जो बताने जा रहे हो अन्ना मणि के बारे में, वो बहुत हम सुनेंगे। और जैसा कि तुम क्या बता रही थी, हम आ रहे थे स्टूडियो में, कि वो बचपन से ही किताबों की दीवानी थी, है ना। और आठवें जन्मदिन पर पता है उन्होंने क्या चीज मांगी?
0: क्या?
1: एनसाइक्लोपीडिया।
0: क्या बात है। हाँ। तो यही जिज्ञासा आगे चलकर उन्हें भारत की महान वैज्ञानिकों में शामिल कर गई।
1: और उनको नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन के साथ उन्होंने शोध किया और बाद में मौसम विज्ञान विभाग में जुड़कर मौसम मापने वाले उपकरणों के विकास में क्रांतिकारी योगदान उन्होंने दिया।
0: और उस दौर में भारत मौसम संबंधी उपकरणों के लिए विदेशों पर निर्भर था, लेकिन अन्ना मणि ने स्वदेशी उपकरण विकसित कर इस निर्भरता को काफी हद तक समाप्त किया।
1: और सौर विकिरण, ओजोन और पवन ऊर्जा पर भी उन्होंने महत्वपूर्ण शोध किए। उनके काम ने न केवल मौसम पूर्वानुमान को अधिक सटीक बनाया, बल्कि भारत में सौर और पवन ऊर्जा के विकास की भी मजबूत नींव रखी।
0: बिल्कुल। और लेकिन अन्ना मणि की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ उनकी उपलब्धियां नहीं थी दोस्तों। उन्होंने एक बार कहा था कि हम अवसरों का इंतजार नहीं करते, हम उन्हें अपने काम से बनाते हैं। और ऐसे समय में जब विज्ञान की दुनिया में महिलाओं की मौजूदगी बहुत कम थी, अन्ना मणि ने अपनी प्रतिभा और मेहनत से साबित कर दिया कि सपनों की कोई लैंगिक सीमा नहीं होती।
1: बिल्कुल। तो मंजुला, अगली बार जब आप मौसम की सटीक जानकारी के लिए अपने मोबाइल या रेडियो तक पहुंचे, तो उस सफर में अन्ना मणि जैसे वैज्ञानिकों के योगदान को जरूर याद करिएगा।
0: बिल्कुल याद करूंगी।

0: और अभी हम सुन रहे थे ये खूबसूरत सा गीत जिसको गाया था सुरक्षा पंडित ने और अनवर ने फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से।
1: और मंजुला, अभी जब तुमने ये वेदर वमन नमणि जी की बात की और साथ में गीत लगाया, बड़ा सुंदर गीत चुना तुमने सुलक्षणा जी का गाया हुआ। सच में इतनी खूबसूरत अभिनेत्री और देखिए कितनी विलक्षण प्रतिभा, वह बहुमुखी प्रतिभा की धनी। कितनी सुंदर मीठी उनकी आवाज, एक शास्त्रीय संगीत से जुड़े घर से आती है। जतिन ललित उनके भाई प्रमुख संगीतकार रहे हैं और पंडित जसराज उनके चाचा जी हैं। और ये मधुर गीत बता रहा था कि ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं जब महिलाओं में होती हैं तो वो अलग से ही चमकती हैं, है ना?
0: बिल्कुल सही। और देखिए, जब हमने बात की कि मेल के बारे में कि क्या विषय है, तो इसके बारे में हमारे पास जवाब भी आने लगे। हनी रे ये लिखती है कि आई लाइक टू सिट नियर विंडो, यानी खिड़की के पास बैठना पसंद करती है, वहां पे एक कप चाय या फिर नॉवेल पढ़ना पसंद करती हैं। और मैं कहूँ कि मेरा भी कुछ ऐसे ही शौक है तो मुझे भी अच्छा लगता है ऐसे में गाना सुनना।
1: हाँ, और एक और मेल आई हुई है चौधरीवास जिला हिसार से, राजू अग्रवाल, केशव दक्ष, प्रियांशी, वो कहते हैं कि बारिश के मौसम में मैं इधर से उधर पेड़ों के नीचे से गुठली उठाकर कहीं पर जगह दिखे तो लगा देता हूँ। भाई वाह, सबसे बड़ी दौलत यही है कि पेड़ पौधे बुरे से बुरे आदमी को भी छांव देते हैं। और एफएम गोल्ड की तारीफ करना मेरे बस की बात नहीं, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। सबसे पहले मैंने ही ईमेल भेजनी शुरू की थी। भाई वाह, क्या बात है। इनकी जो कोशिश है वो काबिले तारीफ है मंजुला। हम पर्यावरण के प्रति सतर्क रहें और बारिश तो क्योंकि समय वन महोत्सव भी चल रहा है ना, और ये समय है कि आप नए नए पौधे लगाएं, नए नए एफर्ट्स भी करें, है ना?
0: बिल्कुल। और अंशु माला जी ने लिखा है कि बारिश की बूंदे जब मेरी हरी भरी बालकनी पे पड़ती है तब गिली मिट्टी की एक नॉस्टैल्जिक महक हवा में घुल जाती है। उस टाइम दिल बस एक ही मेमोरी में बार बार लौट आता है।
1: क्या बात है, मुझे भी बारिश की मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू मंजुला बहुत पसंद है।
0: और अब अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं कि बेटियों को भी कुछ चीजें सिखानी चाहिए, जैसे कि नो का मतलब नो होता है और बाउंड्रीज उन्हें जरूर बताएं। उन्हें सिर्फ पढ़ाना ही काफी नहीं है, उन्हें जिंदगी जीने की सही समझ और अपने लिए खड़े होने का साहस भी सिखाना बहुत जरूरी है। बचपन से ही उन्हें बताइए कि ना एक पूरा वाक्य होता है। अगर किसी बात पे इंसान या किसी परिस्थिति में उन्हें सहज महसूस नहीं हो रहा है तो उनका ना ही काफी है। उन्हें किसी को सफाई देने या वजह बताने की कोई जरूरत नहीं है।
1: जी, उन्हें मुखर बनाइए, उन्हें अपनी बाउंड्री सीमाएं तय करना सिखाइए। हर किसी को अपनी निजी जिंदगी में जगह देना जरूरी नहीं होता। अपनी भावनाएं, अपनी बातें और अपनी परेशानियां भाई हर किसी के साथ साझा करना भी समझदारी नहीं होती मंजुला।
0: बिल्कुल। और आज सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन बेटियों को ये भी समझाइए कि वहां जरूरत से ज्यादा जानकारी साझा करना सुरक्षित नहीं होता। अपनी निजी तस्वीरें, लोकेशन, रोजमर्रा की गतिविधियां या हर छोटी बड़ी बात सार्वजनिक करने से बचें। इंटरनेट पर एक बार गई जानकारी हमेशा के लिए रह सकती है।
1: बिल्कुल सही कह रही हो मंजुला। मैं तो ये कहूंगी कि कभी भी किसी पार्टी या समारोह पर या किसी जगह पर हो तो उन्हें एक पल के लिए भी ये लगे कि माहौल ठीक नहीं है या लोग अजीब

0: व्यवहार कर रहे हैं या वे सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, तो भाई उनको बिना किसी झिझक के वहां से निकल जाना चाहिए, यही सही फैसला है। और ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई बुरा मान जाए, या उनको देखना चाहिए कि उनकी सुरक्षा किसमें है ना।
1: और उन्हें ये भी सिखाइए कि मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है। भरोसेमंद लोगों के फोन नंबर याद रहें, आपातकालीन सेवाओं की जानकारी रखें और अपने मन की आवाज पर भरोसा करना सीखें।
0: भाई आत्मरक्षा सिर्फ हाथों की ताकत थोड़ी होती है, सही समय पर सही फैसला लीजिए। अगर ये समझ है तो मैं तो कहूंगी ये सबसे बड़ी सुरक्षा है ना मंजुला।
1: सही, बिल्कुल। तो आइए अपनी बेटियों को सिर्फ अच्छे अंक और अच्छी नौकरी ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास, स्पष्ट सीमाएं और सुरक्षित जीवन जीने के कौशल भी दें, क्योंकि सशक्त बेटी ही सुरक्षित बेटी होती है।

0: मिट्टी की खुशबू और चाय की चुस्कियां, मानसून का मजा ही कुछ और होता है। लेकिन बताइए, क्या इस मौसम में आपके बाल भी ज्यादा टूटते हैं या स्किन अचानक ऑयली और डल हो जाती है? अगर जवाब हाँ है तो आज की छोटी सी बात, छोटे मोटे जो टिप्स हैं, आपके बहुत काम आने वाली है।
1: और शुरुआत मैं करने वाली हूँ वो टिप्स का। भाई, सबसे पहले बालों की देखभाल की बात करते हैं। कोशिश कीजिए कि बारिश के पानी से बालों को बचा कर रखें, है ना। अगर बाल भीग जाएं तो घर पहुंचकर उन्हें साफ पानी से धो दें और अच्छी तरह सुखाने के बाद ही बांधें।
0: बिल्कुल। और एक आसान सा DIY हेयर सीरम भी आजमाइए।
1: मुझे बताओ, ये मैं सुनना चाहती हूँ बहुत अच्छे से।
0: एक स्प्रे बॉटल में पानी भरें और उसमें 2-3 बूंद रोजमेरी एसेंशियल ऑयल और 2-3 बूंद टी ट्री एसेंशियल ऑयल मिलाइए। हर हेयर वॉश के बाद इसे बालों की लंबाई पर हल्का सा स्प्रे करें। इससे बाल फ्रेश, मैनेजेबल और स्कैल्प भी तरोताजा महसूस होगी।
1: और जब मंजुला तुमने बालों की बात की तो चेहरे को हम कैसे छोड़ सकते हैं, है ना।
0: चलिए अब मैं सुनती हूँ ध्यान से क्या बताने वाली हैं।
1: भाई, हर रात चेहरा साफ करने के लिए कॉटन की मदद से राइस वाटर लगाइए अपने चेहरे पर। हाँ, और इसे रात भर रहने दो। ये आपकी जो त्वचा है उसको बिल्कुल प्राकृतिक ग्लो देगा और उसे हाइड्रेट रखने में भी मदद करेगा।
0: बिल्कुल। और हाँ, खूबसूरती सिर्फ बाहर से ही नहीं आती। भरपूर पानी पीजिए, प्रोटीन और मौसमी फलों को अपने प्लेट में जरूर जगह दीजिए, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होता है तो उसका नूर चेहरे और बालों पर अपने आप दिखाई देता है।
1: वाह, क्या बात है, जुल्फों पर बात हो रही है। मुझे लगता है तुम्हारा गाना भी जरूर जुल्फों से जुड़ा हुआ होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो एक छोटी सी कविता मैं सुना दूं?
0: बिल्कुल, इंतजार कर रही हूं कब सुनाने जा रही है।
1: बारिश का मौसम है तो मुस्कुराना भी जरूरी है, खुद का ख्याल रखना और हर बहाना भी जरूरी है।
0: बाल हो या चेहरा, प्यार थोड़ा खुद से कीजिए, क्योंकि हर मौसम में आपका खिलखिलाना भी जरूरी है, चाहे चेहरा हो या बाल।

0: अभी हम सुन रहे थे येसुदास और लता मंगेशकर को फिल्म त्रिशूल से, और मुझे लग रहा है कि रश्मि जी मेल्स चेक कर रही हैं।
1: जी बिल्कुल, मेल्स की

0: तो बारिश हो गई है यहाँ जबरदस्त। हाँ और तो उमेश कुमार ख्याला से कह रहे हैं कि भाई मैडम जी हमें तो बारिश में चाय पकौड़े खाना पीना बहुत अच्छा लगता है। देखो चाय पकौड़े किसको नहीं अच्छे लगते ना बारिश में।
1: और गौरी शंकर जी लिखते हैं आप दोनों बेटियों को राम राम। और आज का जो सवाल है बहुत ही बढ़िया पूछा, मौसम के हिसाब से अब तो खैर उम्र चली गई लेकिन बचपन में बारिश का इंतजार करते थे, घंटों घंटों नहाते थे, तबीयत खराब हो जाए या हमारे खाने के लिए चिली बना देती थी, खुश रहते थे, अच्छा लगता था।
0: और कामायनी लक्ष्मी नगर से कह रही है कि मुझे तो बस बारिश की बूंदों को गिरते देखना बहुत पसंद है, जब हरे हरे पौधों और पत्तियों पर फूलों पर गिरती है ना तो बहुत अच्छा लगता है।
1: और सुदर्शन मुखी जी लिखते हैं कि बचपन और बारिश दोनों का चोली दामन का साथ है। बचपन में कागज की कश्ती चलाना, गलियों में दौड़ लगाना, हमारे बच्चों के जो मीठी यादें हैं बचपन की वो अभी भी याद आती है।
0: और अनिल जी जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं मुझे बारिश में भीगना और रोस्टेड कॉर्न खाना पसंद है। भाई मुझे भी बहुत पसंद है अनिल जी।
1: बिल्कुल, तो एक बार फिर से सवाल भी बता दें और ईमेल आईडी भी। हमारा आज का सवाल है कि मानसून में बारिश में आपको क्या सबसे अच्छी बात लगती है, आपको क्या करना अच्छा लगता है। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो चलिए बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। किटी पार्टी नाम तो सुना होगा
0: भाई, यहाँ बारिश और वहाँ किटी पार्टी, भाई क्या कॉम्बिनेशन है गजब।
1: तो नाम सुनते ही हंसी ठिठोली गपशप और ढेर सारी मस्ती याद आ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर बार वही म्यूजिकल चेयर, वही ड्रेस कोड, वही पुराने गेम्स, तो कहीं ना कहीं इस खूबसूरत मिलन को थोड़ा सा दोहराव वाला तो नहीं बना देते
0: भाई। म्यूजिकल चेयर और वही ड्रेस कोड, पुराने गेम, कहना क्या चाहती हो मंजुला?
1: तो मैं इस बार चाहती हूँ क्यों ना अपनी किटी पार्टी में एक फ्रेश बदलाव लेकर आया जाए। सबसे पहले ड्रेस कोड का दबाव छोड़िए, हर व्यक्ति अपने पसंदीदा कपड़ों में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट और सहज महसूस करता है। जब सभी कंफर्टेबल होंगे तब उनकी मुस्कान भी सच्ची होगी और बातचीत भी दिल से निकलेगी। फैशन से ज्यादा जरूरी है आपका अपनापन।
0: और अब मैं कुछ गेम्स के बारे में बताना चाहती हूँ। हाँ, मैं कहती हूँ कि गेस द पर्सनैलिटी जैसा एक गेम हो, या इमोजी क्विज हो, या पिक्चर पजल हो, या फिर मेमोरी चैलेंज हो, पर मुश्किल से गेम्स हैं लेकिन आप कर सकते हैं ट्राई। और उसके बाद टीम बनाकर छोटे छोटे दिमाग लगाने वाले खेल खेले जाएं, क्योंकि खेल सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करते बल्कि जो हमारे सोचने की क्षमता है, टीम वर्क को और बातचीत को भी बढ़ाते हैं। और अगर चाहे तो एक छोटा सा टैलेंट कॉर्नर भी रख सकते हैं ना, कोई कविता सुनाए, कोई गाना सुनाए, कोई ट्रैवल स्टोरी साझा करे और कोई आसान सी रेसिपी भी बताए, या फिर कोई लाइफ हैक शेयर करे। यकीन मानिए हर व्यक्ति के पास कुछ ऐसा होता है जो दूसरों को प्रेरित कर सकता है।
1: और एक और खूबसूरत आइडिया है नॉलेज एक्सचेंज। हर सदस्य 5 मिनट में कोई नई जानकारी, किताब, हेल्थ टिप या निवेश की छोटी सी सीख या किसी नए स्किल के बारे में बताए। सोचिए एक किटी पार्टी केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सीखने और एक दूसरे को आगे बढ़ाने का मंच भी बन सकता है।
0: और एक सबसे जरूरी बात मैं मंजुला कहना चाहती हूँ, भाई तुलना नहीं होनी चाहिए, तारीफ होनी चाहिए ना, आलोचना भी नहीं होनी चाहिए, प्रोत्साहन होना चाहिए और ऐसी पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए जहाँ हर सदस्य खुद को महत्वपूर्ण महसूस करे। क्योंकि यादगार पार्टियां जो होती है ना वो महंगे डेकोरेशन से नहीं बनती बल्कि अच्छे माहौल से और खूबसूरत यादों से बनती है ना।
1: बिल्कुल, तो अगली बार जब किटी पार्टी हो सिर्फ मेन्यू नहीं सोच बदलिए, कुछ नया जोड़िए, एक दूसरे को जानिए, एक दूसरे से सीखिए और ऐसी यादें बनाइए जो तस्वीरों से नहीं दिलों से जुड़ जाए।
0: हाँ, और आप पंछी बनकर गगन में उड़ने लगे।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म अनाड़ी से, और एक ईमेल हमारा इंतजार कर रहा है पढ़ने के लिए। महेश अग्रवाल जी लिखते हैं कि रश्मि जी नमस्कार, आप दोनों को बालकनी में बैठकर मौसम का आनंद लेना, चाय की चुस्की और समोसे के साथ आनंद लेना चाहिए। चलिए हम ले लेंगे बाद में, अभी तो पूरे मानसून पड़ा हुआ है।
1: और साथ में एक और बड़ी खूबसूरत सी मेल आई है, रमीशा जैन हैं आप, वो कह रही हैं कि अगर मुझसे पूछा जाए वर्षा ऋतु की सबसे प्रिय बात क्या है, तो वो कहती हैं कि मेरा उत्तर होगा कि महाराष्ट्र के घाटों की हरियाली और उस समय ज्योतिर्लिंग यात्रा करने का अनुभव। भाई क्या बात है। वर्षा के दिनों में वो कहती हैं सह्याद्री पर्वतमाला का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाता है और चारों ओर फैली हुई हरियाली और पर्वतों को अपनी गोद में समेटे हुए बादल, छोटी छोटी जलधाराएं, शीतल वायु मन को अद्भुत शांति प्रदान करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने स्वयं को नए रूप में सजा लिया है। जब बादल धीरे धीरे पर्वतों और वनों को घेर लेते हैं तो वह दृश्य शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। ऐसा लगता है जैसे धरती और आकाश एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं। वाह, मुझे विशेष रूप से वर्षा ऋतु में महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग को लिंगों की यात्रा करना बहुत पसंद है। भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और घृष्णेश्वर जैसे तीर्थ स्थलों की ओर जाते हुए घुमावदार घाटों से होकर गुजरना अपने आप में अविस्मरणीय अनुभव है। और मार्ग के दोनों ओर फैले हुए वन, पर्वतों से गिरते हुए असंख्य जलप्रपात और धुंध से ढके हुए शिखर, भाई वाह, यात्रा को केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का साधन ही नहीं रहने देते बल्कि आध्यात्मिक और प्राकृतिक आनंद का संगम बना देते हैं। भाई मैं तो ये कहूंगी
0: बहुत खूबसूरत। और पता है रश्मि जी, मैं एक सच्ची बात बता रही हूँ और ये मुझे लग रहा है कि जितने भी हमारे लिसनर्स हैं वो सुन रहे होंगे, वो भी महसूस कर रहे होंगे, जब आप ये बातें बता रही थी, ये पढ़ रही थी, तो हम सब अपने दिमाग में उसको कल्पना कर रहे थे।
1: बिल्कुल रमीशा जैन जी, हम ये कहेंगे कि आप बहुत खूबसूरत लिखती हैं, आपने तो शब्द चित्र बना दिया, आंखों के सामने वो चित्र घूमने लग गए, शब्द तैरने लग गए। ऐसा ही लिखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है घर आंगन, और मेल करते रहिए। मेल बताएंगी मंजुला दोबारा?
0: हाँ, मेल बता देती हूँ। पहले तो विषय जो हमारा प्रश्न है वो बता दूं कि बरसात में आपको क्या करना अच्छा लगता है और बरसात की सबसे अच्छी बात कौन लगती है। और हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। और अभी जो आपने ये मेल पढ़ा वो ऐसा लग रहा था जैसे रिमझिम के तराने बज रहे हों।

0: अभी हम सुन रहे थे गीता दत्त और मोहम्मद रफी को फिल्म काला बाजार से।
1: और बारिश की बातें हो रही हैं और हमारे पास मेलों की भी बारिश हो रही है, बहुत सारे संदेश आ रहे हैं। रोनी सेक्टर 8 से संजय कुमार, पुनीत रावत, विजय परवीन कुमार, प्रदीप, अरुण शिवा और ईशा कह रहे हैं कि वर्षा में हरियाली और मिट्टी की सुगंध का बस मजा ही आ जाता है और परिवार के साथ बैठकर बारिश का आनंद ले या घूमना हो तो वो कहते हैं देहरादून जाना उन्हें बहुत पसंद है।
0: क्या बात है। नहीं, देहरादून सच में बारिश में बहुत खूबसूरत
1: जी देहरादून और मसूरी
0: है। और अब हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन गुणों के लिए हम हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं वही खजाना हमारे अपने खेतों, हमारी रसोई और आयुर्वेद में सदियों से मौजूद है। तो चलिए करते हैं दिलचस्प तुलना। अकाई बेरी, जिसका नाम आपने सुना होगा, या आंवला। तो अकाई बेरी को रोगों से लड़ने वाला जो तत्व है उसका भंडार कहा जाता है, लेकिन हमारे आंवले में विटामिन सी कई गुना अधिक होता है और यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, त्वचा, बाल और पाचन सबके लिए बहुत ही लाभदायक है। और कीमत, जितने में अकाई बेरी का एक छोटा पैकेट आता है उतने में एक किलो ताजा आंवला मिल जाता है।
1: और इसके अलावा जो केल यानी कि केल या सहजन यानी मोरिंगा के पत्ते भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और केल तो दुनिया कहती है सुपर ग्रीन कहलाती है, थोड़ा महंगा होता है पर इस्तेमाल अगर आप करना चाहें तो। लेकिन हमारे जो अपना जो देसी सहजन के जो पत्ते हैं ना भाई, वो कैल्शियम, लोहा, प्रोटीन और पोटेशियम से भरे हुए हैं और पोषण के मामले में ये किसी भी विदेशी सुपर फूड से कम नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगी मंजुला कई बातों में वो आगे ही है ना।
0: बिल्कुल सही क्या। और कोरियन जिनसेंग की बात बहुत होती है लेकिन हमारा अश्वगंधा भी कम नहीं है। तनाव कम करने के लिए कोरियन जिनसेंग काफी लोकप्रिय है, वहीं अश्वगंधा सदियों से आयुर्वेद का अभिन्न हिस्सा रहा। आधुनिक शोध भी बताते हैं कि ये तनाव कम करने, अच्छी नींद लाने, ऊर्जा बढ़ाने और मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक हो सकता है।
1: और क्रेनबेरी और कोकम, भाई क्रेनबेरी जो है उसकी जूस की चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन जो कोकम है वो भी रोगों से लड़ने वाले तत्वों से भरपूर है और ये शरीर को ठंडक भी देता है और पाचन में मदद भी करता है और गर्मियों के लिए बेहतरीन प्राकृतिक पेय है। और मैं तो ये कहूंगी मंजुला, कोकम शरबत है ना, वो बहुत अच्छी अच्छी इसकी रेसिपीज भी, अगर महाराष्ट्र कोंकण रीजन की बात करें तो जब मैं बंबई प्रवास में रही तो बहुत सुंदर सुंदर बट मीठी मीठी डिशेज जो है वो मैंने वहाँ पे मुझे खाने का अवसर मिला। वाकई ये अच्छा हम लोगों ने आज लिया है कोकम को।
0: और जापानी माचा का नाम तो बहुत है लेकिन हमारे हल्दी दूध भी कम नहीं है दोस्तों। और कहते हैं कि रोगों से लड़ने वाले तत्व इसमें बहुत ज्यादा होते हैं।

0: हल्दी में पाए जाने वाले कर्क्यूमिन प्राकृतिक रूप से सूजन कम करने वाले सबसे प्रभावशाली तत्वों में से एक गिना जाता
1: जी,
0: है।
1: जी बिल्कुल, ये तो मुझे लगता है सभी लोग जानते हैं कर्क्यूमिन। भाई हमने बचपन में भी हल्दी तेल का तो खूब प्रयोग किया ही है त्वचा के लिए, और दूध में हल्दी डालकर भी हम लोगों ने पी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और आपको एक स्टाइलिश नाम चाहिए तो हम इसको वैसे भी आजकल हल्दी टर्मरिक लाते भी तो बोलते हैं।
1: बिल्कुल जी, जो हम घर में माँ और दादी हमें बनाकर देती थी ना दूध उबाल कर हल्दी, रात को कहती थी भाई चोट लगी है तो इसे पी लो, अंदर की चोट ठीक हो जाएगी, तो उसका जो थोड़ा सा फैंसी सा सजा धजा जो नाम है वो है टर्मरिक लाते, है ना।
0: बिल्कुल,
1: तो हम तो ये कहेंगे भाई सेहत का मतलब मंजुला केवल महंगे लेबल नहीं है बल्कि पोषण है, सही पोषण, है ना।
0: बिल्कुल सही, और विदेशी सुपर फूड अच्छे हो सकते हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो भारतीय विकल्पों से बेहतर हो,
1: और क्योंकि भारतीय विकल्प तो पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं हमारे, अधिक ताजे हैं, स्थानीय हैं, किफायती हैं और पोषण से भरपूर है, है ना।
0: और इसलिए अगली बार जब कोई इंपोर्टेड सुपर फूड की चर्चा करे तो एक नजर अपनी रसोई और अपने खेतों की ओर भी जरूर डालिए, क्योंकि सुपर फूड विदेश में ही नहीं हमारी अपनी थाली में है। स्वस्थ रहिए, स्वदेशी अपनाइए और समझदारी से चुनिए।

0: और अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म मधुमती से।
1: और मेरे पास एक और संदेश आ गया है मंजुला, वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार जी कह रहे हैं कि मुझे तो बरसात की याद आ रही है और मरीन ड्राइव पर घूमना याद आ रहा है और अच्छे खान पान के स्टॉल पर गरम गरम वड़ा पाव की मौज लेने की याद आ रही है। भाई वाह। और एक और संदेश हमारे पास आया है, सुरभि हमारे साथ जुड़ गई है मयूर विहार से। वो कहती है कि बारिश के बाद आसमान में खिलता हुआ इंद्रधनुष मुझे

बहुत पसंद है, ऐसा लगता है सुंदर रंगों से आसमान पर मुस्कान उकेर दी। और वो कहती हैं कि ये सिखाता है ज़िंदगी में चाहे कितनी भी बारिशें हो, मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद रंगों से भरी एक नई सुबह हमारा इंतज़ार करती है। इसे जब भी इंद्रधनुष दिखाई देता है तो मैं कुछ पल रुक कर उसे निहारना नहीं भूलती। और एक बात और मैं कहूँगी मंजुला, कि ये कार्यक्रम आज हमने बिल्कुल बारिश के गीतों पर रखा, बारिश की बातें करी, हम कहेंगे कि भारत में, हमारे देश में

0: अभी आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर को फिल्म है प्यासा सावन।
1: और इसी के साथ मंजुला अपने इस कार्यक्रम को, इस खूबसूरत सफर को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे, खुश रहिए और दूसरों की मुस्कान का कारण बनिए।
0: दीजिए मंजुला और
1: रश्मि कुकरेती को इजाजत।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इंडोनेशिया के योग्यकार्ता स्थित प्रामानंद मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
0: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त

0: समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि संयुक्त समिति ने उप समितियों को उनके संबंधित कार्यक्षेत्र के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन दिया और उनसे लंबित मुद्दों को शीघ्र अंतिम रूप देने को कहा है। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता मजबूत होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा ओडिशा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल ओडिशा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। इस बीच केरलम में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि बंदर अब्बास, केशम और सिरिक में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said that he considers it his good fortune to have had repeated opportunities to connect with Lord Shiva at various sacred sites. Addressing at the Prambanan Temple in Yogyakarta, Indonesia, the Prime Minister said he was born in Vadnagar, home to Hatkeshwar Mahadev, and that the Somnath Jyotirling in Gujarat, the first among the 12 Jyotirlings, holds special significance with him having direct responsibility for its development. Mr. Modi also noted that his parliamentary constituency, that is Kashi, Varanasi, is home to Kashi Vishwanath Mahadev, whose blessings, he said, have always guided him. Referring to the redevelopment of the Kedarnath Temple and the Mahakaleshwar Temple in Ujjain, the Prime Minister said he had the privilege of contributing to these projects. He added that his visit to the Prambanan Temple had also given him the opportunity to initiate renovation efforts, describing it as a matter of great fortune.
2: Yogyakarta ke is bhavya mandir complex, ab jab hum punarnirman ka kaam karne ja rahe hain, aur ye UNESCO ka world heritage hai, duniya ke dur dur kshetron mein kahin par bhi jaye, hame kahin na kahin Bharat ki sanskrutik virasat ke darshan hote hain. Ye pure Southeast Asia ka dusra sabse bada hamari virasat ki pehchan hai.
1: The Prime Minister has since

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड सुन रहे हैं आप। और फिलहाल वक्त हो चला है कलाकार बेमिसाल का, और आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात करेंगे अभिनेत्री नीतू सिंह की, जिन्हें हम नीतू कपूर के नाम से भी जानते हैं। तो आपको हम बता दें कि आज नीतू सिंह अपना 68वां जन्मदिन मना रही हैं। सबसे पहले तो उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई और हैप्पी वाला बर्थडे भाई। कामना करते हैं कि वो हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और हम सबका मनोरंजन ऐसे ही करती रहें। हम सब के लिए तो नीतू जी एक इंस्पिरेशन है, खास तौर से उनकी अदाकारी और उनकी एक प्यारी सी मुस्कान।

जिसके हम सब दीवाने हैं। इस उम्र में भी वो फिट हैं और एक्टिव हैं, हमेशा मुस्कुराती हुई नजर आती हैं। नीतू सिंह किसी पहचान की मोहताज नहीं। उनकी फिल्मों की बात करें तो यादों की बारात, दीवार, खेल खेल में, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, परवरिश, धर्मवीर, जानी दुश्मन, काला पत्थर, याराना जैसी कई सुपरहिट फिल्मों का वे हिस्सा रही। तो आज हम इसी खास अभिनेत्री की बात करेंगे जिनका नाम है नीतू सिंह। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं रुचिका आपके साथ। तो चलिए फिलहाल हम आप तक पहुंचाते हैं एक सुपरहिट गीत। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड।

जी हाँ, ये सुपरहिट गीत आपने सुना फिल्म खेल खेल में से। आपको बता दें कि आज हम कलाकार बेमिसाल के ज़रिए बात कर रहे हैं नीतू सिंह की। आज नीतू सिंह अपना 68वां जन्मदिन मना रहे हैं और कई सुपरहिट फिल्मों का वे हिस्सा रही। नीतू सिंह किसी पहचान की मोहताज नहीं है, अपनी मासूम सी मुस्कान और शानदार अदाकारी की बदौलत उन्होंने 70 के दशक में करोड़ों दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई थी। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया था और आपको बता दें कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1966 की फिल्म सूरज के साथ एक बाल कलाकार के रूप में की थी। 8 साल की उम्र में बेबी सोनिया के नाम से उन्होंने अभिनय शुरू किया था। फिल्म सूरज के अलावा नीतू सिंह ने 10 लाख दो दुनी चार, दो कलियां, वारिस, घर घर की कहानी और पवित्र पापी, इन सभी फिल्मों में बाल अभिनेत्री के रूप में काम किया और बेबी सोनिया का किरदार बखूबी निभाया। इन फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर काम करने के बाद उन्होंने फिल्म रिक्शावाला से बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके नायक थे रणधीर कपूर। तो चलिए, इस फिल्म का हमने जिक्र किया, उनकी डेब्यू फिल्म की हम बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इसी फिल्म से एक सुपरहिट गीत सुने और आप सबकी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: जी हाँ, ये गीत आपने सुना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में, और फिल्म थी रिक्शा वाला। आपको बता दें कि आज कलाकार बेमिसाल के ज़रिए हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री नीतू सिंह की, जिन्हें हम नीतू कपूर के नाम से भी जानते हैं। वे कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रही, जिनमें खेल खेल में, दीवार, यादों की बारात, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, धर्मवीर, परवरिश, जानी दुश्मन, काला पत्थर, याराना जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। और आपको बता दें कि उन्होंने अपने करियर में लगभग 80 फिल्मों में काम किया था और अपने दौर के लगभग हर नायक के साथ उन्होंने काम किया, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, ऋषि कपूर हो या फिर हो जितेंद्र। तो चलिए फिलहाल एक और सुपरहिट गीत हम आप तक पहुंचाते हैं, जो पिक्चराइज्ड है नीतू सिंह और शशि कपूर पर। फिल्म है दीवार। तो चलिए सुनते हैं ये सुपरहिट गीत। आप सुनते रहिए एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज।
1: हाँ,
2: क्या चुप रहूं
1: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है?
1: क्या है

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

जी हाँ, ये गीत आपने सुना फिल्म अदालत से और पिक्चराइज्ड था नीतू सिंह और अमिताभ बच्चन पर। आपको बता दें कि आज कलाकार बेमिसाल के ज़रिए हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री नीतू सिंह की, और वे कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रही। और आपको बता दें कि एक मुख्य अभिनेत्री के रूप में नीतू सिंह फिल्म रिक्शा वाला से, इस फिल्म से उन्होंने शुरुआत की, लेकिन फिल्म यादों की बारात के गीत लेकर हम दीवाना दिल में उनके प्रदर्शन ने उन्हें खासी लोकप्रियता दिलवाई। वहीं 1973 से लेकर के 1983 तक मुख्य नायिका के रूप में लगभग 50 फिल्मों में वे दिखाई दी, जिनमें खेल खेल में, जहरीला इंसान, हवस, दीवार, रफू चक्कर, कभी कभी, धर्मवीर, परवरिश, दूसरा आदमी, कस्मे वादे, द ग्रेट गैम्बलर जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। तो जब हम फिल्म द ग्रेट गैम्बलर की बात कर रहे हैं, तो चलिए इस फिल्म से आप तक पहुँचाते हैं एक सुपरहिट गीत। और आपको बता दें कि नीतू सिंह की जो जोड़ी है वो ऋषि कपूर के साथ तो सुपरहिट थी ही, साथ साथ अमिताभ बच्चन के साथ भी उनकी जोड़ी बेहद पसंद की गई थी।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

आपको बता दें कि फिल्मों में काम करने के दौरान नीतू सिंह और ऋषि कपूर की जोड़ी को बेहद पसंद किया गया था। जी हाँ, इनकी जोड़ी को बेहद पसंद किया गया था और इन्होंने करीब 12 फिल्मों में एक साथ काम किया, जिनमें खेल खेल में, रफू चक्कर, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, दुनिया मेरी जेब में, पति पत्नी और वो जहरीला इंसान, जिंदा दिल, दूसरा आदमी, अनजाने में, झूठा कहीं का और धन दौलत जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। वहीं 22 जनवरी 1980 को नीतू ने ऋषि कपूर से शादी कर ली और शादी के बाद उन्होंने परिवार को समय देने के लिए फिल्मों से एक लंबा ब्रेक ले लिया था और करीब 26 साल के बाद उन्होंने बड़े पर्दे पर वापसी की। वापसी के बाद वे कई फिल्मों में नजर आईं, जिनमें जुग जुग जियो, बेशरम, जब तक है जान जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं।

0: कलाकार बेमिसाल में बस इतना ही। फिलहाल वक्त हो चला है समाचारों का, सुनते रहिए एफएम गोल्ड।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के आलमी विरासत के मकाम परम्बानंद मंदिर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मंदिर के तहफ्फुज़ में भारत की शिरकत से दोनों मुल्कों की मुश्तरका सकाफती विरासत की अक्कासी होती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो रहे हैं। ब्रिक्स खवातीन की दो रोजा वजारती मीटिंग कोची में शुरू हो गई है, ताकि खवातीन को बाख्तियार बनाने और पायदार तरक्की के बारे में ताउन को मुस्तहकम बनाया जा सके। ईरान ने अमरीका के सिलसिलेवार हवाई हमले के बाद बहरीन और कुवैत में अमरीका के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। तेल की आलमी कीमतों में 2% से ज्यादा का इजाफा हो गया। और फीफा आलमी कप में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हरा दिया है। अब क्वार्टर फाइनल में उसका मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के हमराह आज योग्यकर्ता में यूनेस्को के आलमी विरासत के मकाम परम्बानंद मंदिर का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म का क्लासिकी योग्यकर्ता रक्स के साथ रिवायती अंदाज में खैरमकदम किया गया, जिसमें इंडोनेशिया के गुनागुन सकाफती विरसे की झलक पेश की गई। दोनों रहनुमाओं ने नवीं सदी के मंदिर कॉम्प्लेक्स का दौरा किया।

0: जहां वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने असल शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने भारत इंडोनेशिया इश्तराक के जरिए तहफ़ुज की जारी कोशिशों का जायजा लेने से पहले मंदिर की नक्काशी का भी जायजा लिया। एक मुश्तरका बयान में सदर प्रवोबो सुबियांतो ने कहा कि परम्बानन भारत और इंडोनेशिया के दरमियान सदियों पुरानी तहजीबी रिश्तों की एक अलामत है। उन्होंने मंदिर कम्प्लेक्स के तहफुज और बहाली के लिए मदद पर भारत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सकाफत दोनों मुल्कों को जोड़ने के लिए एक पुल के तौर पर काम कर रही है। योग्यकर्ता में परम्बानन मंदिर में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने अपने दौरे को रूहानियत से भरपूर और यादगार करार दिया। उन्होंने तकरीबन 1200 साल तक इस शानदार विरसे का तहफ़ुज़ करने पर इंडोनेशिया के अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मंदिर के तहफ़ुज़ में भारत की शराकतदारी से दोनों मुल्कों की मुश्तरका सकाफती विरासत का इजहार होता है।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वह मुख्तलिफ मुकद्दस मकामात पर भगवान शिव के साथ जुड़ने के मुतअद्दिद मौके मिलने को अपनी अच्छी किस्मत समझते हैं। इंडोनेशिया में योग्यकर्ता के मकाम पर परम्बानन मंदिर में एक इज्तमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि वह हटकेश्वर महादेव के वतन वाडनगर में पैदा हुए थे और ये कि 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उनके लिए खास अहमियत का हामिल है क्योंकि वो इसकी तामीर व तरक्की से बराह रास्त जुड़े हुए हैं।
1: यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं, ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
0: भारत और इंडोनेशिया ने आला तालीम के शोबे में ताउन को उसत देने की गरज से एक अहम कदम उठाया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल ऐलान किया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट AIIM बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला समुद्र पार कैंपस कायम करेगा। ये कैंपस मशरकी जावा में सिंगोसारी खसूसी इकतसादी जोन में कायम किया जाएगा। इस कैंपस से पूरे आसियान खित्ते के तलबा और पेशावर अफराद के मुस्तफीद होने का इम्कान है। IIM बेंगलुरु के डायरेक्टर इंचार्ज यू दिनेश कुमार ने कहा कि इस पहल कदमी से तालीम के शोबे में इश्तराक और ताउन को मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में ऑस्ट्रेलिया के 3 दिन के दौरे पर आज मेलबर्न पहुंचने वाले हैं, जहां वो ऑस्ट्रेलिया के अपने मनसब एंथोनी अल्बानीज के साथ तीसरी सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम में भी शरीक होंगे, जहां वो दोनों मुल्कों के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से खिताब करेंगे। जनाब मोदी भारतीय बिरादरी के लोगों के एक बड़े जलसे से खिताब करेंगे जो भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात का एक मजबूत सुतून है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत नई दिल्ली में आसियान भारत की एशिया की तिजारत से मुतालिक ज्वाइंट कमेटी AITIGA की 13वीं मीटिंग की मेजबानी कर रहा है ताकि आसियान भारत तिजारती समझौते का मजीद जायजा लिया जा सके। ज्वाइंट कमेटी की मीटिंग और इससे मुतालिका मीटिंगें इस माह की 6 तारीख से 10 तारीख तक मुनक्किद की जाएंगी, जिनमें कुछ अरकान वहां मौजूद हैं जबकि बाज़ अरकान वर्चुअल तरीके से मीटिंगों में शिरकत कर रहे हैं। कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा है कि ज्वाइंट कमेटी की बदौलत जेली कमेटियों को उनके काम से मुतल्लिक शोबों के बारे में कलीदी नवीयत की रहनुमाई फराहम हुई है। ब्रिक्स मुल्कों के खवातीन की वजारती मीटिंग कोची में शुरू हो गई। खवातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी और सेक्रेटरी अनिल मलिक और दिगर सरकर्दा शख्सियात ने खास इजलास में शिरकत की। यह इजलास कोची के ग्रैंड हयात होटल में दिन के 10:30 बजे शुरू हुआ। इससे पहले खवातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर ममलिकत सावित्री ठाकुर और सेक्रेटरी अनिल मलिक ने मुकम्मल इजलास में शिरकत की। खास इजलास के दौरान मुश्तरका बयान को मंजूरी दी जाएगी। इजलास के मकाम के नज़दीक देही तरक्की, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, तग़ज़िया और तालीम जैसे मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन की क़यादत वाली तरक्की में भारत की हुसूलियाबियों को उजागर करने के लिए

0: operation targeting 85 U.S. military facilities. The reported targets included Salman Port, the U.S. 5th Fleet headquarters in Bahrain, and the Al El Salem Air Base in Kuwait. Iranian media also quoted an IRGC spokesperson as saying that the country's air defense systems had shot down a U.S. MQ-9 drone over Bushehr province. Earlier, the U.S. carried out a fresh round of airstrikes on Iran, targeting more than 80 locations in response to Iran's latest attacks on commercial ships passing through the Strait of Hormuz. Global crude oil prices rose more than 2% today as renewed hostilities between the United States and Iran threatened to shatter the fragile ceasefire that had brought some relief to global energy markets. Brent crude was trading nearly 2.3% up at $75.87 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 2.2% up at $71.96 per barrel when reports last came in. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.8% down in the afternoon session today amid renewed geopolitical tensions in the West Asia. The Sensex plunged 590 points to 77,591, while the Nifty shed 185 points to 24,213 when reports last came in. And in football, Switzerland beat Colombia 4-3 in a penalty shootout in Vancouver to reach the quarterfinals of FIFA World Cup for the first time since 1954. With this win, Argentina will play against Switzerland in the quarterfinals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi visits UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, says India's participation in temple's conservation reflects shared cultural legacy of the two countries. Prime Minister Modi concludes his Indonesia visit, leaves for Australia to participate in third India-Australia annual summit. Two-day BRICS Women Ministerial Meeting begins in Kochi to strengthen cooperation on women's empowerment and sustainable development. Union Home Minister Amit Shah speaks to chief ministers of flood-affected states and assures all possible assistance from the centre. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms over central and eastern parts of the country. Iran targets American military sites in Bahrain and Kuwait after a wave of US strikes. Global oil prices jump over 2%. And Switzerland beat Colombia 4-3 in penalty shootout to set up quarterfinals against Argentina in FIFA World Cup. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं।

0: और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है। दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रामबानंद मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
0: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
1: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोच्चि में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे यह भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजेशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के

शासकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज

0: बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृहमंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता है और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज़गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज़ जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज़ जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार

मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांगण मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा सम्पन्न। तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कार्यक्रम उन्नत किसान में बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज एक कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं सीमा सती और मेरे साथ हैं।
1: जी हाँ किसान भाइयों, मैं हूँ आपके साथ शशि कपूर। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।
0: और शशि, जैसे कि हमारे कार्यक्रम में हर विषय पर चर्चा होती है और खास तौर पे हम कहते हैं ना कि खास खास प्रोग्राम खास खास विषयों पर लेकर आते हैं, और कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनका हमारे किसान भाई बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं कि आज इस संबंध में चर्चा होने वाली होती है। लेकिन अगर हम बात करें, आज जैसे कि तुम देख रहे हो कि अचानक बारिश हो गई है ना, मौसम ने एक बार फिर से अपना मिजाज चेंज कर लिया है। और मौसम की अगर हम बात कर रहे हैं, बरसात की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कहते हैं पौधों के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बरसात के समय हमारे किसान भाइयों को बहुत सारी सावधानियों की भी ज़रूरत होती है।
1: बिल्कुल, तो क्या कुछ हमारे किसान भाई बरसात के मौसम में कर सकते हैं, किन किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ फसलें तो ऐसी होती हैं जिनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ फसलें ऐसी भी होती हैं जिसकी मतलब आपको उन फसलों से खेत में से पानी की निकासी करना ज़रूरी होता है। तो उन सब की बात भी करेंगे। और देखिए वृक्षारोपण के लिए बड़ा ही अनुकूल ये समय है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और देखिए साथ साथ हम आपसे पहले भी बताते चले आए हैं कि सरकार की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। कभी कोई प्राकृतिक आपदा की वजह से कभी फसल खराब हो जाती है तो फसल का बीमा करवाना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर भी थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन
0: जी हाँ, और जैसे कि बात कर रहे हैं, बहुत सारी चर्चा तो आज हम करने ही वाले हैं, लेकिन जो आज खास चर्चा होने वाली है वो होने वाली है मशरूम की उन्नत खेती के ऊपर। और अगर हम मशरूम की बात करते हैं शशि, कहते हैं ना कि खाने में तो है ही बहुत स्वादिष्ट, और अगर हम इसकी खेती की बात करते हैं तो इसके बारे में हम इतना बताना चाहेंगे कि कम जगह में कम लागत में कितना ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली एक शानदार कि एक फसल है, कृषि व्यवसाय है। और अगर हम इसकी उसके औषधीय गुणों की बात करते हैं तो ये आपको बताएं कि ये बिल्कुल प्रोटीन से भरी हुई है। और इसके लिए हम बहुत सारी बातें आज आपको साथ करने वाले हैं, किस तरह से मशरूम की खेती संरक्षित तकनीक द्वारा उन्नत खेती कर सकते हैं, ये सब जानकारी मिलेगी आज के कार्यक्रम में आपको।
1: बिल्कुल, देखिए आज के समय में किसान भाइयों खेती भी आधुनिक होती जा रही है, और आप किसान भाइयों के जो स्मार्ट आइडिया हैं कृषि में क्रांति लाने का काम कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन बदलती उपभोक्ताओं की मांग और बाजार के बदलते स्वरूप ने आप किसानों को भी एक नए सिरे से खेती करने के लिए प्रेरित किया है। अब नई तकनीक और नई फसलों में आप किसान भाइयों की रुचि बढ़ी है, इसी के साथ अब आप कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली फसलों की खेती भी कर रहे हैं। इन फसलों में मशरूम भी शामिल है, और मशरूम ने बाजार

0: में बहुत ही कम समय में अपना स्थान कायम कर लिया है। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो शहरों से लेकर गांवों तक लोगों के बीच मशरूम काफ़ी पसंदीदा सब्जी बनती जा रही है। बाजार के पहले की तुलना में बदलते स्वरूप को देख आप किसान भी अब परंपरागत जो खेती है उसको छोड़कर नए सिरे से खेती करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, और साथ ही आप ऐसी खेती करके कम लागत में अधिक मुनाफा भी कमा रहे हैं। और आप मशरूम की खेती के फ़ायदे तो आपको पता ही चल गया कितने फ़ायदे हैं, और अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं, खासकर आज हम बात कर रहे हैं संरक्षित खेती की, तो कैसे शुरुआत करें और कहां से बीज लें, कौन सी मशरूम करें, और जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा, और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं तो उसे सीखना पहले पड़ता है, तब काम की शुरुआत होती है। तो इन्हीं सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में यानी कि हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर डी के राणा जी। आप अध्यक्ष हैं कृषि विज्ञान केंद्र उजवा नई दिल्ली में। तो डॉक्टर डी के राणा जी, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: आज हम संरक्षित तकनीक द्वारा मशरूम की उन्नत खेती की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो संरक्षित तकनीक है वो क्या है।
1: ये बड़ा एक इंटरेस्टेड विषय भी है और किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा आय का साधन भी है, क्योंकि जैसे आप जानते हो कि जो खेती होती है जनरली खेत में होती है, बीज लगाया जाता है, खाद डाला जाता है, पर मशरूम की खेती थोड़ा अलग हटके है। इसके लिए आपको, अगर हम प्रोटेक्टेड बात करते हैं, संरक्षित की बात करते हैं, इसके पहले तो मैं फायदे बताना चाहूंगा कि क्या फायदा है
0: जी।
1: क्योंकि जब आप संरक्षित खेती करते हो मशरूम की, तो इसको पूरे साल भर आप इसका उत्पादन कर सकते हो, इसको उगा सकते हो। क्योंकि जब मार्केट की बात आएगी आपको बेचने की, तो सबसे पहले जरूरी होता है कि जहां भी इसको आप बेचेंगे, चाहे होटल्स हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे कैटर्स हो, वहां आपको अच्छा मुनाफा मिलता है। तो वो चाहता है ये कि भाई पूरे साल मुझे मशरूम मिलती रहे। तो प्रोटेक्टेड की अगर हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि हम पूरे साल मशरूम की खेती करते रहे, और उससे हमको क्या है कि पूरे साल आमदनी मिलती रहेगी। और दूसरी हम बात करें जिसको कहते हैं हम फील्ड में खेती, सीधे तरीके से हम बात करते हैं, क्योंकि इसको उत्पादन करने के लिए दो तीन चीज महत्वपूर्ण है। एक तो चीज है कि तापमान, सबसे पहली जरूरत है तापमान। इसके लिए अगर हम बटन मशरूम की बात करें तो 15 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके उत्पादन के लिए होना चाहिए। और हम नमी की बात करें यानी कि ह्यूमिडिटी की बात करें, तो 80 से लेके 90% के बीच जो है आर्द्रता यानी कि नमी होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि ये हमको कम मिलती है, अगर हम नेचर की बात करते हैं तो जाके मिलती है हमको नवंबर से लेके फरवरी तक। अगर हम इन दोनों चीज को कंट्रोल कर लेते हैं तो पूरे साल हम इसकी मशरूम की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज की हम बात करें, तो सबसे पहले जरूरी है कि इसके लिए मशरूम घर होना चाहिए। तो कुछ चीजें हैं हमको, पहले तापमान और आपकी ह्यूमिडिटी अगर हमारे पास है, इस चीज को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हम इसकी राउंड द ईयर पूरे साल इसकी खेती कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, तापमान कंट्रोल की बात की आपने, ह्यूमिडिटी की बात की, तो किन किन उपकरणों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है?
1: इसको करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि हमको कितने क्षेत्र में मशरूम की खेती करनी है, और एक और भी ध्यान रखना होगा कि जब हम प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन करेंगे मशरूम का, तो हमको साथ साथ तीन कम से कम रूम एक साथ रखने पड़ेंगे। एक रूम में हमने क्या किया, पहले कंपोस्टिंग की, दूसरे में हमने 15-20 दिन के बाद कंपोस्टिंग की, तीसरे में उससे 15 दिन बाद की। तो ये क्या होगा, ये रेगुलर राउंड द ईयर चलती रहेगी। एक बार अगर हमारे पास एक ही कमरा है या कोई भी हमने कंट्रोल किया हुआ है, पप पैलन से किया है, तो उसमें क्या है कि एक बार किया फिर बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप होगा तो मार्केट में आप रेगुलर जो मशरूम सप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो उपकरण की बात करें तो मशरूम का जो घर होना चाहिए, और कंट्रोल कंडीशन की हम बात करें तो इसके लिए प्रॉपर वे में पूरी की पूरी तरह से इतना कंट्रोल होना चाहिए हमारा कि हवा भी उसके अंदर हम चाहे तो आए, अन्यथा हवा भी ना आ पाए। दूसरा, आप इसको पक्का बना सकते हो। इसके अलावा भी आप पैनल के द्वारा बना सकते हो, जिसमें कि आपका जो तापमान है, ह्यूमिडिटी है, वो प्रॉपर से आपका मैनेज हो जाए। इसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट की एसी की भी जरूरत पड़ेगी, आपको आपको जो है डक्टिंग की भी आवश्यकता पड़ेगी, आपको जहां आप कंपोस्ट डालोगे स्पान मिलाओगे वो रैक होना चाहिए या पोलोथीन होनी चाहिए, स्प्रे मशीन पानी की होनी चाहिए ताकि उसमें जो आप ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए, या जब आप उसके अंदर जो केसिंग मिट्टी आप डालते हो उसकी

0: ऊपर की परत को गीला करने के लिए स्प्रेयर भी आपके पास होना चाहिए, तापमान नापने का थर्मामीटर आपके पास होना चाहिए, ह्यूमिडिटी भी नापने का थर्मामीटर आपके पास होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नापने का इंस्ट्रूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें तो जनरली हैं कि जब आप कंट्रोल कंडीशन में करोगे तो ये चीजें आपको चाहिए ही चाहिएंगी।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो आपने जो चीजें बताई हैं उनमें लागत भी काफी आएगी, तो सरकार की तरफ से कुछ अनुदान मिलता है हमारे किसान भाइयों को?
0: हाँ, किसान भाइयों के लिए अगर हम कंट्रोल कंडीशन की बात करें तो इसके लिए अगर हम हरियाणा में बात करें, उत्तर प्रदेश में बात करें, राजस्थान में बात करें, तो वहां पे 40% यानी 40-50% सब्सिडी MIDH के माध्यम से भी दी जाती है किसान को, जो मिशन है भारत सरकार का बागवानी मिशन उसके माध्यम से भी दी जाती है। और वहां का जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है यानी कि बागवानी का जो अधिकारी है, उससे किसान भाई अपने जो डिस्ट्रिक्ट का है उससे संपर्क कर सकते हैं, जो वहां की जो सब्सिडियां हैं मशरूम के बारे में हो, चाहे मधुमक्खी के बारे में हो, या स्प्रिंकलर के बारे में हो, या बागवानी के क्षेत्र में हो, तो आप वहां से संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, मशरूम तो कई प्रकार की होती हैं और खासकर हम संरक्षित तकनीक की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी किस्म की मशरूम हमारे किसान भाई उगा सकते हैं?
0: अगर भारत में हम बात करते हैं तो अधिकतर जो है व्हाइट बटन मशरूम जो है उसको किसान भाई उगाते हैं, क्योंकि बाजार जो है, मांग जो है वो व्हाइट बटन मशरूम की है। तो इसको जो उगाने के लिए सबसे पहले जरूरी है, देखो दो तरीके से मैंने बताया, एक तो हम कंट्रोल कंडीशन में जिसको प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन हम कह रहे हैं
1: जी,
0: दूसरा है कि नेचुरल कंडीशन में या झोपड़ी वगैरह बना के वो भी हम वहाँ मशरूम सीजन में, वो भी सीजन में हम पैदा कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मशरूम घर आपके पास हो। मशरूम घर के अलावा जो आप बात करते हो तो इसकी खाद होती है जिसको कहते हैं कंपोस्ट, यानी कि मशरूम की खाद, वो साधारण गोबर की खाद नहीं होती, उसको बनाने के लिए वो कई चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी भी बनाने की कई तकनीकें हैं, जैसे एक को कहते हैं हम लॉन्ग मेथड द्वारा, जो लगभग 30 दिन में बनकर तैयार होती है। तो इसमें सबसे पहले गेहूं का भूसा हो, चाहे आपका धान का भूसा हो, चाहे वो सरसों का भूसा हो, चाहे वो बाजरे का भूसा हो, उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ कुछ जो अलग मिश्रण होते हैं, जैसे यूरिया का भी इस्तेमाल किया जाता है, म्यूरेट ऑफ पोटास का भी इस्तेमाल किया जाता है, आपका आटे जो चोकर होता है जिसको बोलते हैं वो भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके अलावा जिप्सम का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बनाने की कई सारी तकनीक है, जैसे लॉन्ग मेथड होगा, शॉर्ट मेथड होगा, एक होता है इंडोर मेथड, तो उसके द्वारा हम कंपोस्ट बना सकते हैं। और कंपोस्ट हम बाहर से भी ले सकते हैं, वो अगर परचेज भी करना तो वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा फिर जरूरत पड़ती है स्पान की, जिसको कहते हैं मशरूम का बीज, तो मशरूम का बीज भी जो है लगभग मार्केट में 80-100 रुपए किलो के आसपास मिलता है। 100 किलो कंपोस्ट जो होगी हमारी, लगभग 1 किलो बीज उसमें हमारा बटन मशरूम का लगेगा। तो इस हिसाब से अगर आप स्पान हैं तो स्पान को आप ले सकते हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ती है जिसको कहते हैं हम केसिंग मिट्टी। केसिंग मिट्टी की आवश्यकता तब पड़ती है जब पूरी तरह से जो आपकी खाद है माइसीलियम उसमें फैल जाता है, यानी कि मशरूम, जैसे मशरूम का बताया, मशरूम एक फंगस है, इसकी फ्लोटिंग बॉडी खाई जाती है, तो मशरूम फंगस है यानी कि जीव है, कवक है। तो ये धीरे धीरे क्या होता है कि जो इस खाद है कंपोस्ट उसमें धीरे धीरे फैलता है, वो लगभग 12 से 15 दिन के अंदर पूरी तरह से खाद में माइसीलियम फैल जाता है, कवक जाल उसका अच्छी तरह से फैल जाता है। उसके बाद केसिंग मिट्टी हम उसमें बिछाते हैं, केसिंग मिट्टी बिछाने के बाद धीरे धीरे उसके अंदर फिर माइसीलियम फैलने लगता है। तो अब हमको मॉइस्चर की, नमी की आवश्यकता पड़ती है, तो केसिंग मिट्टी को बनाने के लिए भी कई मिश्रण होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर केसिंग मिट्टी बिछा दी तो लगभग 12 से 15 दिन बाद फिर धीरे धीरे उसमें से पीनिंग निकलने लगती है, यानी कि धीरे धीरे से मशरूम की बॉडी निकलने लगती है, फूटिंग बॉडी, और वही 4-5 दिन में धीरे धीरे बढ़कर पूर्ण हो जाती है, फिर उसको तुड़ाई करके मार्केट में बेच दिया जाता है। साथ ही साथ मैनेजमेंट की हम बात करेंगे इसमें, कि साफ सफाई का ध्यान रखना, और कहीं भी किसी भी चीज की कोई इंसेक्ट आ रहा है या कोई डिजीज दूसरी आ रही है उनसे कंट्रोल करना, समय समय पर मॉइस्चर का ध्यान रखना, तापमान का ध्यान रखना, वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है मशरूम के लिए। अच्छा उत्पादन करने के लिए हमको मैनेजमेंट जो है यानी कि प्रबंधन जो है वो अच्छा होना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब ये तो आपने बताया कि सफेद मशरूम उत्पादन के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं, कोई भी हम काम शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसकी जानकारी की या प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है, तो जो भी किसान भाई मशरूम की खेती करना चाहते हैं खास करके संरक्षक तकनीक द्वारा, तो कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं?
0: क्योंकि जो इसकी खेती है अन्य खेतियों की तुलना में बिल्कुल अलग है, तो इसकी जानकारी प्रॉपर वे में होनी चाहिए। तो इसकी जानकारी के लिए जो इच्छुक किसान भाई हैं वो नजदीक के अपने कृषि विज्ञान केंद्र में, क्योंकि सभी जिलों में देश के कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां से

पर कर सकते हैं। वहां से लगभग उनको 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण देने में सारी चीजों को बताया जाता है कि किस प्रकार से जो है मशरूम को हम कर सकते हैं, स्पान कैसे तैयार कर सकते हैं, क्या क्या सावधानी आपको रखनी है, टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना, रूम कैसे आपका होना चाहिए, रेक एक दूसरे से कितनी दूरी पे होनी चाहिए, तो वो पूर्णतः आपको जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिस है जिसको हम कहते हैं, उनके माध्यम से भी, कृषि इकाई के माध्यम से भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो किसान भाई सबसे पहले तो आपके नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र में, इसके अलावा जो देश में कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालय में भी इनका प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

0: किसान भाइयों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम उन्नत किसान में। और जैसा कि अभी आपने जाना कि जो मशरूम की खेती है वो किस तरह से आप तो कर सकते हैं, कौन कौन सी जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और कहाँ पर आप उसकी ट्रेनिंग लें, क्योंकि बिना ट्रेनिंग लिए आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती है। तो जैसा डॉक्टर साहब आपको बता रहे थे कि इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, बाकायदा प्रशिक्षण होता है, बीज कहाँ से लेना है और कितनी सब्सिडी आपको चाहिए, वो सब डॉक्टर साहब इसमें बता ही रहे थे आपके लिए। तो और भी बहुत सारी बातें कुछ इसमें रह गई थी, तो उनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो मशरूम आपको कम जगह है जैसे आपके पास में, तो भी आप उसकी खेती यानी कि इसको उगा सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या एक आती है कि आपने मशरूम का उत्पादन तो कर लिया लेकिन आपको ज़रूरत होती है बाज़ार की, तो बाज़ार आपको कैसे मिले, तो उसके लिए तो आपको जो अपने आसपास हैं रेस्टोरेंट हैं, आपके कोई होटल हैं, वहाँ जा कर के आप सीधे उनसे बात कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं इसके लिए कि आप हम ये उत्पादन करते हैं आप हमसे लीजिएगा। और डॉक्टर साहब ने भी ये भी बताया था कि जब आप उत्पादन लेकर के बाज़ार जाते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक उसको ले जाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाता है, तो जो एक टाइम दे रखा होता है उसके अंदर ही आपको बाज़ार ले जाना होता है। तो इन सब बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ जैसा कि अभी जो बरसात का मौसम है तो बड़ा ही अनुकूल मौसम है, आप इस मौसम में वृक्षारोपण कर सकते हैं और सरकार की एक योजना भी चल रही है वृक्षारोपण के लिए, तो आप उसका लाभ ज़रूर लीजिएगा। और उस योजना का नाम है हर मेड़ पर पेड़, तो इस योजना का लाभ आप कैसे लें, तो लाभ लेने के लिए आप अपने नज़दीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ आप जाइएगा और जो भी वैज्ञानिक हैं, जो भी वहाँ जो प्रभारी हैं उनसे आप बात करेंगे तो उसके बारे में आपको वो बता देंगे। और इस तरह से आप जो अनुकूल मौसम है, क्योंकि ये जो मौसम होता है बरसात का, बहुत ही पौधारोपण के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस दौरान जो प्राकृतिक रूप से पानी मिलने वाला, तापमान अनुकूल रहने से जो पौधों की जड़ें हैं तेज़ी से उनका विकास होता है और उनके जीवित रहने की संभावनाएँ वो सबसे अधिक होती है। तो इस दौरान आप जो वृक्षारोपण करेंगे तो अच्छा ही है। और देखिए, जो वृक्षारोपण होता है वो प्रकृति के लिए बहुत लाभदायक होता है, पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, आप फलों के वृक्ष लगाना चाहते हैं, लकड़ी के लिए लगाना चाहते हैं, तो बहुत सारे लाभ हमें वृक्षों से मिलते ही मिलते हैं। और ये भी आपको पता ही है कि जो वृक्ष होते हैं वो वर्षा में भी सहायक होते हैं, तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और चलिए, जो कुछ चर्चा रह गई थी उसको आप फिर से सुन लेते हैं मशरूम के बारे में, डॉक्टर साहब और भी आपको बता रहे हैं। तो डॉक्टर डी के राणा जी, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: आज हम संरक्षित तकनीक द्वारा मशरूम की उन्नत खेती की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो संरक्षित तकनीक है वो क्या है।
1: ये बड़ा एक इंटरेस्टेड विषय भी है और किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा आय का साधन भी है, क्योंकि जैसे आप जानते हो कि जो खेती होती है जनरली खेत में होती है, बीज लगाया जाता है, खाद डाला जाता है, पर मशरूम की खेती थोड़ा अलग हटके है। इसके लिए आपको, अगर हम प्रोटेक्टेड बात करते हैं, संरक्षित की बात करते हैं, इसके पहले तो मैं फायदे बता।
0: तो डॉक्टर डी के

0: तो किसान मित्र, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बरसात का जैसे हम बात हो रही है और सब बता ही रहे हैं आपको, और फिर से आपको एक बार याद दिला देते हैं, ये जो मशरूम की खेती बड़ी आसानी के साथ आप और
1: इस खेती करने के लिए, जैसे अभी आप चर्चा कर ही रहे थे कि आप अपने जो नज़दीकी हैं कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पर आप जाकर के संपर्क कीजिएगा तो ज़रूर आपकी जो समस्या है उनका समाधान हो जाएगा और मशरूम बड़ी आसानी के साथ आप उगा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें इस मौसम में, तो पशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बेहद आवश्यक है, क्योंकि जो पशु हमारे होते हैं वो हमारे पशुधन होते हैं। और देखिए, फसलें जो होती हैं वो कभी 3 महीने बाद हमको आमदनी देती हैं या 6 महीने बाद उनसे कुछ आमदनी होती है, लेकिन जो पशु होते हैं उनसे कुछ ना कुछ हमें मिलता ही रहता है। हम चाहे हम दूध की बात करें और जो पशुओं का गोबर है खाद के रूप में इस्तेमाल होता है, तो ऐसे में उनकी देखभाल करना अति आवश्यक है। और देखिए, संक्रमण हो जाता है बारिश में, मुंह पका, खुर पका, गलघोंटू जैसी जानलेवा बीमारियां भी पशुओं में हो जाती हैं। तो इनसे पशुओं को बचाने के लिए क्या करना है, आपको उनका टीकाकरण करवाना बहुत आवश्यक है। और इसके साथ ही जहाँ पर पशुओं को आप बांधते हैं तो वो जगह जो है वो हवादार होनी चाहिए, नीचे गीलापन नहीं होना चाहिए, हवा का आदान प्रदान होता रहना चाहिए, और स्वच्छ पानी पशुओं को पिलाएं, क्योंकि बरसात के मौसम में पानी गंदा हो जाता है तो उसकी वजह से भी पशु बीमार हो सकते हैं। आप अगर अशुद्ध पानी पिलाते हैं या गंदा पानी पिलाते हैं तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। उनके जो जहाँ बैठते हैं पशु, तो सूखा सूखा होना बहुत ज़रूरी है ताकि उनको कोई असुविधा का उनको सामना ना करना पड़े। तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें, खास करके टीकाकरण जो है पशुओं का ज़रूर करवाएं। अब जैसा कि आपको पता है, अब धान की रोपाई भी आप कर रहे होंगे, तो ये धान की जो फसल होती है इसको तो पानी की आवश्यकता होती होती है, तो बड़ा ही ये अच्छा मौसम है। अगर जिन किसान भाइयों की जो तैयारी हो गई है, खेत तैयार हैं, तो वो लगा सकते हैं। और कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको पानी की थोड़ी कम आवश्यकता होती है, खेत से पानी को निकालना पड़ता है। जैसे कि मान लें किसी किसान भाई ने गोभी की फसल लगाई हुई है या मूली की उनकी खड़ी हुई है, तो पानी की निकासी खेतों से समुचित तरीके से कर दें, क्योंकि गोभी की फसल ऐसी होती है कि अगर इनकी जड़ पानी में है तो फिर जो है जो जड़ गलन की समस्या वो आ जाती है। और जो भाई अब लगा रहे हैं तो मेड़ बना करके अगर वो लगाएंगे गोभी की जो पौध है, तो उनको ज़्यादा लाभ हुआ, क्योंकि जो जड़ें वो ऊपर होंगी, पानी नीचे रहेगा, तो पौधे हैं वो सुरक्षित रहेंगे। तो इन बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं कि कोई भी हमारी फसल होती है तो कभी भी मौसम बदल सकता है या कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है, तो उससे बचने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सरकार की बहुत ही कल्याणकारी योजना है, जिसका कि आप लाभ ले सकते हैं। लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी फसलों का बीमा करवाएंगे। और बीमा करवाने के लिए, जैसा हम पहले ही बता चुके हैं कि आप अपने जो नज़दीकी बैंक के, अधिकतर ग्रामीण हमारे क्षेत्रों बैंक होती हैं, तो वहाँ जा कर के आप उनसे पूछिएगा कि किस तरह से आप अपनी जो फसल है उसका बीमा कराएं, ताकि आने वाली कोई भी आपदा में आपको जो है वो मुआवजा मिल जाए कम से कम। क्योंकि खेती में जो लागत होती है और इतना समय लगता है, तो वो भी कहीं ना कहीं बेकार हो जाता है और हमें कुछ आमदनी भी नहीं होती है। तो ऐसे में एक गाना भी आपको, यानी कि संगीत संगीत का आनंद भी आपको लेना बहुत ज़रूरी है, तो चलिए एक गीत सुन लेते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। प्रांबानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। इससे पहले महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर तथा सचिव अनिल मलिक ने पूर्ण सत्र में भाग लिया। केरलम के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन भी आज शाम सम्मेलन में शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा की। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की और राहत तथा पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का

0: आश्वासन दिया। इस बीच मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार भारी बारिश हो रही है। आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज के साथ बादल बरसने, तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। प्रभास मंडल को एक नाबालिग लड़की के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या मामले में गिरफ्तार किया गया था। ईरान ने होर्मुज़गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलीम वायुसेना अड्डा शामिल है। अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today visited the UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, along with Indonesian President Prabowo Subianto. The Prime Minister was accorded a traditional welcome with the resonant notes of a gamelan ensemble and a classical Yogyakarta dance performance, reflecting Indonesia's rich cultural heritage. The two leaders toured the 9th century temple complex, where Prime Minister Modi offered prayers at the main Shiva temple. In a joint statement, President Prabowo said, Prambanan stands as a symbol of the centuries-old civilizational bond between India and Indonesia. He thanked India for its support towards the conservation and restoration of the temple complex and said culture continues to serve as a bridge connecting the two nations. Addressing the Prambanan Temple, Prime Minister Modi described the visit as a deeply spiritual and memorable experience.
2: यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं, ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
1: Earlier, India and Indonesia strongly condemned terrorism in all its forms and called for a decisive, coordinated international efforts to combat the threat in accordance with the international law. In the second leg of his three-nation tour, Prime Minister Modi will reach Melbourne today on a three-day visit, where he will participate in the third India-Australia Annual Summit with the Australian Prime Minister Anthony Albanese. Mr. Modi will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both the countries. The BRICS Women's Ministerial Meeting has commenced in Kochi. The joint statement will be adopted during the main session. Following this, the ministers representing the delegates at the meeting will visit an exhibition organized in connection with the BRICS Summit. Exhibitions highlighting India's achievements in women-led development across various sectors are being held near the venue. Union Home Minister Amit Shah today spoke to the chief ministers of several states affected by heavy rainfall, flood-like situation and landslides and assured them of all possible assistance from the centre. Mr. Shah spoke to Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, Gujarat.

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 3:11 हुए हैं। आप सुन रहे हैं अपने उस कार्यक्रम को जिस कार्यक्रम का नाम है मन भावन। और मन को आपके इसलिए भी और ज़्यादा भाता है ना, क्योंकि सिर्फ इस कार्यक्रम में हम ही नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि दो तरफा जुड़ाव इस कार्यक्रम के साथ है, आपका भी और हमारा भी। आपका जुड़ाव इस तरह कि आप अपनी पसंद के गीत हम तक लिखकर भेजते हैं, और हमारा जुड़ाव इस तरह कि आपके नामों के साथ हम उन गीतों को आप तक और अपने सभी श्रोताओं तक पहुँचाते हैं। जी हाँ, आज के मन भावन कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ नईम अख्तर। आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी एफएम गोल्ड। और मन भावन कार्यक्रम के लिए आप अपनी फरमाइश ईमेल कर सकते हैं हमें। ईमेल करने का तरीका आप जानते हैं क्या होता है। ईमेल आईडी हम आपको बता देते हैं, fmgoldairdelhi@gmail.com। स्पेल आउट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए, fmgoldairdelhi@gmail.com। तो आपकी पसंद के गीत हम तक पहुँचें और हम उन्हें आप तक पहुँचाएं, इस बात का इंतज़ार आपको भी है और हमें भी है। तो क्यों ना आगाज़ कर दिया जाए आज के कार्यक्रम का। और आज के कार्यक्रम का भी आगाज़ करने के लिए, क्योंकि फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम है, वो भी आपकी फरमाइश के गीतों का, तो एक भी गीत हम अपनी पसंद का क्यों सुनवाएं, हम सारे ही गीत आपकी पसंद के सुनवाएंगे। तो ये पहला जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई है, फरमाइश आई है, वो हमें लिखकर भेजी है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा ने। और इन्होंने सुनना चाहा है अपनी पसंद का फिल्म दाग का ये गीत, 1973 की फिल्म दाग।

0: नहीं है।
1: आपका साथ कैसे गवारा नहीं होगा, आप ही के लिए तो हमारा कार्यक्रम है मन भवन, और आप ही के लिए हमारी पेशकश भी है। मन भवन कार्यक्रम में अपनी पसंद के गीत हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें भेज सकते हैं ईमेल इस ईमेल आईडी पर fmgoldairdelhi@gmail.com यानी fmgoldairdelhi@gmail.com। तो आपकी पसंद की गीत की फरमाइश का हम कर रहे हैं इंतज़ार, और अभी जो 1957 के

फिल्म पेइंग गेस्ट का गीत आपने सुना माना जनाब ने पुकारा नहीं। किशोर कुमार की आवाज में गाए गए इस गीत की फरमाइश हमें भेजी थी नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह ने। क्या बात है, आप सबके नाम तो हमें ये बता रहे हैं कि आप गुजरात से हैं और आपका मैसेज आया हमें मध्य प्रदेश से। कोई बात नहीं, पूरा भारत ही हमारा है, हम चाहे जहाँ रह सकते हैं किसी भी प्रदेश से रिश्ता रखते हुए। खैर, ये तो आपकी पसंद का गीत हुआ जो आपके साथ साथ हम सब ने सुना, और अगला गीत जो हम सुनवाने जा रहे हैं वो उसकी फरमाइश हम तक पहुंची है सनावद से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोड़ाना ने। इन सभी ने अपनी पसंद का गीत तो भेजा है लेकिन साथ ही सब कुछ लिख डाला है 1971 की फिल्म मेरा नाम मेरा देश मेरा गाँव मेरा देश। गायक लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी और कलाकार धर्मेंद्र और आशा पारी। क्या बात है दोस्त, इस फिल्म के दीवाने हैं आप या इस गीत की फरमाइश आपने आज के मौसम को देखते हुए करी है। बारिश हो रही है ना, लेकिन हालांकि अभी सिर्फ बारिश है, मॉनसून चल रहा है, सावन नहीं आया है, लेकिन आपकी फरमाइश को मद्देनजर रखते हुए हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये गीत। आप सावन का न सही बारिशों का आनंद तो ले ही सकते हैं इस गीत के माध्यम से, और इसकी मधुर धुन और गायकी, वाह वाह क्या बात है।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। मन भावन लेकर आपके लिए हाजिर हूँ आज मैं नईम अख्तर। आप अपनी पसंद के गीत हम तक पहुँचा रहे हैं जिस ईमेल आईडी पर, वो ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com fmgoldairdelhi@gmail.com। और आपकी पसंद के गीत मैं आप तक पहुंचा रही हूं, मैं आपके साथ ही नईम अख्तर। अभी जो गीत हमने सुना, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, इस गीत को सुनने की फरमाइश हमारे पास आई थी स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया। क्या बात है, कितना खूबसूरत नाम है एंजल आपका, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया की। आपने अपनी पसंद का गीत सुन लिया होगा। और उससे पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया था, कुछ कहता है ये सावन, मेरा गांव मेरा देश फिल्म का गीत, उसकी फरमाइश हमारे पास एक और श्रोता की भी आई है। ये हैं उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही महराज जहां, इन्होंने हमें आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से मैसेज भेजा था। तो दोस्त आपने भी अपनी पसंद का गीत सुन लिया होगा। और अभी जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो फिल्म खेल खेल में से

लिया है हमने। इस गीत की फरमाइश भेजी है भोपाल गढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार ने। और लिखते हैं साथ में कि हम भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, आनंद उठा रहे हैं, लेकिन ना तो फरमाइश का गीत हमारी बजता है और ना हमारा मैसेज ही शामिल होता है। एक नगमा सुनने की काफ़ी दिनों से हमारी इच्छा है, क्या आप पूरी करेंगे? जी दोस्त, आपकी फरमाइश हम तक पहुंची, इत्तफाक से हमारे पास आ भी गई, हमने उसको ओपन भी कर लिया और हमारे पास वो गीत निकल भी आया। तो चलिए हम आपको आपकी पसंद का गीत सुनवा रहे हैं, और अगर बहुत दिनों से ये गीत सुनने की आपकी इच्छा थी तो आज अपनी इच्छा पूरी कीजिए FM गोल्ड के साथ।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर 3:47:58 हुए हैं और कार्यक्रम मन भावन के आखिरी 10-12 मिनट बचे हुए हैं हमारे पास, लेकिन आपकी पसंद के जो गीत हम तक पहुंच रहे हैं उन्हें हम आप तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हमारे कुछ श्रोता ऐसे ज़रूर हैं जो हमसे नाराज़ हैं इसलिए कि हम उनका नाम शामिल नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात बताओ आप मुझे, आप अपना नाम तो शामिल करवाना चाहते हैं लेकिन अपनी पसंद का गीत लिख कर नहीं भेजते, तो कैसे आपकी पसंद का गीत भी पहुंचाएं आप तक और आपका नाम भी शामिल करें? तो नाराज़गी छोड़ दीजिए, और जो उल्टे सीधे इल्ज़ाम आप हम पर लगाते हैं कि भाई अगर अपने जान पहचान वालों के नाम आपने शामिल कर लिए हो तो हमारा संदेश भी पढ़ लीजिए, बिल्कुल आप भी हमारे जान पहचान वाले बन जाएंगे, अपने नाम के साथ गीत के बोल ज़रूर लिख करके भेजिए। खैर, अभी जो गीत हमने आपको सुनवाया था फिल्म प्यार किए जा फिल्म का फूल बन जाऊंगा शर्त ये है मगर, इस गीत को सुनने की फरमाइश हमारे पास भेजी थी उमेश कुमार, दिनेश कुमार, अनुज कुमार और सोनित कुमार ने ख्याला से। और अगले जो गीत को हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं उससे पहले बता दें कि एक हमारे पास बड़ी अच्छी सी फरमाइश आई है गौरी शंकर वर्मा की नांगलोई से, उन्होंने मान गए उस्ताद फिल्म का गीत सुनने की फरमाइश भेजी थी, एक छतरी और हम हैं तो अब क्या हो कुछ तो करो। भाई गीत वाकई आज के मौसम को बहुत सूट कर रहा है, लेकिन दोस्त हम आपसे माफी चाहेंगे क्योंकि हमारे पास ये गीत इस वक्त अवेलेबल नहीं है। खैर, हमारे वो सभी श्रोता जो अभी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और उनके पास हमारा ईमेल आईडी नहीं है, उनको हम बता दें कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर fmgoldairdelhi@gmail.com fmgoldairdelhi@gmail.com। तो आपकी पसंद की गीत का की ईमेल का इंतज़ार हम कर रहे हैं और आपकी भी इंतज़ार को यहीं विराम लगाते हुए बताते हैं कि हमारे पास जो अगला सॉन्ग आपको सुनाने के लिए है वो है भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से कौशल्या देवांगन, रोशन देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन का, इन सभी ने सुनना चाहा है ये गीत।

इस गीत की फरमाइश हम तक पहुंची थी फरीदाबाद हरियाणा से स्वाति, वर्तिका और निशिकी। लगता है ये तीनों आपस में दोस्त हैं, तभी इन्होंने ये गीत सुनना चाहा कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। चलिए अच्छी बात है, ये दोस्ती यूं ही बरकरार रहे, ना सिर्फ आपकी बल्कि आपकी और हमारी भी। जी हाँ, FM गोल्ड और हमारे श्रोताओं की भी। इस दोस्ती को हम चाहेंगे

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांभनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। प्रांभनन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति प्रोबोवो ने कहा कि प्रांभनन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और एक यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों के दौरे की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोच्चि में शुरू हो गया। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज बारिश से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जल भराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा की। इस बीच केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की और राहत तथा पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के अगले दो तीन दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि सारस

0: 4:54 102.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड, और आपके साथ मैं हूँ नईम अख्तर, लेकर आपके लिए बरसात के इस बहारों वाले मौसम में कुछ खूबसूरत नगमे लेकर।
1: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है?
2: क्या?
1: मैंने पूछा, बागों में बाहर है?
2: है।
1: गलियों पे निखार है?
2: हाँ है।
1: तो तुमको मुझसे प्यार है?
2: नहीं।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर अपनी पसंद का फिल्म संगीत। जी हाँ, फिल्म संगीत लेकर आपके साथ मैं हूँ और वक्त हुआ है शाम के 4:16। सुनते हैं एक और गीत आप ही की पसंद के मुताबिक।

0: और इसके फौरन बाद सुनिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज।
1: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with the Office of the Central Registrar of Cooperative Societies under the Ministry of Cooperation has extended the last date for submission of applications for various posts advertised earlier in Employment News, which was dated from 25th April to 1st May 2026. The vacancies included 2 additional registrars level 13, 5 joint registrars level 12, 2 deputy registrars level 11, 1 assistant registrar level 10 and 2 senior cooperative officers level 7 on deputation including short-term contract basis. The revised last date for receipt of applications is 10th July 2026, while all other terms and conditions of the original advertisement remains unchanged. Detailed information is available on the Ministry of Cooperation website, that is at www.cooperation.gov.in, or you could also go on to www.crcs.gov.in. The Council of Scientific and Industrial Research, CSIR, under the Department of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science and Technology, has invited online applications for the recruitment of 100 Assistant Section Officers, ASOs, post in Pay Matrix Level 7 on direct recruitment basis. The recruitment is open exclusively to non-recommended candidates of the UPSC Civil Services Examination 2024. Online applications will be accepted till 13th July 2026. Detailed information regarding vacancies, eligibility criteria, age limit, and online application process is available on the official CSIR website, that is at www.csir.res.in. The Central University of Kerala, CUK, has invited online applications from eligible Indian nationals and overseas citizens of India for recruitment to various teaching posts on regular basis. The vacancies are advertised for teaching posts in various departments and teaching positions under the Integrated Teaching Education Program. Interested candidates may apply online through the Samarth portal, that is at www.curec.samarth.ac.in. The last date for online submission is 10th July 2026, while the hard copies of the application may reach the university by 25th July 2026. Detailed eligibility criteria, vacancy details and application guidelines are available on the university's website. Kindly look up www.cukerala.ac.in or you can go on to www.curec.samarth.ac.in. The Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology, an institution of national importance under the Ministry of Petroleum and Natural Gas, has invited applications from eligible Indian nationals for contractual appointments to temporary positions. The vacancies include 2 training and placement officers, maximum age 45 years, with a consolidated remuneration of 2 lakhs per month, and superintendent grade 1 accounts with a consolidated salary of 50 to 60,000 rupees per month, and the age limit is 35 years. Interested candidates can view the eligibility criteria and submit their applications through the recruitment portal. The last date for submission of applications is 15th July 2026. For details, do look up the website at www.rgipt.ac.in. And now we have the employment news in Hindi.
2: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार। रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक का केंद्रीय भर्ती एवं प्रोन्नति विभाग कॉरपोरेट केंद्र मुंबई आमंत्रित कर रहा है परिवीक्षा अधीन अधिकारियों यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए आवेदन। कुल 1500 रिक्तियां उपलब्ध हैं, जिनमें से 234 अनुसूचित जाति के लिए, 144 अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 390, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 144 तथा सामान्य वर्ग के लिए 588 रिक्तियां उपलब्ध हैं। वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता, नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं भारतीय स्टेट बैंक की इस वेबसाइट से, जिसका पता है sbi.bank.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप करियर्स सेक्शन में करंट ओपनिंग्स को खोल सकते हैं। वहां आपको तमाम जानकारी विस्तार से प्राप्त हो जाएगी। और आप चाहें तो रोजगार समाचार का 4 जुलाई से 10 जुलाई 2026 का अंक भी देख सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग प्रतिनियुक्ति आधार पर सहायक निदेशक गोपनीय के पद को भरना चाहता है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। सामान्य शर्तें, पात्रता मानक, आयु सीमा, आवेदन पत्र का प्रोफॉर्मा आदि विवरण के लिए देखिए संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in। राष्ट्रीय सिद्धा संस्थान वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के एक पद को भरना चाहता है, जो प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती के आधार पर भी भरा जा सकता है। वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता, अन्य नियम एवं शर्तों की जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय सिद्धा संस्थान की वेबसाइट nischennai.org। युद्धक वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान जूनियर रिसर्च फेलो के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इसके लिए निर्धारित विषय हैं मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग तथा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 7, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तथा संचार इंजीनियरिंग के लिए 2 और 5 तथा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 2 रिक्तियां उपलब्ध हैं। वेबसाइट का पता है drdo.gov.in। पत्राचार के लिए ईमेल का पता भी नोट कीजिए pmhr.cvrde@gov.in। किसी भी अन्य संबंधित पूछताछ के लिए सोमवार से शुक्रवार तक के कार्य दिवसों में सवेरे 9:30 से शाम 5 बजे तक इस फोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 0444-26-36-21-36। नागर विमानन मंत्रालय में उप महानिदेशक के 4 रिक्त पद मौजूद हैं। इन्हें भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। योग्यता तथा अन्य नियम एवं शर्तों की जानकारी के लिए नागर विमानन मंत्रालय की वेबसाइट आप देख सकते हैं www.civilaviation.gov.in। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के जरिए आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। परिणाम उन उम्मीदवारों के लिए है जो भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा 2026 में शामिल होने के योग्य पाए गए हैं। ये परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है www.upsc.gov.in। सभी योग्य उम्मीदवारों को ये सूचित किया जाता है कि उन्हें आयोग की वेबसाइट पर तमाम आवश्यक जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
3: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बज रहे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी तन्वी खुराना। तन्वी, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार करिश्मा। हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू परिक्रमा ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज। वेल, करिश्मा हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस यू टू आवर प्रोग्राम एंड फॉर यू वी हैव सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट, डेडलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। All these over the next just 30 minutes. Let's begin our program with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi visits UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, says India's participation in temples conservation reflects shared cultural legacy of the two countries.
1: प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना।
2: टुडे ब्रिक्स वुमेन मिनिस्टीरियल मीटिंग बिगिंस इन कोची टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
2: IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms over central and eastern parts of the country.
1: अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पे तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी।
2: And Switzerland beat Colombia 4-3 in penalty shootout to step up quarterfinals against Argentina in FIFA World Cup. And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we are going to talk about Math 2.0 Day and India Handmade Platform. Today is 8th of July, as you all know, and we are celebrating something that proves numbers can actually be exciting, Math 2.0 Day.
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब ज़्यादातर लोग मैथ्स यानी गणित शब्द सुनते हैं तो उन्हें तुरंत मुश्किल फॉर्मूले, कभी ना खत्म होने वाली कैलकुलेशन और परीक्षा के तनाव की याद आ जाती है।
2: एग्जैक्टली, बट टुडे वी आर चेंजिंग दैट परसेप्शन। मैथ 2.0 डे सेलिब्रेट्स द अमेजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, शोइंग अस हाउ डिजिटल टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्मार्ट सॉफ्टवेयर हैव मेड मैथ्स मोर इंटरैक्टिव, practical and accessible than ever before.
1: तो अब जरा सोचिए, चाहे आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए GPS का इस्तेमाल कर रहे हों, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हों, डिजिटल पेमेंट कर रहे हों, या फिर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हों, या ये भी हो सकता है कि किसी म्यूजिक को ही सुन रहे हों, गणित चुपचाप पर्दे के पीछे अपना काम करता रहता है।
2: एब्सोल्युटली ट्रू। मैथ्स इजंट जस्ट अबाउट सॉल्विंग इक्वेशंस, इट्स अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, मेकिंग डिसीजंस, स्पॉटिंग पैटर्न्स एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड अस।
1: हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे मैथ्स की क्या जरूरत है, मेरे फोन में तो कैलकुलेटर है।
2: राइट, बट मेंटल मैथ्स इज अबाउट मच मोर देन गेटिंग द राइट आंसर, इट्स एक्चुअली अ वर्कआउट फॉर योर ब्रेन।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब भी आप मन ही मन में कोई हिसाब किताब लगाते हैं या अपने दिमाग पर ज्यादा लॉजिकल सोचने और समस्याओं को तर्क के साथ समझने की ट्रेनिंग भी दे रहे होते हैं।
2: एंड दैट्स नॉट ऑल, मेंटल maths also improves your memory and concentration. The more you practice remembering numbers and calculating mentally, the sharper your focus becomes.
1: तो इसका एक और फायदा होता है श्रोताओं, ये आपको तेज बनाता है, चाहे आप शॉपिंग करते समय डिस्काउंट का हिसाब लगा रहे हो, या फिर रेस्टोरेंट में बिल आपस में बांट रहे हो, या फिर ये देख रहे हो कि आपको सही छुट्टे पैसे मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं। तेजी से से जो आप मन में हिसाब लगाते हैं समय भी आपका दिमाग जो है वो मेहनत करता रहता है और इसके साथ ही मेहनत दोनों की बचत होती है.
2: एंड यू नो व्हाट, गेटिंग दोज आंसर्स राइट गिव्स यू अ रियल कॉन्फिडेंस बूस्ट. सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विदाउट रीचिंग फॉर अ कैलकुलेटर मेक्स योर ट्रस्ट योर ओन थिंकिंग.
1: बिल्कुल सही. और मेंटल मैथ्स रोजमर्रा की जिंदगी को और भी आसान बनाता है. पॉकेट मनी मैनेज करने से लेकर बजट बनाने या फिर सफर का समय तय करने तक हर जगह नंबरों का इस्तेमाल किया जाता है.
2: प्लस इट इनकरेजेस एनालिटिकल थिंकिंग, अ स्किल दैट्स यूजफुल नॉट ओनली इन मैथ्स क्लास बट आल्सो इन साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस एंड इवन एवरीडे डिसीजन मेकिंग.
1: तो मेंटल मैथ्स सिर्फ नंबरों के बारे में नहीं है, यह एक तेज, फुर्तीले और ज्यादातर कॉन्फिडेंट दिमाग के बारे में भी माना जाता है.
2: राइट. दिस मैथ 2.0 डे चैलेंज योर सेल्फ टू डू अ फ्यू कैलकुलेशंस मेंटली एवरी डे एंड योर ब्रेन विल डेफिनेटली थैंक यू.
1: तो ये समझ सकते हैं श्रोताओं कि आखिरकार अब जितना ज्यादा अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे वो उतना ही ज्यादा मजबूत होगा.
2: राइट. एंड लेट्स जस्ट कंक्लूड दिस पार्ट. एंड मैथ 2.0 डे रिमाइंड्स अस दैट मैथमेटिक्स इजंट समथिंग टू फियर, इट्स समथिंग टू एक्सप्लोर. एंड विद टुडेज टेक्नोलॉजी लर्निंग मैथ्स हैज बिकम मोर विजुअल, इंटरैक्टिव एंड एंजॉयबल देन एवर बिफोर. फ्रॉम एजुकेशनल एप्स एंड AI पावर्ड learning platforms to online games and puzzles, there's a whole new world waiting to be discovered.
1: तो आज खुद को एक नई मेंटल मैथ्स ट्रिक सीखने या फिर कोई पजल सॉल्व करने की चुनौती दें या बस अपने आसपास देखें और गौर करें कि किस नंबर पे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को आकार देते हैं. याद रखें कि हर महान आविष्कार, हर वैज्ञानिक कामयाबी और हर तकनीकी इनोवेशन की शुरुआत थोड़ी बहुत गणित से ही होती है.
2: ट्रू. एंड मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट द स्टोरी बिहाइंड अ beautiful hand-woven sari or a handcrafted wooden toy? Have you, Karishma?
1: तो बिल्कुल हम सोचते हैं, लेकिन श्रोताओं से मेरा ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हर हाथ से बने प्रोडक्ट में कारीगर का हुनर, परंपरा और कड़ी मेहनत शामिल होती है. और अब टेक्नोलॉजी की वजह से ये कारीगर इंडिया हैंडमेड के जरिए देश भर के ग्राहकों तक पहुंच रहे हैं.
2: That's right. India is home to over 64 lakh handloom and handicraft artisans with women making up a major part of this workforce. Their craftsmanship is not just preserving our rich heritage, but also creating sustainable livelihoods.
1: और सबसे मजेदार बात ये है कि कपड़ा मंत्रालय के तहत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने 2023 में इंडिया हैंडमेड लॉन्च किया है और यह एक खास ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ कारीगर और बुनकर अपने उत्पाद सीधे खरीदारों को बेच सकते हैं.
2: So, no unnecessary middlemen. That means artisans get better opportunities while buyers can shop for authentic handmade products with confidence.
1: तो चाहे शानदार हैंडलूम के कपड़े हों, घर की सजावट का खूबसूरत सामान हो, पेंटिंग हो, गहने हो, फर्नीचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर GI टैग और ODOP वाले प्रोडक्ट्स, इंडिया हैंडमेड भारत की अद्भुत विविधता को एक ही जगह पर दिखाता है.
2: It's more than just shopping. It's actually about empowering artisans digitally, strengthening rural livelihoods and preserving India's priceless craft traditions.
1: और 60 लाख से ज्यादा कारीगरों को इस प्लेटफॉर्म पर लाने के विजन के साथ इंडिया हैंडमेड एक आत्मनिर्भर भारत बनने में मदद कर रहा है जहां परंपरा और टेक्नोलॉजी साथ साथ आगे बढ़े हैं.
2: Yes, so the next time you're looking for something unique, choose handmade, support an artisan and celebrate India's rich cultural heritage.
1: तो इसी के साथ श्रोताओं, चाहे वो कश्मीर का पश्मीना हो, पंजाब की फुलकारी हो, लखनऊ की चिकनकारी हो, बिहार की मधुबनी पेंटिंग हो, गुजरात की बंधनी हो, राजस्थान की ब्लू पॉटरी हो,

0: ओडिशा की पटचित्र हो, असम की मुगा सिल्क हो, कर्नाटक की मैसूर सिल्क हो, या तमिलनाडु की कांचीपुरम सिल्क हो, या यूं कहें कि केरल की कॉयर हो, हर हस्तनिर्मित रचना भारत की धड़कन बताती है.
1: And together, let's keep India's handmade legacy alive, one purchase at a time.
0: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है. संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 के पुरस्कार वितरित किए. इस प्रतियोगिता में कश्मीर विश्वविद्यालय के छात्रों ने पहला स्थान हासिल किया. इस प्रतियोगिता में देशभर के 51 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने हिस्सा लिया था. आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छात्रों ने पुरस्कार मिलने पर खुशी जाहिर की.
2: मेरा नाम चौधरी इमरान अशोक चेची है. मैं कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बारामूला में तहसील उड़ी का रहने वाला एक स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से. एंड बड़ी खुशी हुई आज ये चीज़ें देखकर. और मैं आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो मंत्री जी हैं किरण रिजिजू जी, वो जब यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर पहुँचे थे तो उसके बाद ही हमारे ये जो पार्लियामेंट के लिए प्रैक्टिस थी शुरू हुई थी. आज 1.5 साल हो गया है और वो जो मेहनत है हमारी वो रंग लाई है. तो काफ़ी खुशी महसूस होती है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आके आप परफॉर्म करें, लोग आपको देखें.
3: जी, मेरा नाम सैयद मुशीरा है एंड आई एम प्राउडली रिप्रेजेंटिंग द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर. बहुत खुशी हो रही है. ये हमारे लिए एक बहुत इमोशनल मोमेंट है कि हम 1.5 ईयर से इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं. फाइनली हमें उस चीज़ का एक फ्रूट मिला है. और मेरा जो रोल दिया गया था उसमें मैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे बात कर रही हूँ. बिकॉज हम देखते हैं कि फिजिकल हेल्थ को तो बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है, लेकिन जो स्ट्रेस एकेडमिशियंस या प्रोफेशनल लेवल पे जो लोग फेस कर पा रहे हैं, मैंने उनके बारे में बात की. तो मुझे काफी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं अपने जो व्यूज है वो ऑडियंस तक पहुंचा सकी.
0: तो मंत्रालय पिछले 29 सालों से यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के लिए यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन आयोजित कर रहा है ताकि छात्रों में संसदीय कामकाज और लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके. यूथ पार्लियामेंट स्कीम का मकसद युवा पीढ़ी में आत्म अनुशासन, अलग अलग विचारों के प्रति सहनशीलता, अपनी बात सही ढंग से रखने और लोकतांत्रिक जीवन शैली के अन्य गुणों को विकसित करना है.
1: Prime Minister Narendra Modi today concluded his state visit to Indonesia and has departed for Melbourne, Australia for the second leg of his three-country tour. A vibrant commercial and cultural bridge is permanently taking root inside Victoria's capital. In an exclusive interview with Akashvani News, the Lord Mayor of Melbourne, Nicholas Rees, unveiled a dedicated municipal master plan to establish a brand new Little India precinct in the city's iconic Docklands. We now take you to our Melbourne correspondent.
4: Melbourne is currently home to the largest and fastest growing Indian community of any city across Australia. Addressing this fast expanding demographic footprint, Lord Mayor Nicholas Rees explained that creating a dedicated space to celebrate subcontinental culture within the capital city limits is a natural evolution. Originally taken as core pledge to the local electorate, the newly approved Docklands precinct has received resounding endorsement from the community members and local business groups.
5: Well, namaste. Melbourne is the Indian capital of Australia. We have the biggest Indian community of any city in Australia, and it is also our fastest growing community. People of Indian background are succeeding in all walks of life in Melbourne, in the professions, in industry, in the entertainment industry as well. We're building a Little India precinct in Docklands. This will be a place where the Indian community can come together, a place where Melbourne can host the Indian International Film Festival of Melbourne.
4: The upcoming Little India Hub will directly build upon the large active Indian population already living and working around the waterfront district, integrating seamlessly with the broader metropolitan area. By designing a year-round landmark for authentic cuisine, traditional athletic tournaments and major arts festivals, Melbourne's local council is moving past short-term seasonal celebrations to ensure that sights, sounds and textures of the Indian heritage permanently anchor themselves inside the civic heart of Melbourne. For Akashvani News, Suhas Ram from Melbourne.
0: वहीं अपने तीन देशों के दौरे के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री की आगामी न्यूजीलैंड यात्रा के लिए जब आकाशवाणी की टीम ऑकलैंड पहुंची तो पाया कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, परंपरागत राजस्थानी परिधानों से सजी एक दुकान पिछले 26 सालों से न्यूजीलैंड के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है। और खास बात यह है कि इसका संचालन दक्षिण अफ्रीका की मूल की किम हॉलर्ट करती हैं, जो वर्षों पहले भारत के यात्रा के लिए आई थी और यहाँ इसी दौरान वहाँ की संस्कृति से इतना प्रभावित हुई कि जब वे न्यूजीलैंड में बसी तो छोटी सी दुकान से शुरू करते हुए अब उन्होंने एक बड़े स्टोर में द थर्ड आई के रूप में इसे तब्दील कर चुकी हैं।
1: And like you said, speaking to Akashwani, owner of the store, Kim Hollowerd, said that there is a growing fascination among New Zealanders with the Indian culture, yoga and Hindu gods and goddesses. She said many local visitors came to the store to explore India's spiritual traditions and often return with family and friends, reflecting their deep interest in India's rich cultural heritage.
6: In 1992, when I first traveled to India, and absolutely fell in love with the country, and I needed to know in my journey in life that I would be able to keep going back to India. My whole passion is to bring goods from the East, from India, and to show different cultures what the Indian culture is all about. I absolutely love Indian culture. Our first customers might have been young and then they've grown up and now they bring their children. Send the mala beads and also even the bindis and the incense and, you know, all the ceremonial stuff I'm able to explain to them.
1: Moving towards our next city, that is Thiruvananthapuram. Every 4 years, the FIFA World Cup brings the world's biggest football festival to millions of fans. In Keralam, the excitement goes far beyond television screens. More on this from our correspondent.
7: As the FIFA World Cup enters the quarterfinal stage, the excitement in Keralam is reaching new heights. Fans of the teams that have made it to the last 8 are celebrating with even greater enthusiasm, decorating streets, gathering for public screening and cheering every match. Meanwhile, supporters of the eliminated teams have put aside their celebrations. Though disappointed, they continue to follow the tournament with the same love for the game, already hoping their favorite teams will make a stronger comeback at the next FIFA World Cup 4 years from now. The tournament also brings good business. Shops selling jerseys, flags and football merchandise see a sharp increase in customers. Restaurants and cafes stay open late to welcome football fans. Small vendors near screening venues also enjoy extra income during the tournament. What makes Keralam special is the spirit behind the celebrations. Even though fans passionately support different teams, the rivalry is usually friendly. Many fans clubs organize blood donation camps, charity programs and community meals, showing that football can bring people together beyond the game. For a few unforgettable weeks, it feels as if the whole world has arrived in Keralam. One match, one goal and one celebration at a time. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
0: लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लद्दाख के पश्मीना सेक्टर को मजबूत करने के लिए दो अहम पहलों को मंजूरी दी है। उपराज्यपाल ने एक बड़ी पॉलिसी लाइव स्टॉक डेवलपमेंट इंसेंटिव प्रोग्राम को मंजूरी दी है। इसके तहत स्थानीय पश्मीना उत्पादन को बढ़ाने के लिए चरवाहों को कुल पश्मीना खरीद मूल्य पर 25% का अतिरिक्त प्रोत्साहन यानी कि इंसेंटिव दिया जाएगा। उपराज्यपाल ने ऑल चोंगथोंग पश्मीना ग्रोअर कॉरपोरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड के लिए 8 करोड़ रुपए के रिवॉल्विंग फंड को भी मंजूरी दी है। इस फंड का इस्तेमाल खानाबदोश चारवाहों से कच्चा पश्मीना खरीदने और उनके उत्पाद के लिए उन्हें तुरंत भुगतान करने में किया जाएगा। इन दोनों पहलों का मकसद लद्दाख के दुनिया भर में मशहूर पश्मीना उद्योग को मजबूत करना और चांगपा चरवाहा समुदायों की आजीविका को बेहतर बनाना है। और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा।
1: And in some business news, benchmark

0: बाल कलाकार के रूप में अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की और आगे चलकर हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय हास्य कलाकारों में शामिल हुए। उन्होंने लगभग 400 फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें फिल्म शोले में निभाया गया उनका सुरमा भोपाली का किरदार आज भी दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय है।
1: अरे कोशिश ये थी कोशिश, जान तोड़ कोशिश करी, मगर मैं भागने दू तब ना, एक को धीमे ने पटखनी के वो लंबू निकला भागने को, मैंने पकड़ के टांग तो खींचिए के जाते किधर वा, और कस के धो दिए लबाड़े के चलो छाने, बस फिर क्या था, पैर पकड़ लिए दोनों ने।
2: वीरू और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए?
1: हाँ हाँ,
2: मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो।
1: अरे वो बदमाश है, मगर हमारा नाम भी तुरमा भोपाली ये भाई नहीं है। अब आप समझो कि पैर पका के दोनों रो दिए हैं कि तुरमा भाई माफ कर दो, वो तो मैं माफ कर देता, मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आ कैसे गए।
3: फिर क्या हुआ?
1: अरे फिर होना क्या था, ये तो स्टिक रखता हूँ, अब जो मेरे फिन फिनाई है तो जाना सुधाई कर दी जटा।
4: And today is the birthday of Harbinder Singh, a former field hockey player for India. He started his international career in 1961 at the age of just 18 years when he was the youngest member of the team with a tour to New Zealand and Australia with Indian hockey team. During the span of 12 years from 1961 to 1972, he had represented the country in three Olympics, Tokyo 1964 where the Indian team won the gold medal, Mexico 1968, where the Indian team won the bronze medal, and was also selected as a center forward in the World 11 in Munich 1972, where the Indian team won the bronze medal. And today is also the birthday of Revathi, an Indian actress, film director, voice actress, Bharatnatyam dancer and philanthropist known for her works predominantly in Tamil and Malayalam cinema, in addition to Telugu, Hindi and Kannada films as well. Widely regarded as one of the South India's most accomplished actresses, she is known for her versatility, natural acting and ability to portray strong, relatable women. So let's hear a wonderful song from one of her films titled Love alongside Salman Khan.

0: Throughout the 1980s and 90s, Revathi continued to feature in several box office successful and critically acclaimed films in Tamil, Malayalam and Telugu cinema.
1: और इसके साथ ही आज भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में शामिल सौरभ गांगुली का जन्मदिन है. और आपको बता दें कि सौरभ गांगुली ने अपनी कप्तानी से और अपने आत्मविश्वास से भारतीय टीम में आत्मविश्वास और जीत का नया जज्बा पैदा किया. और उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 18,000 से अधिक रन बनाए और भारत को कई ऐतिहासिक जीत दिलाई. वर्ष 2003 में उनकी कप्तानी में भारतीय टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल तक पहुंची और वर्ष 2004 में उन्हें भारत सरकार में पद्मश्री से सम्मानित किया गया. तो क्रिकेट से संन्यास के बाद भी उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है.
0: And today is the birthday of Jasleen Kaur Royal, an Indian singer, songwriter and composer who sings in Punjabi, Hindi, Bengali and Gujarati. She won the Filmfare Award for Best Music Director for the film Shershah in 2021. So let's hear a beautiful song sung by her only from the same film titled Rancha.
2: Boot.

प्रिय अभिनेत्री नीतू सिंह की भी जयंती है, जन्मदिन है उनका। और नीतू सिंह का जन्म 8 जुलाई यानी कि आज ही के दिन हुआ था। और उन्होंने बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में कदम रखा और बाद में 1970 के दशक की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शामिल हुई। उनकी जोड़ी अभिनेता ऋषि कपूर के साथ काफी लोकप्रिय रही और उनकी प्रमुख फिल्मों में खेल खेल, कभी कभी,

0: तो श्रोताओं, अब समय हो चला इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का, तो अनुमति दीजिए करिश्मा राय और तन्वी खुराना को नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रमाणन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीनों देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोच्चि में शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है। इस बीच श्री नायडू ने बताया कि वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर देश का पहला 6 लेन वाला अंडरपास बनाया जा रहा है। 450 मीटर लंबे इस अंडरपास के ऊपर विमानों के संचालन के दौरान नीचे सड़क यातायात सुचारू रूप से चल सकेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री VD सतीशन से बातचीत की। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र, गुजरात और केरलम के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया है कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से अधिक लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े हैं। इनमें 7 करोड़ 81 लाख से अधिक युवा, 5 करोड़ 24 लाख महिलाएं और 17 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि ये अभियान स्वस्थ और अनुशासित युवाओं के निर्माण पर केंद्रित महत्वपूर्ण राष्ट्र निर्माण पहल है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राजस्थान के श्रीगंगानगर में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म को और मानव तस्करी मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने श्रीगंगानगर

आपको लग रहा होगा भाई क्या बात है, अंदर भी तूफान बाहर भी तूफान, बाहर भी बारिश अंदर भी बारिश। रेडियो में पहुंचो, अगर एफएम गोल्ड के साथ जोड़ो तो बारिश के गाने, और अगर रेडियो न सुन रहे हो तो बारिश की बूंदें। तो क्यों नहीं भाई, दोनों तरफ एक सा माहौल होना चाहिए ना, मज़ा आता है। ये मौसम तो कभी कभी आता है, और इस मौसम के जो मज़े हैं ना वो सिर्फ इसी मौसम में मिलते हैं। आप बाकी चाहे कहीं भी कितना ही पानी में भीग लीजिए, शॉवर के नीचे नहा लीजिए, कहीं पहाड़ों पर चले जाइए, लेकिन बारिश की ये भीनी भीनी बूंदें और उनका ये मज़ा बस इसी मौसम में है, जिस मौसम को कहते हैं बरसात का मौसम। और बरसात के इस मौसम को सिर्फ आप और हम ही पसंद नहीं करते, बल्कि फिल्मकार भी बहुत पसंद करते हैं। और इसीलिए जब से फिल्में बननी शुरू हुई हैं तब से लेकर आज तक न जाने कितने गीत कितनी बार हमारे सामने पर्दे पर भी आ चुके हैं, हमारे कानों ने भी उनके संगीत का मधुर मधुर मज़ा लिया है, और हम उन्हें सुनना भी पसंद करते हैं। तो क्यों नहीं आज हम कुछ ऐसे ही गीतों को लें जो 80 और 90 के दशक में आए, और उनके साथ कुछ बारिश की ऐसी फुहार भी अपने साथ लेकर के आए, जिन फुहारों को हम जब कभी भी इन गीतों को सुनते हैं तो हमेशा महसूस करते हैं, लेकिन अगर बारिश में सुने तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। जी हाँ, शाम के 5:12:49 हुए हैं, दिल्ली वाले तो बारिश का भरपूर मज़ा ले ही रहे हैं, और मज़ा लेने के साथ साथ बारिश के मौसम के अप्स एंड डाउन को भी झेल रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम साथ में इन गीतों को लेकर चलेंगे तो हम सभी को, आपको भी हमको भी यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। आज गाते गुनगुनाते कार्यक्रम में आपके साथ मैं रहूंगी नईम अख्तर, लेकर बारिश के कुछ गीत जो 80 और 90 के दशक की फिल्मों में हमें दिखाई और सुनाई देते हैं। और आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, और सुनते रहेंगे 6 बजे तक 100.1 MHz पर, यानी आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर। उन्नीस का मोहरा फिल्म का ये गीत जो बाद में भी बहुत हिट हुआ, और फिर उसको रिप्रेजेंट भी किया गया, फिर से रीमेक हुआ इस गाने का।

बरसात के दो गीत, दोनों ही 1994 के, दोनों ही गीतों में अक्षय कुमार, दोनों ही गीत सुपरहिट, दोनों ही गीतों में बारिश का पानी, लेकिन एक गीत में रवीना टंडन तो एक में काजोल। तो ये कुछ ऐसे गीत जिनमें बारिश दिखाई गई है, बरसात के मौसम का हम मज़ा ले सकते हैं, वही गीत रहेंगे आज के हमारे ख़ास गीत, लेकिन वो गीत जो 80 और 90 के दशक में प्रदर्शित हुए। तो दो फिल्में हमने आपको बताई, अब थोड़ा सा पीछे हटते हैं और 80 के दशक में पहुंचते हैं। और 80 के दशक में अगर हम बात कर रहे हैं तो 1982 की फिल्म नमक हलाल का वो गीत कोई नहीं भूल सकता, जो चाहे जितना भी पुराना हो गया हो या हो जाए, पर बारिश की बात आए और इस गीत का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। 1982 में नमक हलाल में ये फिल्म आई थी,

0: और इस फिल्म के बोल थे, इस गीत के बोल थे, आज रपट जाएं तो हमें ना उठाइयो। बहुत मज़ेदार और आम आदमी की ज़िंदगी के दिल के करीब ये गीत किस तरह एक ठेले पर स्मिता पाटिल और अमिताभ बच्चन बारिश का मज़ा सड़कों पर ले रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि चाहे ये गीत हो या फिल्म जगत के बाकी सभी बारिश वाले गीत, आज तक जितना मेरी रिसर्च है, आज तक कोई गीत ऐसा नहीं बना जो गीत सचमुच की बारिश में फिल्माया गया हो। जब भी किसी ऐसे गीत को फिल्माया गया है जिसमें बारिश होती हुई दिखाई गई है, उस गीत को आर्टिफिशियल रेन करके ही पिक्चराइज किया गया है। और ऐसा ही कुछ इस गीत में भी, अगर आपने ये गीत देख रखा है या फिर फिल्म देख रखी है तो आपको यकीनन गीत सुनते हुए याद आ जाएगा कि कितनी मूसलाधार बारिश इस गीत में दिखाई गई थी। लेकिन मज़े की बात यह है कि सब कुछ आर्टिफिशियल था, असली बारिश नहीं थी। आइए चलिए मज़ा लेते हैं, क्योंकि ये गीत सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि सुनने में भी बहुत मज़ेदार है।
1: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह है कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। शाम के 5:32 आपके साथ मैं हूं नई मख्तर, लेकर कुछ 80 और 90 के दशक के ऐसे गीत जिनमें आपको सुनाई देता है बारिश का मौसम, बारिश की बूंदें, बारिश की रिमझिम फुहारें, बारिश का भिगोना और बारिश की हर वो चीज़ जो आपके और हमारे दिल से कहीं ना कहीं, कहीं पास्ट से, कहीं प्रेजेंट से और कहीं हमारे आने वाले कल के ख्वाबों से जुड़ी हुई है। इन्हीं बारिश के गीतों के साथ मैं और आप एक साथ चल रहे हैं इस भीगी भीगी रुत में। हाँ, अगर मेरी इस लाइन से आपको कुछ याद आया तो बहुत अच्छा याद आया, क्यों नहीं याद आया? भाई दोस्त हैं हम, ऐसे दोस्त कि एक दूसरे की बात को जबान से निकलने से पहले ही समझ लेते हैं, या तो मैंने पूरी बात बोल दी। 1994 की फिल्म 1942 अ लव स्टोरी एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पर बनी हुई ऐसी फिल्म जो पेट्रियोटिक होने के साथ साथ, देशभक्ति की फिल्म होने के साथ साथ, हमारे दिल में अपनी जगह बनाने के साथ साथ अपने उस उत्तम संगीत के लिए भी याद की जाती है, जानी जाती है, जिस फिल्म में RD बर्मन ने आखिरी बार संगीत दिया था। RD बर्मन के संगीतबद्ध किए इस फिल्म के हर गीत को सुनना आज भी हम सब के लिए ट्रीट की तरह होता है, क्योंकि हर गीत बेहद मेलोडियस, बेहद मधुर है। और उन्हीं में से एक गीत है बारिश पर आधारित गीत, बारिश रिमझिम रिमझिम रुमझिम रुमझिम। सिर्फ बारिश की बूंदें ही नहीं, कई बार ऐसा होता है कि कहीं आप अपने

यादों के झरोकों में चले जाते हैं तो आपको याद आती है कोई ऐसी हस्ती, ऐसी दोस्त, ऐसा कोई पहचान वाला, ऐसी कोई यादगार जो आपके दिल में अनजाने ही रिमझिम रुमझिम रुमझिम का असर दे जाती है। लेकिन यहाँ कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में इस रिमझिम इस रुमझिम की बात ही कुछ अलग, बात ही कुछ निराली है। सुनते हैं और आनंद लेते हैं बारिश की बूंदों का यहाँ स्टूडियो में बैठकर, और आप अपने अपने घरों और दुकानों में बैठकर।

1993 की वो फिल्म जिसका नाम था सर पूजा भट्ट की, वो फिल्म जिसमें अतुल अग्निहोत्री थे, साथ में नसीरुद्दीन शाह का एक बहुत ही अहम किरदार था। लेकिन उस फिल्म के सारे गीतों के साथ साथ ये गीत बारिश के मौसम में बहुत अच्छा लगता है सुनने में, क्योंकि पूरा बरसात को ही डेडिकेटेड है। अब एक गीत हम आप तक वो पहुँचा रहे हैं 1983 की फिल्म का, जिसके बादलों के गरजने के साथ हमने आज के गाते गुनगुनाते कार्यक्रम की शुरुआत की थी। जी हाँ, गरजते हुए बादल, और आप समझ ही गए होंगे हम बेताब फिल्म के उस गीत की बात कर रहे हैं जिससे डेब्यू किया था सनी देओल और अमृता सिंह ने, और उसके बाद दोनों ने ही अपने अपनी फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया और अपने नाम का तहलका मचा दिया। इसका बादल बहुत बहुत अच्छा लगता है, सुनिए ध्यान से।

और एक और सॉन्ग 1992 का, 1992 की फिल्म का एक गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं. फिल्म का नाम था यलगार, और यलगार फिल्म में नगमा और संजय दत्त पर एक गीत पिक्चराइज्ड हुआ था. ये गीत भी पूरे का पूरा बरसात में था, और इस गीत में जो ओपनिंग लाइंस हैं, आखिर तुम्हें आना है ज़रा देर लगेगी, वो अगर मैं अपने आप से कनेक्ट करते हुए कहूँ तो ज़रा ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि अब आना नहीं जाने का वक्त हो रहा है, हमारे पास मुश्किल से 10 मिनट बचे हुए हैं, लेकिन आए हैं तो जाएंगे भी, और जाएंगे तभी तो अगली बार आएंगे. चलिए सुनते हैं इस गीत को, और इसमें भी भरपूर बहुत तेज़ बरसती हुई बारिश दिखाई गई, और इस बारिश का मज़ा लेते हुए भी दोनों नायक नायिका को दिखाया गया है. चलिए लेते हैं इस गीत का आनंद.

0: लगेगी।
1: हाँ भाई जरा सी देर तो लगेगी, अभी जाएंगे तो अभी फौरन तो आ नहीं सकते, लेकिन वक्त की खूबसूरत बात यह है कि इसको हम अगर एक तरफ ये कह के गाली देते हैं कि कम वक्त वक्त ही नहीं था ताकि हम कुछ और देर अपने श्रोताओं से बात कर सकते, ताकि हम कुछ और गीत उन तक पहुंचा सकते, ताकि कुछ और जानकारी उनके साथ साझा कर सकते, तो दूसरी तरफ ये वो वक्त ही तो है जिसको हम खुश होकर के कहते हैं कि काश ये वक्त और ठहर जाए। इस वक्त की ही वजह से हम दोबारा आपसे मिलने के लिए आते हैं, बातें करते हैं, गीत पहुँचाते हैं, जानकारी साझा करते हैं और आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। तो आज का वक्त तो ज़रूर कह रहा है कि नहीं जाओ, अभी नूपुर आ चुकी हैं स्टूडियो में अगले कुछ प्रोग्राम्स आप तक पहुँचाने के लिए, लेकिन अभी के लिए जाने से पहले सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हमारे पास आपको सुनाने के लिए और बहुत सारे गाने थे जो हमने 80 और 90 के दशक के निकाल के रखे थे, पर ये वक्त ही है वो कम वक्त जो सुनाने नहीं दे रहा है हमको गाने। तो जाते जाते बस 1991 की फिल्म लम्हे का एक गीत हम आपको वो सुनवा रहे हैं जिसमें उस चीज़ का जिक्र आया है जिसके बगैर बारिश मुमकिन ही नहीं। जी हाँ, बादल जिनको शुद्ध हिंदी में कहा जाता है मेघ, मेघा रे मेघा। नईम को इजाजत दीजिए और मेघों का आनंद लीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत हो जाएंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रोबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है। इससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर अब 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में यह घटकर 24% रह गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बात की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कर दी जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से ज्यादा लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। इनमें 7,81,00,000 से अधिक युवा, 5,24,00,000 महिलाएं और 17,00,000 से अधिक शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1,677 अंक गिरकर 76,000

0: 504 पर बंद हुआ। निफ्टी 517 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर दर्ज हुआ। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi is en route to Australia after concluding his three-day successful visit to Indonesia. During his three-day visit to Australia, Mr. Modi will participate in the third India-Australia annual summit with his counterpart Anthony Albanese in Melbourne. Discussion between the two leaders will cover cooperation in areas including critical minerals, the cybersecurity domain, supply chain resilience, emerging technologies and others. Prime Minister Modi will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both countries. Earlier in the day, Prime Minister Modi visited the UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, along with Indonesian President Prabowo Subianto. The two leaders toured the 9th century temple complex, with Prime Minister Modi offering prayers at the main Shiva temple. In a joint press statement at the temple premises, President Prabowo said Prambanan stands as a symbol of the centuries-old civilizational bond between India and Indonesia. He thanked India for its support towards the conservation and restoration of the temple complex. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi described the visit as a deeply spiritual and memorable experience.
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: Yesterday, the two leaders held delegation-level talks in Jakarta to strengthen cooperation in defence, security, maritime and other sectors. Prime Minister Modi also addressed the joint session of the Indonesian Parliament and the Indian community in Jakarta. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today called on Crown Prince Sheikh Sabah Al Khalid Al Sabah of Kuwait. In a social media post, the minister shared that he conveyed the greetings of Prime Minister Narendra Modi to the Crown Prince. Dr. Jaishankar appreciated the Crown Prince's commitment to take forward the bilateral cooperation of India and Kuwait. The minister also thanked him for his sharing of perspectives on developments in the Gulf. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said several parts of the country have received good rainfall in recent days, reducing the number of rainfall deficient districts from 262 to 178. The minister said this while chairing a high-level review meeting in New Delhi over the possible impact of El Nino. He said that after recording a 33% rainfall deficit in June, the monsoon situation has shown improvement in July, with the overall deficit narrowing to 24%. Union Home Minister Amit Shah today spoke to the chief ministers of several states affected by heavy rainfall, flood-like situation and landslides, and assured them of all possible assistance from the centre. Mr. Shah spoke to Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel and Kerala Chief Minister V.D. Satheesan. Meanwhile, the IMD has issued an orange alert for heavy rainfall and thunderstorms over central and eastern parts of the country. U.S. President Donald Trump has said the memorandum of understanding signed with Iran to end the conflict is over, adding that he did not want to engage with Tehran. Trump's statement came during the press conference at the NATO summit in the Turkish capital Ankara, as the U.S. and Iran traded strikes after three tankers were hit by projectiles in the Strait of Hormuz. Iran has not directly claimed responsibility. The interim ceasefire agreement signed between Washington and Tehran was intended to provide a 60-day window for negotiations on a permanent agreement, but indirect talks in Qatar ended with no sign of headway, and the U.S. military unleashed a new wave of strikes against Iran yesterday. Benchmark domestic equity indices plunged more than 2% today as renewed geopolitical tensions weighed heavily on the markets. The Sensex tumbled 1,677 points to close at 76,504. The Nifty also dipped 517 points to settle at 23,882. The 8th Khelo India Youth Games 2026 will be hosted by Telangana. Union Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia made the announcement today. The quarterfinal lineup for the FIFA World Cup has been finalized. France, Morocco, Norway, England, Spain, Belgium, Argentina, and Switzerland have booked their places in the last 8. And with that, we end this news bulletin.
3: Akashwani Samachar Seva Prabhag ki prastuti Vishleshan.
4: आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। आज के कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा और दोनों देशों के बीच हुए प्रमुख समझौतों का विश्लेषण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा पर हैं। इस यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर हुई इस राजकीय यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापक द्विपक्षीय वार्ता हुई। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि भारत और इंडोनेशिया के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के प्रमुख परिणाम क्या रहे और क्यों इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन तथा इंडो पैसिफिक रीजन में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत और इंडोनेशिया के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत बनाने पर सहमति व्यक्त की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी हुए और भविष्य के सहयोग के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गयी। आइए सुनते हैं ये विस्तृत रिपोर्ट।
5: रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों ने सहयोग को नई मजबूती दी है। समुद्री सुरक्षा से जुड़े समझौते को आगे बढ़ाने के साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली और वायु से वायु मिसाइल सहयोग पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और सूचनाओं के बेहतर आदान प्रदान के लिए गुरुग्राम स्थित सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र यानी IFC-IOR में इंडोनेशिया के एक संपर्क अधिकारी की तैनाती की घोषणा की गयी। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक सहयोग को भी इस यात्रा के दौरान नई गति मिली। शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष के उपयोग से जुड़े ढांचागत समझौते का विस्तार किया गया। दूरसंचार प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, नवाचार तथा महत्वपूर्ण खनिज और इस्पात आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में भी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडोनेशिया की क्राकाटाओ स्टील के बीच इंडोनेशिया में स्टेनलेस स्टील स्लैब निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए रणनीतिक संयुक्त उद्यम पर सहमति बनी। वहीं रेयर अर्थ मैग्नेट के विकास से जुड़े समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। भारत इंडोनेशिया को उच्च गुणवत्ता वाले DWR-162 गेहूं के 100 टन बीज उपलब्ध कराएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में चिकित्सा उत्पादों के विनियमन और स्वास्थ्य कार्यबल के सहयोग से जुड़े समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए। वहीं भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और इंडोनेशिया की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के बीच भी सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने शिक्षा, संस्कृति और डिजिटल सहयोग को भी नई प्राथमिकता दी। ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत सहयोग करेगा। 2027 में रविंद्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा के 100 वर्ष पूरे होने पर टैगोर देवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक कूटनीति वर्ष मनाने की घोषणा की गई।
4: श्रोताओं, इन समझौतों और घोषणाओं से स्पष्ट है कि भारत और इंडोनेशिया की साझेदारी रक्षा और समुद्री सुरक्षा से लेकर प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और डिजिटल अर्थव्यवस्था तक भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप आगे बढ़ रही है। इन्हीं विषयों पर आकाशवाणी ने पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल से बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
6: करीब 12 से अधिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए और जो सुरक्षा के क्षेत्र में है, विकास के क्षेत्र में है, तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में और शिक्षा, और इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे मुख्य सुरक्षा के क्षेत्र में है। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल्स ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही अच्छा कार्य किया, दुनिया ने उसको देखा, और भारत डायनेमिक्स का जो अस्त्र मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल, उसने भी ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही अच्छा काम किया, और इन दोनों का इंडोनेशिया के साथ एग्रीमेंट हुए हैं उनको सप्लाई करने के। उसके

0: अलावा सबांग पोर्ट है एक, जो हमारे अंडमान निकोबार से केवल 100 मील दूर है, उनके बीच में भी सहयोग की बात की जा रही है।
1: भारत की एक्ट ईस्ट नीति में इंडोनेशिया का विशेष स्थान है। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश होने के साथ साथ इंडोनेशिया आसियान का भी बड़ा सदस्य है। ऐसे में भारत और आसियान के बीच आर्थिक, रणनीतिक और क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने में इंडोनेशिया एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हुए हैं और व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दायरा भी लगातार बढ़ा है। आइए विस्तार से समझते हैं। भारत और इंडोनेशिया केवल पड़ोसी समुद्र देश ही नहीं है, बल्कि दोनों हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदार भी हैं। दोनों देशों के बीच लगभग 1200 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है। भारत और इंडोनेशिया का सहयोग केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा और निर्बाध व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी सोच के अनुरूप भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए सागर दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। अब इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए महासागर दृष्टिकोण के माध्यम से भारत समुद्री सुरक्षा, संपर्क, आपदा प्रबंधन, क्षमता निर्माण, ब्लू इकोनॉमी और सतत विकास के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। सबांग बंदरगाह के विकास, समुद्री संपर्क और तटरक्षक बलों के बीच बढ़ते सहयोग को इसी व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा माना जाता है। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी से आगे बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया था। इसी यात्रा के दौरान सबांग बंदरगाह के विकास और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए दोनों देशों ने संयुक्त कार्यबल बनाने का निर्णय लिया। सबांग बंदरगाह मलक्का जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार के निकट स्थित है। ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में सबांग बंदरगाह का विकास केवल भारत और इंडोनेशिया के बीच संपर्क बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। रक्षा और समुद्री सहयोग भी दोनों देशों की साझेदारी का एक मजबूत आधार है। भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा सहयोग का औपचारिक समझौता 2 दशक से अधिक समय से लागू है। दोनों देशों के बीच समन्वित समुद्री गश्त, नौसैनिक और थल सेना के संयुक्त सैन्य अभ्यास, तटरक्षक बलों के बीच सहयोग, सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग से जुड़े कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। भारत और इंडोनेशिया के संबंध अब केवल द्विपक्षीय सहयोग तक सीमित नहीं है। लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की जाए या फिर साझा समुद्री हितों की, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने की समान सोच ने दोनों देशों को क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण साझेदार बना दिया है। और यही कारण है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति और महासागर दृष्टि में इंडोनेशिया की भूमिका आने वाले वर्षों में और अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आकाशवाणी से भारत इंडोनेशिया संबंधों पर विशेष बातचीत में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा ने भी इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र का, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या के मामले में भी, अपनी आर्थिक शक्ति के मामले में भी, और उसकी जो सामरिक महत्व है उसका दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए इंडोनेशिया केंद्रीय स्थान रखता है भारत की एक्ट ईस्ट नीति में। इंडोनेशिया की जहां तक आर्थिक रूप से महत्ता है, वो ये है कि 25 बिलियन का व्यापार दोनों देशों के बीच में है, जिसे इनफॉर्मल अगर हम ट्रेड जोड़े तो वो उससे भी ज्यादा होता है। दोनों ही देशों की इंडो पैसिफिक को लेकर के जो नीति है उसमें समानताएं बहुत सारी हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर के इंडोनेशिया भारत से सीखना चाहता है। भारत की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी में इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होकर के अपना योगदान देना चाहता है। इसके पहले हमने देखा कि इंडोनेशिया और भारत दोनों ही देशों ने G20 की अध्यक्षता की और किस तरह उन्होंने तमाम जो देश है जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर के ग्लोबल साउथ के विकासशील जो देश है वो कैसे अपनी विदेश नीति और सामरिक नीति को आगे बढ़ा रहे।
1: श्रोताओं, अपनी इंडोनेशिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को भी संबोधित किया। वे इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने उन्हें इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण प्रदान किया। दोनों देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए इस चुनौती से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया की यात्रा पूरी कर 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण के लिए अब ऑस्ट्रेलिया रवाना हुए हैं। वहां वे प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तो श्रोताओं, आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने, तकनीकी सहयोग अलका सिंह।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा. आदौ मुख्याः वार्ताः. प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः इण्डोनेशिया देशस्य योग्यकर्ता नगरे युनेस्को वैश्विक सांस्कृतिक अभिलेख स्थलस्य प्रम्बानन मन्दिरस्य ऐतिहासिकं भ्रमणम् प्रतिपादितं यत् मन्दिरस्य संरक्षणे भारतस्य सहभागिता द्वयोः देशयोः सांस्कृतिक न्यासं प्रकटीकरोति. केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः जलाप्लावितेन प्रभावितानां राज्यानां मुख्यमन्त्रिभिः साकं दूरभाषेण सम्भाषणं विधाय केन्द्रसर्वकारपक्षतः सम्भाव्य सर्वविध साहाय्यस्य आश्वासनम् अयच्छत्. भारतीय ऋतुविज्ञान विभागानुसारं देशस्य मध्य पूर्वीय भागेषु अतिवृष्टेः मेघगर्जनस्य च सम्भावना वर्तते. अमेरिकी राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः उदघोषयत् यत् ईरान देशेन साकं युद्धविरामाय कृतं सन्धिज्ञापनं सम्प्रति समाप्तिपदम् एति. वैश्विक भूराजनैतिक चिन्तन प्रभावात् भारतीय शेयर विपणौ भीषणः ह्रासः. सेन्सेक्स निफ्टी सूचकांकौ सार्ध द्विशतात्मिका अपचितिः दृश्यते. अपि च फीफा विश्वकप पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायां स्विट्जरलैंड दलेन कोलंबिया दलं पराभूय प्रागुपान्त्य चरणे अर्जेंटीना दलेन सह क्रीडा सुनिश्चिता कृता. अथ वार्ताः विशदीकृत्य. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य इण्डोनेशिया देशस्य योग्यकर्ता नगरे संस्थिते युनेस्को विश्व न्यास स्थले प्रम्बानन मन्दिर परिसरे इण्डोनेशिया राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियान्तो इत्यमुना साकं भ्रमणम् अकरोत्. तत्र पारम्परिक गैमेलिन संगीत ध्वनिभिः शास्त्रीय नृत्यैश्च प्रधानमन्त्रिणः अभूतपूर्वम् अभिनन्दनं विहितम्. नवमशताब्द्याः अस्य मन्दिर परिसरस्य अवलोकनावसरे प्रधानमन्त्रिणा मुख्य शिव मन्दिरे विशेष पूजार्चना कृता. सहैव भारत इण्डोनेशिया देशयोः सहयोगेन मन्दिरस्य संरक्षण प्रयासाः दृष्टाः. एकस्मिन् संयुक्त वक्तव्ये राष्ट्रपतिना प्रबोवो इत्यमुना प्रतिपादितं यत् प्रम्बानन मन्दिरं भारत इण्डोनेशिया देशयोः शतशः वर्षाणां प्राचीन सभ्यतायाः प्रतीकभूतं वर्तते. मन्दिरस्य पुनरुद्धाराय च तेन भारताय कार्तज्ञ्यम् आविष्कृतम्. अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यदियं यात्रा अतीव आध्यात्मिकी अविस्मरणीया च अजायत. द्वादशशताब्देः अस्य न्यासस्य संरक्षणाय श्रीमोदी इण्डोनेशिया जनेभ्यः धन्यवादं विज्ञापितवान्.
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं. ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है.
0: जकार्तायां द्विपक्षीय वार्तानंतरम प्रेषिते संयुक्ते घोषणापत्रे भारत इण्डोनेशिया देशाभ्यां सर्वविध आतंकवादस्य तीव्रा निन्दा विहिता. द्वयोर्देशयोः नेतृभ्याम् अन्ताराष्ट्रिय नियमानुसारेण आतंकवादस्य सम्मुखं दृढ वैश्विक प्रयासस्य आह्वानं विहितम्. उभाभ्यां प्रमुखाभ्यां वैश्विक स्तरे प्रतिबन्धितानां आतंकवादिनां संघटनानां च विरुद्धं कठोर कार्याचरणाय बलं प्रदत्तम्. उग्रवाद विरोधी सहयोगं च दृढीकर्तुं सहमतिः प्रकटिता. स्वस्य त्रिदेशीय प्रवासस्य द्वितीय चरणे प्रधानमन्त्री अद्यैव

नमस्ते। फीफा विश्व कप फुटबॉल प्रतिस्पर्धायां फ्रांस, मोरक्को, नॉर्वे, इंग्लैंड, स्पेन, बेल्जियम, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड देशैः राउंड ऑफ 16 इत्याख्ये द्वंद्वे विजित्य अंतिमाष्टमेषु स्वस्थानं सुरक्षितम्। शुक्रवासरे तावत् प्रथमे प्रागुपान्त्यचक्रे रात्रौ सार्धैकवादने फ्रांस देशस्य स्पर्धा मोरक्को देशेन सह भविष्यति इति वार्ताः।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Gaura Dhawanlal with my co-anchor, Prachi Priya.
1: नमस्कार. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. श्रोताओं, आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर नजर डालेंगे और चर्चा भी करेंगे. आज चर्चा के लिए हमारे समक्ष हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक संपादक ए के भट्टाचार्य. महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: नमस्कार, थैंक यू.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: थैंक यू प्राची. ए के बी, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम. A quick look at the headlines first. Benchmark domestic indices shed over 2%. Sensex falls nearly 1,700 points. Nifty settles below 23,900. Asian stock market indices end on mixed note. And global crude oil prices surge.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में 2% से अधिक की गिरावट. सेंसेक्स लगभग 1700 अंक लुढ़का. निफ्टी 23,900 के नीचे बंद हुआ. एशियाई शेयर बाजार में मिलाजुला रुझान रहा और कच्चे तेल के वैश्विक मूल्यों में आया भारी उछाल.

0: Listeners, before we dive deeper into the program, we'd like to share with you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any final financial decision.
1: और श्रोताओं, आइए अब जान लेते हैं कि आज दिन के अंतराल में शेयर बाजार की चाल में कितनी लचक रही। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में आज 2% से अधिक की गिरावट आई। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, कमजोर वैश्विक संकेतों और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण बाजार में मंदी देखी गई। सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 इंडेक्स 1.5% से अधिक लुढ़का, जबकि स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 2% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले सत्र के दूसरे भाग में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ये कहने के बाद कि ईरान के साथ टकराव खत्म करने के लिए किया गया समझौता समाप्त हो चुका है और वे तेहरान के साथ कोई बातचीत नहीं करना चाहते, बाजार में मंदी आई।
0: Benchmark domestic equity indices witnessed a sharp sell-off today, with both the Sensex and the Nifty plunging more than 2%. A spike in crude oil prices, weak global cues, and renewed geopolitical tensions weighed heavily on the markets. The Sensex tumbled 1,677 points to close at 76,504. The Nifty also dipped 517 points to settle at 23,882. In the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index fell over 1.5%, while the small-cap 100 index lost more than 2.2%. Earlier, markets opened on a negative note amid geopolitical concerns. Sentiment weakened further during the latter half of the session after US President Donald Trump said that the memorandum of understanding signed with Iran to end the

0: conflict was over, adding that he did not want to engage with Tehran.
1: सेंसेक्स में शामिल सभी 30 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में इंडिगो के शेयर 5%, मारुति के 4% से अधिक और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर लगभग 3.5% लुढ़के.
0: All 25 sectoral indices on the BSE ended in negative zone. Among the key laggards, services shed 3.2%, PSU banks as well as mid-small private banks, quality tilt, fell more than 2.7%, and FMCG lost over 2.5%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 3,211 declined, 1,070 companies advanced, and 173 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101.14 पर कारोबार कर रहा था. भट्टाचार्य जी, आज हमने देखा बाजार में तकरीब 2% से अधिक का जो एक स्लिप आया है, ये क्यों आया है ये तो हम आपसे जानेंगे ही, लेकिन ये आगे आने वाले समय को स्टॉक मार्केट के लिए क्या क्या इंगित करता है?
2: देखिए, जो आज जो हुआ है, जैसे आपने भी और गौरव जी ने भी जो बताया हमें, उसमें ये साफ लगता है कि ये जो जियोपॉलिटिकल जो कंसर्न्स जो हैं, चिंताएं जो हैं, वो जरा और भी गंभीर हो चुकी हैं, क्योंकि ट्रंप साहब के ऐलान से विश्व को ये लगता है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो सीज़ फायर की बहुत पहली एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक कड़ी थी, वो जरा थोड़ी बहुत वीक हो गई है, और मार्केट के सभी जो सिग्नल्स हैं वो अब नेगेटिव में जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को डर ये है कि शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो थोड़ी बहुत जो जो साधारण अवस्था जो आ गई थी, वो फिर वही पुरानी स्थिति में पहुंच जा सकती है, जो तेल के मार्केट लिए ठीक नहीं है. और जो देश पर्टिकुलरली जो एशिया में जो देश हैं जो तेल के आयात के ऊपर काफ़ी निर्भरशील हैं, उनके लिए ये खबर ठीक नहीं है. उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, उनकी जो उपलब्धि की जो एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें बाधा पहुँचेगी. तो हर तरह से देखें तो ये स्टॉक मार्केट ना कि ये शुरुआती तो विश्व की स्टॉक मार्केट से हुई थी, और पर इसका जो प्रभाव जो है वो भारतीय स्टॉक मार्केट में भी हुई है, रुपए में हुई है, क्योंकि रुपए में जो थोड़ी बहुत अप्रिशिएट कर रहा था पिछले कई दिनों में, वो आज लगा कि काफ़ी डिप्रिशिएट कर गया, क्योंकि भारत की जो अगर तेल का दाम अगर फिर से बढ़ना शुरू हो जाए तो हमारी जो जो डॉलर की डिमांड होगी वो सप्लाई से थोड़ा बढ़ जाएगी. तो उसी सब चीज़ को देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये वेस्ट एशिया का जो जो वातावरण जो है उसके ऊपर स्टॉक मार्केट की जो गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा निर्भरशील है. उसी लिए जो जो डोमेस्टिक मार्केट की जो स्ट्रेंथ और जो वीकनेस जो है वो आज की तारीख में इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट निर्भरशील हो चुकी है. तब भी अगर आप ये देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में अगर आप अगर झुक के देखें, अगर अंदर जाकर देखें, तो आपको ये लगेगा कि जो सबसे ज़्यादा जो जो समस्याएं जो आ रही हैं वो जो तेल के दामों के ऊपर ज़्यादा सेंसिटिव हैं, निर्भरशील हैं, उनकी ज़्यादा, जैसे कि इंडिगो
1: जी.
2: जैसे आपने कहा इंडिगो की शेयर मार्केट के काफ़ी नीचे आ गया, क्योंकि वो तेल इस्तेमाल करती है, ETF का दाम अचानक बढ़ जाएंगी तो उसकी सारी जो प्रॉफिटेबिलिटी में ख़त्म आएगी. उसी तरह जो मिड कैप स्टॉक्स जो हैं जो पिछले एक हफ्ते में बहुत अच्छी रिकवरी उनकी हुई है, आज उनकी पिटाई हुई है. स्मॉल कैप में उतनी ज़्यादा नहीं,
1: लार्ज कैप में,
2: लार्ज कैप में हुई है, पर लार्ज कैप में जो उनको जो संभालने की स्थिति, संभालने की जो एक एबिलिटी है वो मिड कैप में उतना नहीं है,
1: उतना नहीं है.
2: तो इसीलिए मिड कैप की जो जो रिकवरी हुई थी वो काफ़ी न्यूट्रलाइज आज के स्टॉक मार्केट में ये हमें दिखने को मिल रहा है. और मुझे जो लगता है कि अगले सप्ताह

0: प्रतिशत बढ़ा। यूरोप के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट, यूरोप के प्रमुख शेयर सूचकांक भी गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आए। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक फ्रांस का कैक और जर्मनी का डैक्स 1.5% से अधिक फिसले। वहीं लंदन का फुटसी 1% से अधिक की गिरावट के साथ कारोबार करता नजर आया।
1: A quick look at the US markets. Wall Street ended on a negative note yesterday. Among major indices, the Nasdaq Composite fell 1.2%, the S&P 500 declined nearly 0.5%, and the Dow Jones Industrial Average slipped 0.25%.
0: भट्टाचार्य जी, हमने पिछले ही महीने देखा कि कॉस्पी अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा था, और अभी हम देख रहे हैं कि कॉस्पी में एकदम मेजर करेक्शन, 20-22% तक उसमें गिरावट देखने को मिली है। ये वैश्विक स्तर पर ये किस तरफ का इशारा है, ये क्या हमें दर्शाता है?
2: जो मैंने पहले जो कहा था
0: जी,
2: कि जो मार्केट्स तेल के आयात के ऊपर अधिक निर्भरशील हैं, उनके लिए ये दौर काफ़ी पेनफुल रहेगा। और यही आज का मार्केट जो कॉस्पी का जो मूवमेंट करीबन 5.5% का गिरावट दर्शाता है। कोरिया कहिए, जापान कहिए, इवन चाइना जो वेस्ट एशिया के तेल के ऊपर काफ़ी निर्भरशील है
0: जी।
2: उनके लिए जो वेस्ट एशिया में जो हुआ, जो ट्रंप साहब का जैसे ऐलान जो हुआ, उससे मैं समझता हूँ कि इन देशों के लिए और भारत के लिए भी एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है। हालांकि हमारे देश में हमने जो तेल को जो हमने मैनेजमेंट करने की जो हमारी पॉलिसी है, हम ज़्यादा क्विक रिएक्शन न देकर हमने ओवरऑल मैनेजमेंट का एक सिलसिला रखा है। और ईरान के साथ भी बात कर हमारी काफ़ी जहाजें वहाँ से आ गई हैं। पर इन देशों में जो इनका इम्पैक्ट रिटेल मार्केट में या प्राइस लेवल में हुआ है, अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो उनमें ज़्यादा हुआ है। और इसीलिए स्टॉक मार्केट को भी यही चीज़ दर्शा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो जो जो एक गार्डरेल कह सकते हैं हम आप, जो सरकार ने तेल कंपनियों को और जो उपभोक्ताओं को दिया है, वो उन मार्केट में ये अवेलेबल उपलब्ध नहीं है। इसीलिए उनके स्टॉक मार्केट में जो हलचल मस्ती है वो ज़्यादा मस्ती है, और हमारे स्टॉक मार्केट में रिलेटिवली कम होती है, क्योंकि इम्पैक्ट थोड़ा सीमित रहता है।
1: So even for the US market, the Fed results, what the Fed is going to say is going to play an important role.
2: Oh yes, absolutely. I think you were absolutely right. It will have an impact. The job market is under stress, not just for the oil but also for the AI. You know what has really happened is that in this West Asian war debate and discussion, we have almost forgotten how the world economy is going to be or has been already been impacted by the advent of artificial intelligence. So therefore the AI is going to have a major impact, and the stock market is yet to fully absorb the impact of the advent of AI in various areas. So whether it is artificial intelligence or whether it is a super intelligence or is a general intelligence, so in every way we are yet to see the full impact of the changes in the global economic order.
1: Right, so global economic order, I think it's layered. Geopolitics,
2: absolutely.
1: Every country's domestic situation, yes. Interdependence.
2: Yeah.
1: It's really layered, and we can't see a direct it because of this is happening. There
2: absolutely.
1: Are many factors.
2: Absolutely.
1: Right. We move on to our next story. Listeners, outstanding credit extended by non-banking financial companies, NBFCs, against gold jewelry surged nearly 70% on an annual basis in May this year, marking the fastest growth among all lending segments. Outstanding loans against gold jewelry stood at nearly 3.3 lakh crore rupees at the end of May, up from over 1.94 lakh crore rupees a year earlier. This is as per the latest data on sectoral deployment of outstanding credit by NBFCs, including housing finance companies, released by the Reserve Bank of India for the first time. Retail loans contributed to the most to overall credit growth by NBFCs with 19.5% year-on-year growth in May. With regard to other sectors, credit growth in agriculture and

0: Allied activities recorded robust growth of around 18% on an annual basis in May, against 5% in the same period last year. However, credit growth in industry and services sectors slowed. So new data indicative of what? Whether it's the gold borrowings against gold or the credit...
1: It's not good news.
0: Not good news.
1: because what you're seeing is that NBFC sector, which is a very vibrant sector in the Indian economy, is doing very well with regard to retail loans. But with regard to loans to the more productive sectors, sectors like industry and services sector, that is not doing too well. So I think it's a data point that one needs to pause and understand. It is also connected with the point that you mentioned about gold. People are using their gold reserves to borrow more. Now, NBFCs will have the collateral as a gold. And so it is, while it is sustaining the consumption boom in the economy, but it is not necessarily contributing to productive investment in the economy. Money is going to boost consumption, and probably it will also contribute to greater household debt level.
0: Household strain level.
1: Yeah. So household debt is already around 47% of GDP, which it has never been. While we are way below what happens in China or in other countries, but we are relatively a poor country. So where the household debt is around 47% of GDP, where the retail loans are growing at a rate faster than loans to services and industry. But the good news is that loans to agriculture and allied activities, which is the dairy sector, they are doing well. So which means perhaps the rural economy is getting the benefit of a good pace of activity in the NBFC loan giving sector. So it's not good news, but there are rays of hope. For example, if the dairy sector can really convert these loans into more productive jobs, productive gains, if the consumption boom remains controlled and sustains investment in the other parts of the economy, there could be a possibility that we may come out of this phase. But this is a phase where we need to closely watch it and before we go to the next stage.
2: Right. श्रोताओं, अन्य खबरों में, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अलनीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने बताया कि अलनीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 दिनों में हुई वर्षा के कारण कई राज्यों में कम वर्षा वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 हो गई है। महोदय, हम काफी वक्त से खबरें देख रहे थे, सुर्खियों में देख रहे थे कि अलनीनो का खतरा जो है हमारे कृषि प्रधान देश पर एक मंडरा रहा था, लेकिन अब शायद स्थिति सुधरती हुई नजर आ रही है।
1: जो ओवरऑल डेफिसिट जो है
2: जी,
1: वो कम हुई है, पर एल नीनो का जो प्रकोप या प्रभाव जो हमें जो डर है, होता है, वो सिर्फ ओवरऑल डेफिसिट के ऊपर नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के ऊपर होता है। और अगर मान लीजिए एल नीनो का प्रकोप अगस्त सितंबर के बाद आता है, मैं समझता हूँ कि उतनी चिंताजनक बात नहीं होगी जितनी चिंताजनक बात होगी अगर उसका प्रकोप अब होता है।
2: हाँ।
1: जब हमारी रेन की बहुत जरूरी
2: सख्त जरूरत है अभी।
1: सो ओवरऑल जो 43% का जो शॉर्टफॉल था वो कम हुआ है, 10% की घटी है, पर अभी भी गैप है. और ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे देश में वो कैसा होता है.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में यह घटकर 24% रह गई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफ खातों में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि नियामक प्रोत्साहनों के माध्यम से गिफ्ट सिटी एक वैश्विक विमान लीजिंग और वित्त पोषण केंद्र के रूप में उभर रही है। श्री नायडू ने कहा कि 2026 के बजट में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाइयों के लिए कर छूट की अवधि बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। यह मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन के हेराफेरी से जुड़ा हुआ है। जांच में पता चला कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए निजी कंपनी और उसकी संबंध इकाइयों में स्थानांतरित किए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 27 मार्च की मूल्यांकन योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है। यह योजना खाड़ी देशों के उन नियमित विद्यार्थियों के लिए थी जिनकी 12वीं की बोर्ड परीक्षा ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण रद्द हो गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार और CBSE से जवाब मांगा है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में आज शाम एक इमारत ढह गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार मलबे में 4 से 5 लोगों के फंसे होने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीमें भी राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत और इंडोनेशिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन देशों की यात्रा का पहला चरण इंडोनेशिया की यात्रा के साथ आज समाप्त हुआ है और भारत और इंडोनेशिया के बीच जो कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौते हुए हैं जो कई क्षेत्रों में हुए हैं, चाहे वो रक्षा हो, उद्योग हो, तकनीक हो, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर संस्कृति, इससे ये स्पष्ट होता है कि जिस तरह से महत्वपूर्ण समझौते दोनों देशों के बीच हुए हैं वो भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को और प्रगाढ़ करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो आज हम प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा के प्रमुख निष्कर्षों पर कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी कार्यक्रम में जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: कमल जी, आपका इस महत्वपूर्ण चर्चा हेतु मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार और सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: सबसे पहला मेरा मूल जो सवाल है वो यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बीच जो द्विपक्षीय वार्ताएं हुई वो कैसे भारत के और इंडोनेशिया के संबंधों को आगे आने वाले समय में और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है और कैसे दोनों देशों के बीच बढ़ता सहयोग, जो खासतौर पर जो इंडो पैसिफिक एक क्षेत्र है उसके लिहाज से भी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है।
2: यदि हम इंडोनेशिया और भारत को देखें तो बहुत लंबे सभ्यतागत रिश्ते दोनों देशों के बीच में रहे हैं। हिंदू और बौद्ध धर्म की संस्कृति का ध्वजावाहक इंडोनेशिया भी है और 2018 तक 1949 से जो राजनयिक कूटनीतिक संबंध दोनों देशों के बीच स्थापित हुए थे बहुत अच्छे चले। 2018 में जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया की यात्रा की तो इन संबंधों को एलिवेट करते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की हमने शुरुआत की और इसके बाद से हमने देखा कि कैसे जो एक क्रिटिकल महत्व के सामरिक क्षेत्र है इसमें न सिर्फ दोनों देशों के अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए बल्कि यदि हम हिंद प्रशांत के क्षेत्र को देख लें तो उसको भी ध्यान में रखते हुए कैसे रक्षा सहयोग के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, कैपेसिटी बिल्डिंग के क्षेत्र में, विज्ञान और तकनीक सहयोग के क्षेत्र में दोनों देश लगातार आगे बढ़े हैं। और इसमें अब ये देखना सुखद है कि इस बार की यात्रा के दौरान जो महत्वपूर्ण MOU साइन हुए हैं जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी डील तो ब्रह्मोस मिसाइल प्लस डील को माना जा रहा है जिसमें इंडोनेशिया हमारी होम ग्रोन ब्रह्मोस मिसाइल्स को न सिर्फ लेगा बल्कि फिर आगे को प्रोडक्शन को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हमारा भागीदार होगा। हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI को लेकर के, सामुदायिक सुरक्षा को लेकर के, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के और हमारे इलेक्टोरल मैनेजमेंट की जो सराहना की है इंडोनेशिया ने तो EVM मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के भी एक बड़ा MOU दोनों देशों के बीच में साइन हुआ है। और ये न सिर्फ दोनों देशों के बीच के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए और विकास को विस्तार देने के लिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्टेबल बनाए रखने के लिए, प्रॉस्परस और इन्फ्लुएंस फ्री बनाए रखने के लिए ये समझौते आगे चल करके बहुत कारगर साबित हो।
1: प्रोफेसर अंशु जोशी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि भारत और इंडोनेशिया का जो एक अगर रक्षा सहयोग की हम बात करें तो दशकों पुराना एक साझेदारी जरूर रही है लेकिन पहले ये खाली एक संयुक्त, एक तरह से ज्वाइंट वेंचर जो होते थे, एक संयुक्त जिसमें कि हम कह सकते हैं एक मैरिटाइम पेट्रोलिंग तक ये सीमित था लेकिन अब इसे उद्योग तक बढ़ाने की एक पूरी पहल हुई है। तो कैसे जो समझौते हुए हैं ये भारत और इंडोनेशिया के जो रक्षा सहयोग है, खासतौर पर जो उद्योग है और आदान प्रदान है, उसमें और ज्यादा इससे बढ़ोतरी होगी।
2: कमल जी, पहले तो हम ये समझे कि भारत की जो छवि थी वो आज से 11 वर्षों पहले तक रक्षा के क्षेत्र में एक इम्पोर्टर देश की छवि थी। हम जो अपने रक्षा के इक्विपमेंट थे वो दूसरे देशों से इम्पोर्ट करते थे लेकिन अब 11 वर्षों में ये देखना बहुत सुखद है कि रक्षा के क्षेत्र में हमारी छवि एक एक्सपोर्टर देश की छवि बनी है और हमने अपने यहाँ पर इतने बढ़िया रक्षा प्रणालियों को, अलग अलग अस्त्रों शस्त्रों को विकसित किया है। ऑपरेशन सिंदूर में उसकी चमक और धमक पूरी दुनिया ने देखी। तो अब इंडोनेशिया के साथ भी जब हम रक्षा सहयोग की बात करते हैं तो बात द्विपक्षीय या आसियान जैसे बहुपक्षीय मंचों पर एक जॉइंट मिलिट्रल एक्सरसाइजेस की और सामुदायिक सुरक्षा तक सीमित नहीं रह जाती। एक तो जो ब्रह्मोस मिसाइल्स को लेकर के बड़ी डील हुई है उसको लेकर के भी आगे ये बिंदु देखने को मिलते हैं कि इंडोनेशिया आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का जो ये पूरा हमारा आह्वान है, मिशन है, इसके तहत जो हम अपने रक्षा क्षेत्र में इक्विपमेंट डेवलप कर रहे हैं उसमें इंडोनेशिया हमारा बड़ा साझेदार बनेगा। इसके साथ आपसी निवेश की भी बात है और जो ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है इसको सरल बनाते हुए इसमें जो दूसरे औद्योगिक जगत से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको शामिल करने की बात है। तो हम दोनों देशों की ओर देखें तो बड़ी आबादी वाले देश हैं भारत और इंडोनेशिया, तो इससे फिर जो है प्रोफेशनल मोबिलिटी को और एम्प्लॉयमेंट को भी हम मजबूत होते हुए देख सकते हैं। तो ये रक्षा क्षेत्र में जिस तरह से अलग अलग प्रकार के तकनीकी साझा करने को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, इक्विपमेंट के आदान प्रदान को लेकर के, और इसके अलावा अलग अलग जो हमारे मिनिस्ट्रियल लेवल के डायलॉग शुरू हुए हैं दोनों देशों के बीच में, और जो कार्यक्रम होंगे ये भी हम जोड़ करके देख सकते हैं। जी कम,
1: तो आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाले पक्ष हैं वो कितना महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे आने वाले समय में दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में?
2: कमल जी, ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश के लिए आज किस तारीख में यदि उसकी शक्ति के संचालक तत्वों को हम देखें तो उसमें उसकी आर्थिक शक्ति का एक बड़ा महत्व होता है। तो जब हम भारत और इंडोनेशिया के द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को व्यापार की ओर दृष्टि डालें तो विगत कुछ वर्षों में बहुत मजबूत हुए हैं ये संबंध। आज 38 बिलियन यूएसडी का लगभग व्यापार है दोनों देशों के बीच में। भारत बड़ी मात्रा में क्रूड पाम ऑयल को इंडोनेशिया से मंगाता है, वहीं हम इंडोनेशिया की ओर देखें तो फार्मास्यूटिकल से लेकर के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स तक जो है हम यहाँ से अपने यहाँ से इंडोनेशिया को भेज रहे हैं। लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में तो विशेषकर जैसे स्टील के क्षेत्र में ये देखना सुखद रहा कि हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल और इंडोनेशिया की जो क्रकाताऊ स्टील है उन्होंने स्टेनलेस स्टील के स्लैब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए और किस प्रकार से रेयर अर्थ मैग्नेट्स को साथ में को डिवेलप कर सकते हैं इसको लेकर के एक बड़ा समझौता किया है। इसके अलावा आप देखें कि इसमें अलग अलग प्रकार के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डायलॉग्स को भी शुरू किया गया है। और इसके साथ साथ हम यदि देखें तो व्यापार के क्षेत्र में कैसे क्रिटिकल मिनरल्स पर बढ़ावा देते हुए फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में हम कैसे उत्पादों के आदान प्रदान को बढ़ा सकते हैं इसको लेकर के भी समझौते देखने को मिले हैं। तो व्यापार की दृष्टि से निश्चित तौर पर रिश्ते नई उड़ान ले रहे हैं। और द्विपक्षीय के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आसियान का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडोनेशिया हमारे साथ। तो फिर जब ऐसे देश हमारे साथ द्विपक्षीय स्तर पर मजबूती से खड़े रहते हैं तो फिर आर्थिक दृष्टि से चाहे हम ऐसे व्यापार समझौतों की बात करें या कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने की बात करें, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें, तो वहां फिर आसियान जैसे मंचों पर भी भारत की स्थिति मजबूत होती है।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक परमानंद मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के बीच हुए सहयोग के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: मुझे पूरा विश्वास है मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा।
1: तो जो मजबूत ऐतिहासिक संबंध है उनको नई दिशा देने में किस तरह से ये सहयोग भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा, और आज जो प्रधानमंत्री की यात्रा रही परमानंद मंदिर की उस पर भी आप क्या कहेंगी?
2: कमल जी, ये आपने चर्चा में बहुत ही सुंदर आयाम जोड़ा है। और यदि हम भारत के इंडोनेशिया के साथ सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो मैंने आपसे चर्चा की शुरुआत में ही कहा था कि हमारे सभ्यतागत रिश्ते रहे हैं, हिंदू और बौद्ध धर्म की संस्कृति को देखें तो वो हमें इंडोनेशिया में भरपूर दिखाई पड़ती है। उसका ध्वजावाहक के अलग अलग प्रकार के मंदिर हैं, जिस प्रकार से संस्कृत का यहाँ सम्मान है, भारत की अलग अलग भाषाओं का सम्मान है, और इसके साथ हम रामायण और महाभारत की धरोहर को जिस तरह से इंडोनेशिया द्वारा संभाले जाते देखते हैं वो अपने आप में अनोखी है। मुद्रा पर यहाँ की गरुड़ अंकित है, गणेश की पूजा होती है। तो ऐसे में जो ये बहुत महत्वपूर्ण शिव मंदिर है, पुराना शिव मंदिर है, यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री का जाना और भारत द्वारा इस बात का बीड़ा उठाया गया है कि इस पूरा प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार, इसकी तकनीकी सहायता, आर्थिक सहायता भारत करेगा, तो किस प्रकार से नवाचार के माध्यम से नई तकनीकों को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखते हुए भारत आगे बढ़ रहा है, ये एक इसी बात का द्योतक है। तो आज जो प्रधानमंत्री इस प्रसिद्ध शिव मंदिर गए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ वहां पर जीर्णोद्धार के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया, तो ये उसी बात को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है, उसका ये एक प्रतीक है। कमल,
1: दोनों देशों ने आतंकवाद को लेकर साझा रुख स्पष्ट किया है, तो क्या कहेंगे इस पर?
2: बिल्कुल कमल जी, भारत का अलग अलग मंचों से ये वर्षों से प्रयास है कि आतंकवाद को पूरा विश्व मिलकर एक मुंह तोड़ जवाब दे। और न सिर्फ भारत, आज विश्व के कई देश, सशक्त देश जैसे कि अमेरिका, आतंकवाद का शिकार बने हुए हैं। और ऐसे में जब भारत, हमारे प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं तो उसमें इंडोनेशिया जैसे देश बहुत सशक्त साझेदार के रूप में खड़े दिखाई पड़ते हैं, द्विपक्षीय स्तर पर भी और बहुपक्षीय स्तर पर हम देखें तो ब्रिक्स के मंच पर, G20 के मंच पर, आसियान के मंच पर। और ये भारत की महासागर डॉक्ट्रिन में जो ये म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांस ग्रोथ, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स

0: बात हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से की थी, इसके पहले सागर की बात की थी, तो इसमें ये सिर्फ हिंद प्रशांत क्षेत्र या हिंद महासागर को सुरक्षित रखने की बात नहीं है, प्रॉस्परस बनाए रखने की ही बात नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं आतंकवाद निरोधी हम कैसे अलग अलग तकनीकें हैं या फ्रेमवर्क हैं उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं, इसकी भी बात है। और कल हमारे प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में घिरे संकट का समाधान भी सुझाया। उन्होंने बताया कि जैसे भारत टू स्टेट सोल्यूशन की बात करता है, इसको पूरे विश्व को ध्यान से समझना चाहिए और पश्चिम एशिया के देशों को इसे अपनाना चाहिए। इसके साथ साथ जब आतंकवाद निरोधी जो उपाय हैं उनको जब उन्होंने अपनाने की बात की, तो यहाँ पर तकनीकी कहीं ना कहीं सहयोग के स्तर पर, नियमन के सहयोग के स्तर पर, और फिर एक जनता की दृष्टि से भी देखिए जिस प्रकार का लोगों का यहाँ से साथ हमको मिलता है, इस बात को मिलता है, इस लड़ाई को मिलता है, तो भरपूर सहयोग इंडोनेशिया का जो है भारत को मिलते हुए दिखाई पड़ता है। भारत के साथ साथ इंडोनेशिया भी इस बात का पक्षधर है कि विश्व में शांति होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, और इसी की बात हमारे प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया की संसद में भी।
1: इंडोनेशिया में बसे भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: Our language, I would say, Falizon, Minister of Culture, our language was 50% from Sanskrit. Many of our names are Sanskrit names, and therefore there is this closeness, and we welcome more close cooperation.
1: आखिर में प्रश्न मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जैसे दोनों देशों के बीच 1200 किलोमीटर की एक लंबी समुद्री जो सीमा है वो साझा होती है, तो किस तरह से महासागर विजन और इस तरह के जो समुद्री सहयोग हैं उसमें दोनों देशों की एक मजबूत साझेदारी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है आने वाले समय में।
0: इंडोनेशिया की और दृष्टि करें तो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी
1: जी
0: एक महत्वपूर्ण या सहयोगी देश है, और महासागर विजन की दृष्टि से भी देखें तो इंडोनेशिया की जब हम लोकेशन को देखते हैं, उसके महत्व को देखते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। इसके पहले हमारे प्रधानमंत्री सेशल्स की यात्रा पर थे, और ये तमाम हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र के जितने ये देश हैं इनकी ओर भारत का ध्यान है, ताकि चीन ने जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी अपनाई, एक नेगेटिव कूटनीति भारत को घेरने के लिए या इन सामुद्रिक क्षेत्रों में अपना असर्शन दिखाने के लिए, उसका कहीं ना कहीं मुकाबला किया जा सके और इन सामुद्रिक क्षेत्रों को किसी भी देश के प्रभुत्व से मुक्त रखा जा सके। इंडोनेशिया इसमें भारत का बिल्कुल साझेदार सहयोगी है इसके रूप में नजर आता है, और इस नीति के तहत कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के, डिजिटल इंटीग्रेशन को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेकर के और रक्षा सहयोग को लेकर के बातें भारत करता है, और इंडोनेशिया, सेशल्स, मॉरिशस ऐसे देशों को बड़ा अपना लॉजिस्टिक्स सपोर्ट भी प्रदान करता है। तो ये देखना सुखद रहा कि इंडोनेशिया का जो महत्वपूर्ण सबांग बंदरगाह है जो अंडमान निकोबार से बहुत करीब है, और यहाँ भारत जो है इस पोर्ट के विकास के लिए अपना आर्थिक और तकनीकी सहयोग देगा, इससे लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज में भी सहायता मिलेगी, और भारत को जो जियो स्ट्रेटेजिकली ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जो इंडोनेशिया से लगी है, इसका अर्ली और टाइमली एक्सेस जो है वो भारत को मिलेगा। वहीं इंडोनेशिया को भारत के सबांग एयरपोर्ट को विकसित करने से व्यापारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से बड़ा लाभ मिलेगा। तो भारत की जो महासागर नीति है वो ये तमाम लाइक माइंडेड देशों को साथ में लेकर इन समुद्री क्षेत्रों को सुरक्षित रखते हुए, यहाँ की संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए, व्यापार बढ़ाते हुए आगे बढ़ने की है। तो इसमें इंडोनेशिया के साथ एक भविष्य की जो रूपरेखा है वो भारत ने तय कर ली है, और अब दोनों देश आगे बढ़ने को तैयार हैं।
1: जी निश्चित तौर पर, और जो भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र है और इसके अलावा जो एक वैश्विक साझा विकास है, इस दिशा में दोनों देशों की साझेदारी निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है, और इन समझौतों से इस साझेदारी में और मजबूती मिलेगी। आगे आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा है उस पर भी हमारी नजर रहेगी और उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। प्रोफेसर अंशु जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में जुड़ी और भारत इंडोनेशिया के द्विपक्षीय संबंधों पर आपने विस्तार से अपना विश्लेषण हमारे श्रोताओं के समक्ष रखा, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत आभार कमल जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत और इंडोनेशिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: सुर्खियों में

स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जनाब, दिन भर के कामकाज से थोड़ी सी लीजिए ब्रेक, क्योंकि अब वक्त हो गया है असली वाले मूड रिफ्रेश का। आसमान में शाम गहराती जा रही है, हवा में आज थोड़ी ठंडक है और दिल में थोड़ी सी मस्ती। मैं हूं आपकी दोस्त नूपुर और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो सांझ ढली। वैसे आजकल एक ट्रेंड जोरों पर है, ओल्ड इज गोल्ड बट 70s इज बोल्ड। आज की जनरेशन भी 70 के दशक के गानों पर रील्स बनाकर धूम मचा रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज की इस शाम को थोड़ा रोमानी, थोड़ा चुलबुला, पूरी तरह से ट्रेंडिंग बनाया जाए। तो शुरुआत करते हैं 1973 के फिल्म यादों की बारात के एक ऐसे गाने से जो आज भी हर कपल की प्लेलिस्ट में टॉप पर रहता है। क्या आप जानते हैं कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त आशा भोसले जी ने आर डी बर्मन यानी हमारे पंचमदा से कहा कि गाना थोड़ा स्लो रखते हैं, लेकिन पंचमदा ने कहा नहीं नहीं, ये आज की यानी 70s की मॉडर्न लड़की का गाना है, इसमें मस्ती तो होनी ही चाहिए। और देखिए आज 2026 में भी एक गाना ट्रेंड कर रहा है, तो आइए सुनते हैं आशा भोसले जी और किशोर दा की आवाज में फिल्म यादों की बारात से ये गाना, ओ मेरी सोनी मेरी तमन्ना।

वैसे आजकल ना सोशल मीडिया पर एक और ट्रेंड चल रहा है वो इम्प्रेस करने का, लेकिन जनाब इस मामले में 70s के दशक के हमारे जो हीरोज थे वो नेक्स्ट लेवल थे। बात करती हूँ 1972 की फिल्म अपना देश की। इस फिल्म के कई दिलचस्प किस्से हैं। ये फिल्म मुंबई के गोरेगांव स्थित प्रसिद्ध सम्राट टॉकीज के उद्घाटन पर प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म थी और इसका एक बहुत ही पॉपुलर गाना दुनिया में लोगों को, इस गाने की बात करती हूँ। इसमें जो कोरस था बच्चों का बाल गायकों में, जाने माने संगीतकार जतिन ललित की बहनें इसमें शामिल थीं। और हुआ ये कि निर्माता पहले अभिनेता राजेंद्र कुमार के पास फिल्म का प्रस्ताव लेकर गए थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी फीस कम करने से मना कर दिया तो फिर निर्माताओं को किसी और के बारे में सोचना पड़ा और अचानक उनकी मुलाकात हो गई राजेश खन्ना जी से और बस तुरंत फिल्म साइन हो गई। और ये एक जो गीत है इस फिल्म का, ये एक जापानी गायिका आयुमी इशिदा के प्रसिद्ध गीत ब्लू लाइट योकोहामा से भी प्रेरित है ऐसा माना जाता है। लेकिन फिलहाल हम जिस गीत की बात कर रहे हैं वो है दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि एक अमेरिकी रॉक बैंड ने इस गीत को अपना कवर संस्करण भी बनाया था। तो आइए बिना देर किए सुनते हैं आशा भोसले जी और आर डी बर्मन जी का गाया ये गीत फिल्म अपना देश से। बहुत ही खास स्टाइल में पंचम दा ने गाया है इस गाने को।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: बिल्कुल, आकाशवाणी एफएम कूल 100.1 मेगाहर्ट्ज़, सांझ ढले और अब बात 1977 की कल्ट क्लासिक फिल्म हम किसी से कम नहीं की। किशोरदा की आवाज, आर डी बर्मन का म्यूजिक, ऋषि कपूर साहब का वो आइकॉनिक व्हाइट सूट इस सॉन्ग में, जिसके लिए विशाल ट्रम्पेट ब्रास सेक्शन इस्तेमाल हुआ था। उसे रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो में 40 से भी ज्यादा म्यूजिशियंस एक साथ बैठे थे। उस दौर का सबसे महंगा ग्रैंड गाना था, जिसने आज तक अपनी बादशाहत कायम कर रखी है। हर रेट्रो रीमिक्स और डांस रील के बैकग्राउंड में छाया

रहता है ये सॉन्ग। तो अपनी शाम को दीजिए एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग, अपनी जगह पर खड़े हो जाइए और जरा पैर थिरकाइए इस एवरग्रीन मस्ती भरे सॉन्ग के साथ। क्या हुआ तेरा वादा? नहीं नहीं, उदास नहीं होने का। हम सुनेंगे इस फिल्म का वो मस्ती भरा सबसे एनर्जेटिक सॉन्ग बचना ए हसीनो, लो में आ गया। फिर मिलेंगे इसी मोड पर इसी शो में, सांझ टले। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप वाइबिंग, कीप ट्रेंडिंग और सुनते रहिए FM गोल्ड।

0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई ईवी नीति की समीक्षा बैठक में कहा, ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर 32,000 की जाएगी। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर राजधानी की स्वच्छता व्यवस्था और अपशिष्ट निपटान क्षेत्रों पर चल रहे बायो माइनिंग कार्यों की प्रगति रिपोर्ट सौंपी। दिल्ली सरकार ने राजधानी में अचल संपत्तियों से जुड़े फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के पंजीकरण संबंधी नियमों को सख्त बनाने का निर्णय लिया। दिल्ली के रोहिणी में एक इमारत ढही, राहत और बचाव कार्य जारी। और दिल्ली के भारत मंडपम में प्रमुख वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 14 जुलाई से आयोजित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग नेटवर्क के बड़े विस्तार की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई ईवी नीति की समीक्षा बैठक में कहा कि अगले 4 वर्षों में दिल्ली में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या मौजूदा लगभग 9,000 से बढ़ाकर 32,000 की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को वास्तविक अर्थों में ईवी सिटी बनाने के लिए आधुनिक और फास्ट चार्जिंग स्टेशनों का व्यापक नेटवर्क विकसित किया जाएगा। उन्होंने सोलर आधारित चार्जिंग स्टेशनों को बढ़ावा देने, पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा सभी स्लो चार्जिंग स्टेशनों को चरणबद्ध तरीके से फास्ट चार्जिंग स्टेशनों में बदलने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चार्जिंग स्टेशन दिल्ली मेट्रो की पार्किंग, डीडीए बाजारों, रेलवे स्टेशनों, सरकारी परिसरों, मॉल और प्रमुख क्षेत्रों के आसपास स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने मेट्रो, डीडीए और वाहन निर्माताओं के साथ समन्वय बढ़ाकर ईवी चार्जिंग अवसंरचना का तेजी से विस्तार करने पर भी बल दिया। प्रादेशिक समाचार के लिए आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल मेट्रो के चौथे चरण के अंतर्गत इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण कार्य का उद्घाटन करेंगी। यह समारोह सराय रोहिल्ला मेट्रो स्टेशन पर आयोजित किया जाएगा। 12 किलोमीटर से अधिक लंबा 10 स्टेशनों वाला यह कॉरिडोर पश्चिम, मध्य और पुरानी दिल्ली को जोड़ेगा। परियोजना के पूरा होने के बाद सड़कों पर यातायात का दबाव कम होने, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलने और प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राजधानी की स्वच्छता व्यवस्था और गाजीपुर, ओखला तथा भलसवा अपशिष्ट निपटान क्षेत्रों पर चल रहे बायो माइनिंग कार्यों की प्रगति रिपोर्ट सौंपी। महापौर ने बताया कि ओखला अपशिष्ट निपटान क्षेत्र पर अब तक लगभग 80 लाख मीट्रिक टन लेगसी वेस्ट का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है, जबकि लगभग 15 लाख मीट्रिक टन फ्रेश वेस्ट के वैज्ञानिक निस्तारण के कार्य का तीव्र गति से जारी है। उन्होंने जानकारी दी कि ओखला और भलसवा अपशिष्ट निपटान क्षेत्रों को इस वर्ष दिसंबर तक तथा गाजीपुर अपशिष्ट निपटान क्षेत्र को अगले वर्ष दिसंबर तक समाप्त करने का लक्ष्य है। श्री वाही ने कहा कि वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और आधुनिक तकनीक के माध्यम से दिल्ली को स्वच्छ, हरित और अपशिष्ट मुक्त बनाने की दिशा में नगर निगम तेजी से कार्य कर रहा है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में अचल संपत्तियों के पंजीकरण में स्टैंप ड्यूटी की चोरी रोकने और संपत्ति से जुड़े फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी GPA के पंजीकरण संबंधी नियमों को और सख्त बनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर सभी सब रजिस्ट्रारों को GPA दस्तावेजों की गहन जाँच करने के निर्देश दिए गए हैं।
2: मुख्यमंत्री ने बताया कि माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन और बच्चों जैसे रक्त संबंधों को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित GPA को पंजीकरण से पहले अनिवार्य रूप से कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के पास जांच के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ऐसे प्रत्येक संदर्भ पर 30 दिनों के भीतर कारण सहित तर्कसंगत लिखित आदेश पारित करेगा। जांच में विशेष रूप से यह देखा जाएगा कि कहीं दस्तावेज में किसी प्रकार के पैसे के लेन देन, संपत्ति का कब्जा सौंपने, GPA अपरिवर्तनीय और संपत्ति को बेचने, उपहार देने, ट्रांसफर करने या बंधक रखने का स्थायी अधिकार तो नहीं दिया गया है। पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए प्रत्येक सब रजिस्ट्रार कार्यालय में ऐसे मामलों का अलग रजिस्टर रखा जाएगा और उसकी मासिक रिपोर्ट भेजी जाएगी।

0: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य जीपीए के माध्यम से कम स्टाम्प शुल्क पर संपत्ति की बिक्री, कब्जा, हस्तांतरण या मालिकाना हक का अवैध हस्तांतरण रोकना है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में देश का सबसे बड़ा और प्रमुख वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम 14 जुलाई से 17 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन द्वारा आयोजित इस आयोजन को भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। यह आयोजन वस्त्र फैशन निरंतरता, तकनीक, नवाचार, निवेश और विश्व बाजार में भारत के संपूर्ण वस्त्र उद्योग की व्यापकता और विविधता को एकीकृत वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेगा। 17 जुलाई तक चलने वाले इस आयोजन में 140 से अधिक देशों के भाग लेने की उम्मीद है। भारत टेक्स के तीसरे सत्र में वैश्विक कपड़ा उद्योग से अंतर्राष्ट्रीय खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता और अन्य हितधारक शामिल होंगे। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है।
2: हथकरघा हैकेथॉन का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 के समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। विद्यार्थी, स्टार्टअप, शोधकर्ता, डिजाइनर, उद्यमी तथा हथकरघा पेशेवर पंजीकरण करने के साथ अपने विचार www.youthideathon.in/handloom पर साझा कर सकते हैं। चुनी हुई टीमें 1 अगस्त को अपने समाधान ज्यूरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। इसका आयोजन IIT दिल्ली के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन ट्रांसफर में होगा। इस पहल के बारे में वस्त्र मंत्रालय में हथकरघा मामलों के विकास आयुक्त डॉक्टर एम बीना ने बताया कि हथकरघा हैकेथॉन का उद्देश्य देश की युवा रचनात्मकता को हथकरघा क्षेत्र की समृद्ध विरासत के साथ जोड़ना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने राष्ट्रीय राजधानी में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया के सदस्यों को संबोधित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि दिल्ली सदियों से देश के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र रही है और आज वैश्विक कूटनीतिक तथा प्रौद्योगिकी संचार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुकी है। दिल्ली के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने आज IT विभाग की समीक्षा बैठक में डिजिटल क्षमता निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को IT प्रशिक्षण लैब और प्रस्तावित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि विकास भवन 2 का AI आधारित IT प्रशिक्षण प्रयोगशाला उद्घाटन के लिए तैयार है और जल्द ही सरकारी अधिकारियों को डिजिटल प्रशासन तथा AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से स्टार्टअप, नवाचार और बेहतर जनसेवा को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष ओम प्रकाश व्यास ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान बच्चों के अधिकार की सुरक्षा और बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि बच्चों के लिए सुरक्षित, संवेदनशील और भरोसेमंद वातावरण विकसित करना दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने आज ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वेस्ट वाइज सिटीजन्स नामक नागरिक जागरूकता पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर NDMC अध्यक्ष केशव चंद्रा ने पुनर्चक्रण योग्य कचरे के घर घर संग्रह के लिए रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, RRR ऑन व्हील्स वाहनों को झंडी दिखाई। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA ने क्राफ्ट सस्टेन्स ट्रेडिशनल ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक का लोकार्पण किया। यह पुस्तक भारत की शिल्प परंपराओं, पारंपरिक ज्ञान और रचनात्मक अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है। पुस्तक में 19 शोध लेखों के माध्यम से भारतीय शिल्प परंपराओं के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और समकालीन विकास पर प्रकाश डाला गया।

0: दिल्ली विकास प्राधिकरण ने संशोधित पारगमन उन्मुख विकास टीओपी नीति के अंतर्गत भूमि विकास के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह आवेदन डीडीए के ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट सिस्टम के माध्यम से किए जा सकेंगे। इस नीति के तहत मेट्रो क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली आरआरटीएस और रेलवे कॉरिडोर के आसपास 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल किया गया है, जिसमें पहली बार करीब 80 वर्ग किलोमीटर नया क्षेत्र जोड़ा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में आज शाम एक इमारत के गिरने की खबर सामने आई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली अग्निशमन विभाग ने बताया कि उन्हें इस घटना की सूचना शाम 4:19 पर मिली थी। विभाग ने बताया कि इस दुर्घटना में घायल दो लोगों को स्थानीय निवासियों द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं खबर लिखे जाने तक इस दुर्घटना में 4 से 5 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य मौके पर लगातार जारी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में एक आरोपी को रोहिणी के बुद्ध विहार से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 100 ग्राम उच्च स्तर की मादक पदार्थ बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले भी अन्य 15 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। वहीं ऐसे ही एक अन्य मामले में एक महिला आरोपी को 20 ग्राम से अधिक उच्च स्तर के मादक पदार्थ के साथ दिलशाद गार्डन क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। दोनों मामलों में आगे की जाँच जारी है। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयन मंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। यह तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
1: आयन मंडल पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का आयनित भाग है, जो संचार और उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व में होने वाले दैनिक बदलाव, जीपीएस और भारत की नाविक प्रणालियों जैसे संकेतों को प्रभावित करते हैं। मंत्रालय के अनुसार इस तकनीक से ऊपरी आयन मंडल की संरचना और व्यवहार को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा तथा भारतीय क्षेत्र के लिए अधिक सटीक आकलन उपलब्ध होगा। ये तकनीक विशेष रूप से भूचुंबकीय भूमध्य रेखा वाले क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण आयन मंडल की गतिविधियां अत्यधिक जटिल होती है। अक्षित वैद्यांत की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अमीशा।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में यह घटकर 24% रह गई। राजधानी दिल्ली में आज हल्की वर्षा के साथ साथ बादल छाए रहे। आज का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने की संभावना है। सुबह और दोपहर के समय कई जगहों पर हल्की वर्षा का अनुमान है। विभाग के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई ईवी नीति की समीक्षा बैठक में कहा, ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर 32,000 की जाएगी। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर राजधानी की स्वच्छता व्यवस्था और अपशिष्ट निपटान क्षेत्रों पर चल रहे बायोमाइनिंग कार्यों की प्रगति रिपोर्ट सौंपी। दिल्ली सरकार ने राजधानी में अचल संपत्तियों से जुड़े फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के पंजीकरण संबंधी नियमों को सख्त बनाने का निर्णय लिया। दिल्ली के रोहिणी में एक इमारत ढही, राहत और बचाव कार्य जारी। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने

0: सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत हो जाएंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा दर्ज की गई, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि जुलाई में वर्षा और तेज होगी, जिससे खरीफ की बुआई में तेजी आएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज को जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि नियामक प्रोत्साहनों के माध्यम से गिफ्ट सिटी एक वैश्विक विमान लीजिंग और वित्त पोषण केंद्र के रूप में उभर रही है। श्री नायडू ने कहा कि 2026 के बजट में अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र इकाइयों के लिए कर छूट की अवधि बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में आज शाम एक इमारत ढह गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार मलबे में 4 से 5 लोगों के फंसे होने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीमें भी राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi arrived in Melbourne, Australia this evening on the second leg of his three-nation visit. He was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities Claire O'Neill upon his arrival. The Prime Minister said this visit will add vigour to the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. In a social media post, Mr. Modi said that he looked forward to the talks with his Australian counterpart Anthony Albanese. The Prime Minister said that he will also have the opportunity

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्वागत है आपका प्रोग्राम मधुरिमा में, एक ऐसा संगीतमय मंच जहां रागों की बात होती है, सुरों की सरिता बहती है और भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा की मनोहारी झलक आप तक पहुंचाते हैं हम। तो आइए संगीत के इन अनमोल रंगों में डूबते हैं और आरंभ करते हैं आज के प्रोग्राम मधुरिमा का। आपके साथ हूँ मैं नूपुर। आज मधुरिमा में हम चर्चा करेंगे राग केदार की। तो राग केदार उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक लोकप्रिय और गंभीर प्रवृत्ति का राग है जो अपनी दिव्यता, शांति और माधुर्य के लिए प्रसिद्ध है। कल्याण थाट का ये राग है जाति शाडव संपूर्ण, जिसमें मतभेद संभव है। वादी स्वर है म, संवादी स्वर सा। गायन का समय रात्रि का प्रथम प्रहर यानी लगभग शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक। इस राग का प्रमुख रस शांति, भक्ति और गंभीर श्रृंगार माना जाता है। राग केदार की बात करें तो इस राग की सबसे बड़ी विशेषता मध्यम यानी म का विशेष महत्व है। विशेष तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है यानी इसमें शुद्ध मध्यम प्रमुख होता है। तीव्र मध्यम का प्रयोग अलंकार के रूप में सीमित और विशेष स्थानों पर ही किया जाता है। स्वर चालन में मध्यम के इर्द गिर्द सुंदर घुमाव इस राग की पहचान है। राग केदार को जब हम सुनते हैं ना तो ऐसा अनुभव होता है जैसे मंदिर की आरती हो शाम के समय की और ध्वनि वातावरण में गूंज रही हो, चांदनी रात में मन पूरी तरह शांत और स्थिर हो गया हो और भीतर श्रद्धा, संतोष और निर्मल आनंद का भाव जाग रहा हो। इस राग में ना तो तीव्र विरह है और ना चंचल उल्लास, इसकी सुंदरता गंभीर शांति और आध्यात्मिक माधुर्य में है। आप तक पहुँचेगा फिल्म घर का एक गीत, सदाबहार गीत है ये, जिसका संगीत राग केदार पर ही आधारित है। संगीतकार आर डी बर्मन ने इस मधुर धुन को तैयार किया था जिसे लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ दी थी। राग केदार जिसे केदारा भी कहा जाता है आमतौर पर भक्ति संगीत और गंभीर भाव के लिए जाना जाता है, लेकिन इस गीत में इस राग को बेहद खूबसूरती से एक रोमांटिक नज्म के रूप में ढाला गया है। आइए सुनते हैं।

राग केदार से प्रेरित कुछ प्रसिद्ध गीत हैं, बेकस पे कर्म कीजिए हमको मन की शक्ति देना और दर्शन दो घनश्याम। राग केदार को अक्सर शांति, भक्ति और दिव्य प्रकाश का राग कहा जाता है। यदि मालगुंजी मन में स्मृतियों की हल्की लहर जगाता है तो केदार मन को स्थिर, उज्जवल और आध्यात्मिक अनुभूति की ओर ले जाता है। राग केदार को जब सुनते हैं ना तो जो अनुभूति होती है वो अक्सर शांत, उज्जवल और आध्यात्मिक मानी जाती है। ये एक ऐसा राग है जो मन को धीरे धीरे स्थिर करता है, ना कि तीव्र भावनाओं से भर देता है। बहुत से श्रोता इसे कुछ इस तरह अनुभव करते हैं जैसे संध्या के समय मंदिर में घंटियां बज रही हों, दीपक जल चुके हों और मन स्वतः शांत होता जा रहा हो। कुछ और सामान्य अनुभूतियां जो इस राग से जुड़ी हैं वो है आंतरिक शांति, यानी कह सकते हैं कि मन की चंचलता कम होने लगती है, भक्ति का भाव जागने लगता है, एक निर्मल आनंद महसूस होता है, गरिमा और गंभीरता समाती जाती है और एक मानसिक स्थिरता का अनुभव होने लगता है, जैसे विचारों का जो शोर होना वो धीरे धीरे शांत होता जा रहा हो। शायद यही कारण है कि राग केदार को सुनने के बाद कई श्रोताओं को मन अपेक्षाकृत अधिक शांत, संतुलित और एकाग्रचित मालूम देता है ना। हालांकि कह सकते हैं कि संगीत का अनुभव हर एक व्यक्ति के लिए कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन जो अमूमन प्रभाव इस राग को सुनने का होता है वो आप तक हमने पहुंचाया। हो सकता है कि इस प्रार्थना गीत को सुनकर आप राग केदार के असर को थोड़ा अनुभव कर पाएं। फिल्म गुड्डी से ये गीत है, राग केदार, ताल दादरा, संगीत निर्देशक वसंत देसाई, गीतकार गुलजार और आवाज वाणी जयराम की। हमको मन की शक्ति देना, आइए सुनते हैं।

आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से गीत संगीत ओपिन अय्यर का और संगीत का आधार बना राग केदार। आशा है राग केदार के स्वर सौंदर्य और उसके भाव पक्ष से आपका परिचय और भी गहरा आज हुआ होगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रत्येक राग की ना अपनी एक अलग पहचान और आत्मा होती है और इसी अनमोल धरोहर को आप तक पहुंचाना हमारा प्रयास है मधुरिमा के जरिए। इसी विश्वास के साथ कि आपसे फिर होगी मुलाकात किसी और मनमोहक राग और नई संगीत में प्रस्तुति के साथ, मैं नूपुर आपसे इजाजत लेती हूँ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां सुरों का साथ बना रहता है 24 घंटे हर पल। कुछ ही देर बाद यानी ठीक 8:30 पर सुनिएगा स्पोर्ट्स स्कैन। फिलहाल आप तक पहुंच रहा है येसुदास की आवाज़ में फिल्म सावन को आने दो से ये गीत जो पार्श्व में आप सुन रहे हैं, राग केदार ताल दादरा, संगीत निर्देशक राजकमल। और बस इस कार्यक्रम की ये आखिरी प्रस्तुति। नमस्कार।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्यूक ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले जारी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल की टीमों की सूची तय। पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस और मोरक्को होंगे आमने सामने। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने घोषणा की तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला कल ब्रिस्टल में खेला जाएगा। तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन के बड़े अंतर से हराया और सातवां अल्टीमेट टेबल टेनिस टूर्नामेंट कल से गोवा में खेला जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं विंबलडन से, जहां पुरुष क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेला जा रहा है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्यूक ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मार्टिन्स को 6-3, 7-5 से और

0: फिर से जारी है। वहीं प्रतियोगिता में यानिक सिनर, नोवाक जोकोविच और कोको गॉफ ने पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक रिपोर्ट।
1: नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में 5 घंटे और 15 मिनट तक चले अब तक के सबसे लंबे क्वार्टर फाइनल में जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। वह विंबलडन में लगातार 8वीं और अपने करियर में 55वीं बार ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। जोकोविच ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फेलिक्स ऑगर अलियासिमी को 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 से हराया। क्वार्टर फाइनल में 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन ने ऑगर अलियासिमी के बैकहैंड को लगातार बनाया और अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़े। हालांकि कनाडा के खिलाड़ी अलियासिमी ने उन्हें कड़ी चुनौती दी और मैच को 5वें सेट के टाई ब्रेकर तक पहुंचाया। आखिर में जोकोविच अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए मैच अपने नाम करने में सफल रहे। इस जीत के साथ जोकोविच ने विंबलडन में शीर्ष 10 खिलाड़ियों के खिलाफ लगातार 3 हार का सिलसिला भी खत्म किया। अब सेमीफाइनल में जोकोविच का सामना इटली के यानिक सिनर से होगा। मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर ने जॉन लेनार्ड स्ट्रफ के खिलाफ 7-5, 7-6, 6-3 से जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना दी है। लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब में पहला सेट हारने और दूसरे सेट की शुरुआत में ही एक ब्रेक से पिछड़ने के बाद स्ट्रफ ने अपनी आक्रामकता बढ़ाई। स्ट्रफ ने पूरे सेट के दौरान दबाव बनाए रखा और 5-4, 30-40 पर सेट पॉइंट हासिल किया। इसके बाद टॉप सीड खिलाड़ी ने अपनी शानदार सर्विस के साथ साथ बेस लाइन पर लगातार अच्छा खेल दिखाया। उन्होंने दूसरे सेट के टाई ब्रेक में जबरदस्त खेल दिखाया और फिर 2 घंटे 35 मिनट तक चले इस मैच में अपनी पकड़ बनाते हुए जीत दर्ज की। उधर महिला सिंगल्स में कोको गॉफ ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अमेरिकी स्टार खिलाड़ी ने पहला सेट गंवाने के बाद वापसी करते हुए जेसिका पेगुला को 4-6, 6-3, 6-3 से मात देकर अपने करियर के पहले ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में जगह बनाई। लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब में पेगुला लगातार अच्छा खेल रही थी और पहले सेट में ग्रास कोर्ट पर कोको गॉफ की कमजोरियां सामने आ गई, लेकिन नंबर 7 सीड खिलाड़ी ने अपने प्रतिद्वंदी की सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया। 1 घंटे 48 मिनट तक चले इस मैच में जीत के साथ 2 बार की मेजर चैंपियन गॉफ अपने करियर में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सेमीफाइनल या उससे आगे पहुंचने वाली 7वीं सक्रिय खिलाड़ी बन गई। उनसे पहले वीनस विलियम्स, सेरेना विलियम्स, कैरोलिना प्लिस्कोवा, आर्याना साबालिंका और ईगा स्वाइतेक भी ऐसा कर चुकी हैं। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: और अब रुख कर लेते हैं सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक, फुटबॉल पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल के लिए टीमों की सूची तय हो चुकी है। फ्रांस, मोरक्को, नॉर्वे, इंग्लैंड, स्पेन, बेल्जियम, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 8 में जगह पक्की कर ली है। क्वार्टर फाइनल का पहला मुकाबला 10 जुलाई को देर रात 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को के बीच होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना बेल्जियम से होगा। तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना आखिरी क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं राउंड ऑफ 16 के रोमांचक मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से और स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनाल्टी शूटआउट में हराया। सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक खास रिपोर्ट।
2: अटलांटा में खेले गए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना ने 0-2 से पिछड़ने के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए मिस्र को हराया। मिस्र के लिए यासर इब्राहिम ने 15वें मिनट और मुस्तफा जिको ने 62वें मिनट में गोल किए, जिससे मौजूदा चैंपियन के टूर्नामेंट से जल्द बाहर होने का खतरा पैदा हो गया। इसके बाद लियोनेल मेसी ने अपना जादू दिखाया और 79वें मिनट में क्रिस्टियन रोमेरो के गोल में मदद की।
3: Argentina right back in it, Cristiano Ronaldo.
2: और इसके बाद खुद 83वें मिनट में एक शानदार गोल किया। लुटारो और अर्जेंटीना के कप्तान के बेहतरीन तालमेल ने अर्जेंटीना को मुकाबले में 2-2 से बराबरी पर ला दिया।
3: लुटारो सेंट इट अक्रॉस, इट्स स्वेप्ट इन, एंड ऑफ कोर्स इट्स लियोनेल मेसी।
2: और इसके बाद एंजो फर्नांडीज ने स्टॉपेज टाइम के 3rd मिनट में एक शानदार गोल करके अर्जेंटीना की जीत को सुनिश्चित करते हुए स्कोर 3-2 कर दिया।
3: A game that had everything. Heartbreaking for Egypt. It's finished. Argentina 3, Egypt 2.
2: वहीं एक अन्य मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। स्विट्जरलैंड ने राउंड ऑफ 16 अर्जेंटीन के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करते हुए कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। 1954 के बाद पहली बार स्विट्जरलैंड ने विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। रूबेन बरगास ने विजय किक मारकर

0: स्विट्जरलैंड को 7 दशकों में पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया है। वैंकूवर में खेले गए इस मुकाबले में दोनों ही टीमें निर्धारित 90 मिनट और अतिरिक्त समय में भी कोई गोल नहीं कर सकी। मैच के दौरान दोनों टीमों ने कई मौके बनाए लेकिन कोई भी खिलाड़ी उन्हें गोल में तब्दील नहीं कर पाया। इसके बाद मुकाबले का फैसला हुआ पेनल्टी शूटआउट से। स्विट्जरलैंड के लिए रूबेन वर्गास ने सबसे अहम पेनल्टी को गोल में तब्दील कर अपनी टीम की जीत पक्की की। मुकाबले के पहले हाफ में कोलंबिया ने गेंद पर ज्यादा नियंत्रण रखा लेकिन टीम गोल का कोई मौका नहीं बना सकी। कोलंबिया की सबसे अच्छी कोशिश गुस्तावो पुएर्ता ने की जिनके शानदार शॉट को स्विट्जरलैंड के गोलकीपर ग्रेगर कोबेल ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से रोक दिया। दूसरे हाफ में लुइस सुआरेज को भी मौका मिला लेकिन उनका शॉट लक्ष्य से बाहर चला गया। दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड के फैबियन रीडर की वॉली को कोलंबिया के गोलकीपर कैमिलो वर्गास ने आसानी से बचा लिया। अतिरिक्त समय में मुकाबले का रोमांच अपने चरम पर रहा। कोलंबिया के जॉन लुकुमी का हेडर क्रॉस बार से टकरा गया जबकि स्विट्जरलैंड के जैकियम दोनी का शॉट भी गोलकीपर ने रोक लिया। आखिरकार पेनल्टी शूटआउट में ग्रेगर कोबेल ने एक अहम बचाव किया और रूबेन वर्गास ने निर्णायक पेनल्टी को गोल में बदलकर स्विट्जरलैंड को ऐतिहासिक जीत दिला दी।
1: It's all over! Switzerland are going to the quarter final of the World Cup and they've got a date with Lionel Messi.
0: स्पोर्ट्स कैन के लिए मुनीश शर्मा।

0: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। और अब बात करते हैं क्रिकेट पर। नॉटिंगहम में तीसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन के बड़े अंतर से हराया। इंग्लैंड के 202 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 12वें ओवर में सिर्फ 76 रन पर ही सिमट गई। जोफ्रा आर्चर को धारदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 5 मैचों की T20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: टॉस जीतकर भारत ने इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। फिल सॉल्ट ने इंग्लैंड के लिए 44 गेंद में 70 रन की दमदार पारी खेली। वहीं जॉश बटलर ने भी 36 रन का अहम योगदान दिया। सैम करन ने अंतिम ओवरों में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 41 रन की पारी खेली। इंग्लैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 201 रन बनाए। 202 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। अभिषेक शर्मा महज 10 रन बनाकर जॉश टंग का शिकार बने। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। सूर्यवंशी 5 गेंद में 13 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर का शिकार बने। ईशान किशन भी 13 रन ही बना सके। कप्तान श्रेयस अय्यर के पेविलियन लौटने के बाद भारतीय बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अक्षर पटेल 10 और तिलक वर्मा 3 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने पूरी भारतीय पारी को 11 ओवर 4 गेंद में ही समेटकर श्रृंखला में बढ़त बना ली। जोश टंग ने 4, जोफ्रा आर्चर ने 3 और आदिल रशीद ने 2 विकेट झटके। बल्लेबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन के चलते भारत को T20 इंटरनेशनल में रन के लिहाज से अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि पावर प्ले में 4 विकेट गंवाना हमें मुकाबले में महंगा पड़ा।
2: I feel that we need to accept this loss and completely go back to the drawing board and see what we did wrong. Looking at the wicket, I don't think that it was a 200 wicket. The way we batted, we lost 4 wickets in the power play. I think we lost over there. Great opportunity to come back strong. Not dwell too much about what's happened in the past. Every individual have to think by himself and see how they can win the matches and take that sort of responsibility.
1: इससे पहले भारतीय टीम को वर्ष 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 80 रन से हार झेलनी पड़ी थी। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम अपने दूसरे सबसे कम स्कोर पर ऑल आउट हुई। 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम सबसे कम 74 रन ही बना सकी थी। अब भारत ब्रिस्टल में कल खेले जाने वाले मुकाबले को जीतकर श्रृंखला में जीत का खाता खोलना चाहेगा। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
0: उधर ICC ने T20 बल्लेबाजों और गेंदबाजों की रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन पहले और अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। T20 गेंदबाजों में अफगानिस्तान के राशिद खान पहले और भारत के वरुण चक्रवर्ती 5वें स्थान पर हैं। और अब बात करते हैं टेबल टेनिस पर। अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन UTT के 7वें संस्करण का आयोजन कल से 26 जुलाई तक गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम

0: में किया जाएगा। इस लीग में 7 फ्रेंचाइजी टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। घरेलू टीम डेम्पो गोवा चैलेंजर्स का लक्ष्य रिकॉर्ड तीसरी बार यूटीटी खिताब जीतना होगा। ये लीग सिंगल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेली जाएगी, जिसमें प्रत्येक टीम लीग चरण के दौरान दूसरी टीम से एक बार भिड़ेगी। टूर्नामेंट से पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मानव ठक्कर ने कहा कि ये प्रतियोगिता आगामी एशियन गेम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
1: It's a very good place. I want to play my best in this league and I want to set the momentum for the Asian Games which is going to happen this September. So yes, it will be a very good challenge for me to play here and be ready for the Asian Games which is going to be in this year and hopefully I will be ready for the Asian Games.
0: Table tennis खिलाड़ी दिया चिताली ने कहा कि इस टूर्नामेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
2: Every season I think I learn a lot and honestly I think UTT has, it's a lot of pressure playing in such kind of situation. When you're there at 6-6 and you know you need those 2 points in the end, I don't think we ever feel that kind of pressure. So I think playing here has really helped me develop myself and yeah, it's a great preparation I think before the Asian Games.
0: इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में जारी एशियन अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता के अंडर 19 50 किलोग्राम कैटेगरी में अंबेडकर मितई ने पुरुषों के वर्ग में दमदार जीत हासिल की। और जन्मदिन की श्रृंखला में आज बात भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की। दादा के नाम से प्रसिद्ध सौरव गांगुली का आज 54वां जन्मदिन है। प्रिंस ऑफ कोलकाता ने 113 टेस्ट मैच में 7212 रन बनाए।
3: लाउड अप्लॉज फॉर द फॉर्मर इंडिया कैप्टन वॉकिंग आउट टू द सेंटर द लास्ट टाइम इज कमिंग आउट टू बैट इन टेस्ट मैच क्रिकेट और अ क्रिकेटर ही हैज बीन सौरव गांगुली फुली डिजर्व्स ऑल द अप्लॉज।
0: सौरव गांगुली ने 311 एक दिवसीय मैच में 11,363 रन बनाए। उनकी कप्तानी में भारत ने 49 टेस्ट में 21 और 146 एक दिवसीय मैचों में 76 जीत दर्ज की। सौरव गांगुली मानते हैं कि क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट मैदान पर होना सबसे सुखद क्षण है।
4: क्रिकेट एक दिन छूट जाना है और 15 साल भारत के लिए खेले वो वापस नहीं आएगा। वो सेटिस्फेक्शन अलग ही है जब तुम एक तेज गेंदबाज को कवर ड्राइव मारते हो ना, जब बॉल बीच में लगता है और कवर और मिड ऑफ के बीच से जाता है और सारे ताली मारते, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जितने भी आप काम कर लो, जितने भी बड़े बन जाओ, जितने भी पैसे कमा लो, वो वापस नहीं आएगा।
0: और श्रोताओं, विदा लेने का कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्ट्यूक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह

देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना संचिता ओबरोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
3: जुलाई

0: की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टेयर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
3: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी के किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप News on AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
4: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और

0: 56 पैसे पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोत्सुक ने जैस्मीन पाओलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
2: गुड इवनिंग। दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence that rainfall to gain further momentum.

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है, अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: जब आसमान से आग बरसती है और नदियां रास्ता भूल जाती हैं, जब धरती की छाती प्यास से चटकने लगती है और समंदर की लहरों का मिजाज पूरी दुनिया का भूगोल बदलने लगता है, तब जन्म लेता है एक नाम, एल नीनो। ये सिर्फ मौसम का एक चक्र नहीं है, ये इम्तहान है हमारी धरती का, हमारी फसलों का और हमारी थाली का। आज जब ग्लोबल वार्मिंग के साए में खेती का भविष्य धुंधला रहा है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे अन्नदाता किसान इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं।

0: हमारी कृषि प्रणाली में वो लचीलापन, वो क्लाइमेट रेजिलियंस है जो इस महासंकट का सामना कर सके। इन्हीं सवालों पर आधारित है आज आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो बड़े विशेषज्ञ, मौसम के हर परिवर्तन पर पैनी नजर रखने वाले मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा और देश की मिट्टी और किसानों की नब्ज पहचानने वाले जाने माने कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: आनंद जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं और हमारे श्रोताओं और किसानों के लिए आसान भाषा में अगर आप समझाएं कि एलनीनो वास्तव में होता क्या है और प्रशांत महासागर में होने वाली ये हलचल भारत के मॉनसून को किस तरह प्रभावित करती है।
2: एलनीनो का बेसिकली क्या है कि जो आपका पेरू है, पेरू के जो तट है वहां पर सामान्यतः जो सी का जो समुद्र का तापमान होता है सरफेस का, वो सामान्यतः ठंडा रहता है। बट कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी ट्रेड विंड्स होती हैं, जो कि यहाँ के जो सरफेस वाटर को पेरू के तट से दूर धकेलती हैं और उसके चलते जो नीचे से पानी आता है समुद्र का, वो इसको ठंडा बनाए रखता है सतह को, और वो नॉर्मल कंडीशंस कहलाती हैं। जब ठंडा है सी सरफेस टेम्परेचर, लानीना कंडीशंस। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो ट्रेड विंड्स है ये स्लैकन कर जाती है, वीक पड़ जाती है। जब ये वीक हो जाती है तो क्या होता है, जो पानी था वहां जिस जिसका सी सरफेस टेम्परेचर था थोड़ा ज्यादा था, वो हटा नहीं पाती और वो वहीं खट्टा रह जाता है। तो सामान्यतः जहां समुद्र का सतह का तापमान कम होना चाहिए था वो बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ पैसिफिक सी ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, यानी सामान्य से ज्यादा हो जाना सी सरफेस का टेम्परेचर का। और जब ये ऐसा होता है तो ये काफी सारे बदलाव लेके आता है कि जहां कहीं बारिश होती है पहले वहां सूखा पड़ने लगता है और जहां सूखा पड़ता है वहां बारिश होने लग जाती है, तो पूरे पैटर्न को। और दूसरी बात है, ये एक तरह का टेली कनेक्शन है। टेली कनेक्शन का मतलब है कि किसी तरह की समुद्र में या वायुमंडल में होने वाली हलचल एक जगह पे बहुत दूर, हजार किलोमीटर दूर के मौसम को और वहां की प्रेशर को, टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। तो एक तरह का ये टेली कनेक्शन है और 4 से 5 साल के बीच में आता है, पहले भी आ चुके हैं। और जब जब ये आता है तो जैसे जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं, हमारे यहाँ पे भी कभी कभार ये मौसम को, मतलब ये मानसून को प्रभावित कर देता है। क्योंकि ऐसे साल भी हुए हैं कि जब एलनीनो था मानसून खराब हुआ, और ऐसे साल भी हैं कि एलनीनो था और मानसून फिर भी ठीक था। और इस बार चर्चा हो रही है कि भाई ये जो है सुपर एलनीनो होने वाला है, हालांकि अभी जो है इतने ज्यादा तापमान नहीं बढ़े, 1 डिग्री के आसपास ही है तो ये ठीक है, मगर बोला जा रहा है, ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि शायद ये 3 डिग्री तक पार कर जाए, तो ऐसा होता तो ये सुपर एलनीनो होगा, और जब ऐसा हुआ तो शायद ये उसके नेगेटिव इम्पैक्ट मानसून पे ज्यादा होंगे। और इस सबको मौसम विभाग ने, एक बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि आजकल ये सारी प्रिडिक्शंस ग्लोबल स्तर पे होती हैं, WMO इसको वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करता है, तो ये सब सिग्नल पहले से दे दिए गए थे और मौसम विभाग ने भी इसको फैक्टर इन करा। और उसी को देखते हुए उनकी जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, उन्होंने इस बार कहा कि जो हमारा मॉनसून सीजन में हमें करीब करीब 115 सेंटीमीटर जो वर्षा मिलती है, लॉन्ग टर्म नॉर्मल जिसे कहते हैं, वो उसका सिर्फ 90% हमें मिलने वाला है, यानी कि 10% की कोई कमी जो है मौसम विभाग ने इसको फैक्टर इन कर लिया। इसको देखते हुए ने देखा भी कि थोड़ा सा, हालांकि केरल में 1 तारीख को, जून को आता है मानसून, ये 4 तारीख को आया। हाँ, मुंबई और महाराष्ट्र में और जो आसपास के इलाके वहां इसकी मानसून ऑनसेट की थोड़ी देरी जरूर हुई और शायद उसने कुछ एरियाज में सोइंग को प्रभावित किया होगा।
0: हरवीर जी, जब मौसम वैज्ञानिक एलनीनो की चेतावनी देते हैं तो एक आम किसान के खेत में इसका सीधा असर किस रूप में देखने को मिलता है? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एलनीनो की चेतावनी के बाद वो कौन कौन सी फसलें होती हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराने लगता है?
1: असल में देखिए, जो खरीफ सीजन है वो हमारे एग्रीकल्चर का एक तो पहला सीजन होता है जब कृषि का साल शुरुआत हम मानते हैं, खरीफ दन रबी। खरीफ का मानसून पर बहुत बड़ी निर्भरता है। हमारे देश में बहुत बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है जो एक फसली है खेती जहां होती है, और वो इसलिए क्यों, जो वर्षा सिंचित जो क्षेत्र हैं वो भी खरीफ में कवर होते हैं, वो रबी में वहां बहुत जगह ऐसी होती है खेती नहीं होती है। और अब भी हमारा ये देखिए कि करीब 50% के आसपास ही हमारा जो हम कहते हैं कि अश्योर्ड इरिगेशन कवरेज जो है, जहां पर निश्चित रूप से सिंचाई की सुविधाएं जहां पर हैं अस्थायी रूप से, कि बारिश हो या ना हो पानी का इंतजाम फसल के लिए हो जाएगा। ऐसे में करीब करीब 50% जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल इसमें है। और ये भी है कि जब इसके बारे में चर्चाएं इस बार शुरू हो गई, पहले से तैयारियां, मीटिंग्स हो रही हैं मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, NDMA की मीटिंग हो रही है, होम मिनिस्ट्री में भी हो रही है, तो तो वो चिन्हित किए गए कौन से ऐसे जिले हैं जहां डिस्ट्रेस बढ़ेगा, तो जाहिर सी

0: थे कि वो जो किसान इंतजार कर रहे थे कि हमें फसल बोनी है जब बारिश होगी, तो उनको इसके लिए दिक्कत हुई। और उसका नतीजा ये है कि देखिए, जून में जैसे शर्मा जी ने बताया कि मानसून थोड़ा डिले आया, और उसके बाद फिर जब वेस्ट कोस्ट की तरफ आता है तो वो बहुत ही स्लो उसका प्रेशर था, तो बेसिकली वीक जिसे हम कहते हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया था, एक ब्रेक जिसे कहते हैं वो आ गया। अब उसमें जब ये सब हिस्से आपके जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा और इवन कुछ सेंट्रल है, वहां पर ये जो बारिश पर आधारित जो खेती है उसका काफी बड़ा हिस्सा है, तो अब नतीजा ये हुआ कि वहां पर जो किसान समझता था कि मुझे बुआई करनी है तो वो डिले हो। अभी जो लेटेस्ट डाटा अभी 5 तारीख तक के आए हैं, उसमें खरीफ में जो एवरेज हमारा जो सोन एरिया होता है वो करीब 21% से पिछड़ा हुआ है, और इसमें जो मार पड़ी है उन फसलों पर पड़ी है जो थोड़ा सा जिनको मार्जिनल क्रॉप बोलते हैं, कि जो एश्योर्ड इरिगेशन में फार्मर उनको नहीं बोता और ये लगता है कि बारिश होगी तो बो देंगे, जिसमें दालें हैं, तिलहन बड़े पैमाने पर है, तो ये जो नुकसान है हमें ये बड़ा है। इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग तरीके से देखेगी, एग्रीकल्चर अलग तरीके से देखेगा, रिजर्व बैंक अलग तरीके से देखेगा। एक तो पहला तो स्टेप यही है कि एडवाइजरीज जो जारी है कि भाई किस तरीके से कौन सा फसल आपको अभी उगानी चाहिए, क्या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप पे जाना चाहिए, क्या आपको जो कम अवधि की जो फसलें हैं थोड़ा देर से आप बोएं, जून में नहीं बो पाए, जुलाई 15 तक नहीं बो पाए, लेकिन फिर भी आप इस वैरायटी का इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं, या फिर आप फसल चक्र बदल दीजिए, ये फसल इसमें कम बारिश में हो सकती है। तो ये इस तरह की एडवाइजरीज पहले स्तर पर किसानों तक पहुंचती है, वो जो समाचार माध्यम है या सरकारी जो माध्यम है उनके जरिए जाता है, आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके जरिए जाता है, तो वो सब एडवाइजरीज उस तरीके से, अब तो तमाम सारा प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिव है एग्रीकल्चर में, उनके जरिए भी जाता है। तो ये तो एक तरीके से किसान को सूचना पहुंचाने का काम है कि आप अपना फैसला आप ले सकते हैं इस परिस्थिति में, आपको के लिए क्या उचित फैसला है, तो ये किसान के स्तर पर है और ये सरकार दोनों के बीच में ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन का एक जो फ्लो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, मतलब बारिश नहीं होगी कम होगी तो उसको तो नहीं कर सकते। हाँ, उसको मिटिगेट करने के लिए और कई सारे स्टेप्स जो है जो सरकार लेती है या जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज लेती है, वो फिर अगले कदम इसके बाद नेक्स्ट जो अगली स्टेज में शुरू होता है।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे और देश के बहुत सारे श्रोता और किसान भी समझना चाहेंगे कि क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, जो दो फैक्टर पिछले 20-25 वर्षों में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्या उनका भी एल नीनो की घटनाओं से सीधा संबंध है? जो डेटा है वो इस बारे में क्या कहानी कहता है?
2: ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज भी है, पर एक चीज हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है ना वो इतनी ज्यादा है, और ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये थोड़ा एडिड प्रेशर है। मैं ये कहूंगा कि सारा नहीं, जो लोग मानते हैं सारा क्लाइमेट चेंज नहीं, 95% तो आपकी क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इतनी है, मैंने जैसे बताया कि 2002 में कितनी जबरदस्त पूरा जून में बारिश ही नहीं मिली आपको, सो नेचुरल वेरिएबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा है, और ऊपर से ये अब एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे ऊपर आ गया है। और लोगों का मानना है कि भाई जिस तरह से कि मतलब एटमॉस्फेयर की वार्मिंग हो रही है, हीट वेव्स हो रही है, वैसे ओशन भी वार्म कर रहे हैं, सो नेचुरली वहां पे भी वार्मिंग होगी तो शायद और एल नीनो स्ट्रांग हो जाए, वो उनका मानना है। बट मेरा फिर भी मानना है कि हमने इससे भी वर्स्ट सिचुएशन को झेला है, तो हमारी यदि तैयारी अच्छी होगी, हमारी वार्निंग अच्छी होगी, जिसे हम कहते हैं ना फोर वॉर्न्ड इज फोर आर्म्ड, आपने वार्निंग पहले से दे दी और आपने तैयारी करी है, कंटीजेंसी प्लान की आप महावीर जी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। हमारी यदि 200 डिस्ट्रिक्ट जो है हमने चिन्हित कर दिए हैं जो कि एग्रीकल्चरली स्ट्रेस प्रोन है,
1: प्रभावित होंगे,
2: वो पहले से चिन्हित है। ICAR के बाद निकरा प्रोजेक्ट है, न्यू इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वो हमारे पहले से तैयारी है। 2500 के करीब हम लोगों के पास कहते हैं ड्राउट स्ट्रेस रिलेटेड जो है, फ्लड रिलेटेड जो है वेराइटीज हैं जो फ्लड में भी काम कर जाएंगी, ड्राउट हुआ तो ड्राउट में काम कर जाएंगी, और एल नीनो में जरूरी नहीं कि ड्राउट ही होगा, एक्सट्रीम वेदर भी हो जाता है और फ्लडिंग भी हो जाएगी, तो उसकी सब वेराइटीज तैयार है। आपने बड़े अच्छा बताया महावीर जी ने, यदि थोड़ा डिले हो जाएगा, इतना ज्यादा भी डिले नहीं हुआ, और डिले हो गया जहाँ तो आप 4 महीने की जगह छोटी क्रॉप लगाइए, शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप चले जाइए, और क्रॉप्स भी ऐसी हों जो कि मिलेट टाइप की होती हैं, जिनको कि मतलब कि आपको कहने का मतलब पानी कम चाहिए, यदि 3 हफ्ते ड्राई स्पेल रही तो वो सर्वाइव कर जाती हैं। और मजे की बात यह है कि आज की डेट में क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप बना हुआ है कृषि मंत्रालय में, और मैं उसका पार्ट था, IMD को काफी सालों मैंने रिप्रेजेंट किया, तो वहां हम लोग यही डिस्कशन होता है कि भाई पिछले हफ्ते ऐसा मौसम रहा, अगले हफ्ते ऐसा होने वाला है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ये है, तो अब सारे एक्सपर्ट बताएंगे फर्टिलाइजर अवेलेबल है, शॉर्ट ड्यूरेशन यदि बोना है तो क्या उसके बीज भी उपलब्ध हैं कि नहीं है, तो ये सब तैयारी रहती है, फर्टिलाइजर पेस्टिस सब कुछ सबकी तैयारी, पानी है रिजर्वायर में कितना है, एक समय आ गया था कि मुंबई में पीने का पानी की किल्लत होने वाली थी, मगर वो और एक

0: डेफिसिट 20-21% पहुंच गया था मानसून का, वो शायद अब 10 के आसपास आ गया है, तो वो भी काफी कवरेज तो हुई है। तो मगर मेरा कहने मतलब है कि तैयारी सरकार की अच्छी है, आपके पास हर तरह की वैरायटी है, और साथ साथ जो मौसम पे आधारित खेती करनी है, जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न हो वो हमेशा ऐसे होने चाहिए कि जहाँ का एग्रो क्लाइमेट है अकॉर्डिंग नहीं है, ऐसा ना हो जैसे कि शुगर केन महाराष्ट्र लगा रहा है सेमी एरिड एरिया है,
1: जी
0: पैडी लगा रहा है कौन पंजाब सेमी एरिड एरिया, ये क्रॉप ह्यूमिड एरिया की क्रॉप है क्योंकि वहां पानी फ्री मिल रहा है उनको, बिजली फ्री है, तो वो इसलिए वो लगा रहे हैं और उसको प्राइस अच्छा मिलता है। मगर ऐसी जगहों पे लगाने हैं मिलेट्स, एक चीज। और दूसरी बात जो मौसम विभाग समय समय पे बताता है आपको, गुड वेदर प्रैक्टिसेस एंड बैड वेदर प्रैक्टिसेस। यदि आपका पानी बरस रहा है तो भैया इस समय हार्वेस्टिंग कर लो ना, बरसात से पहले से आपके सारे तालाब वालाब साफ करके उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है हमको, तो वो करके तैयारी रखें अपनी। अच्छा फिर उसके साथ ये भी करें, बैड वेदर है जब मतलब कि भाई अलिनो है इस बार, मॉनसून थोड़ा खराब होने का चांसेस है, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: तो ये गुड वेदर कोड बैड वेदर कोड बिल्कुल बनी पड़ी है, तो उसके लिए कृषि मंत्रालय मौसम विभाग एनडीए में सारे जो हैं बिल्कुल आपस में उसमें रहते हैं, और समय समय पर क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप मीटिंग्स होके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और सबको ये जानकारी दी जा रही है इस समय क्या करना है आपको। और सबसे बड़ी उसमें बात मैं कहूँगा कि सरकारों को थोड़ा सा ये मेरे को और स्ट्रेस ये देना पड़ेगा, हमें इरीगेशन जो है ना कैनाल इरीगेशन और दूसरे इरीगेशन को और बढ़ाना है। देखिए जो स्टेट्स पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जिनमें इरिगेशन फैसिलिटी है या फिर ग्राउंड वाटर उनको मिल जाता है, वहां कभी फसल नहीं खराब होती। आप देख लीजिए वहां पे यदि बारिश कम हो जाए ना बल्कि फसल और अच्छी होती है क्योंकि धूप अच्छी मिल रही है, बीमारी नहीं होती वहां पर, फंगस नहीं आती है, और पानी जब चाहिए वो निकाल के सोई कर देते हैं। और ये भी ध्यान रख लीजिए क्रॉप को जैसे मान लीजिए 4 महीने की है तो 4 महीने पानी नहीं चाहिए
1: जी,
0: सिर्फ 4 और 5 क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, उन 5 क्रिटिकल स्टेजेस पे ही पानी चाहिए। और कई बार ऐसा भी देखा गया वर्षा तो सामान्य है सामान्य से ज्यादा है, मगर वो क्या हुआ कि महीने के शुरू में मिल गई एंड में मिल गई और बीच में 3 हफ्ते नहीं मिली,
1: जब जरूरत थी तो नहीं मिली
0: नहीं मिली। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब मौसम विभाग आज की इसमें आपको फोरकास्ट तो दे रहा है कि भाई मानसून की वर्षा कम होगी, मगर मेरा ये मानना है ऐसा भी तो हो सकता है कि 90% के 85 भी हो गई, और 85 भी इतनी है कि आपकी जो फसलें ज्यादातर जो धान और शुगरकेन को छोड़ दीजिए, बाकी को सिर्फ 500 मिलीमीटर वर्षा चाहिए, और यदि आपके समय समय पर मिल गई ये वर्षा तो आपकी फसल निकल जाएगी। मगर उसके साथ साथ किसानों को क्या करना है, किसान क्या कर रहा है, उसके पास एक लाइफ सेविंग इरिगेशन भी नहीं है तो वो तो जुआ खेल रहा है, एटलीस्ट 1 या 2 लाइफ सेविंग इरिगेशन तो रखे, जैसे ही 3 हफ्ते का पीरियड आया नहीं मिली वर्षा तो एक लाइफ सेविंग इरिगेशन यूज कर लिया, थोड़ी देर बाद उसको जरूर वर्षा मिलेगी। कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 5 हफ्ते वर्षा मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं होता कभी भी। तो ये तैयारी हमारी होगी तो हम किसी भी सिचुएशन को झेल सकते हैं, इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हमने झेल ली है और इसको भी हम अच्छे से झेलेंगे।
1: हरवीर जी, जलवायु अनुकूलन क्षमता यानी क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं, और आज जो हमारा चर्चा का विषय का टॉपिक है वो भी इसी पर आधारित है। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे ये होता क्या है और व्यवहारिक रूप से किसान अपने खेत को जलवायु अनुकूल कैसे बना सकता है।
2: जो वेदर का जो एक पैटर्न है और क्लाइमेट, वो उसमें बड़े तेजी से बदलाव आ रहे हैं। एक तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, एक्सट्रीम हीट, सडनली वेरी हैवी रेनफॉल और ड्राई स्पेल, तो ये जो इंसिडेंट्स हैं ये सीधा क्लाइमेट चेंज का इंडिकेशन है, और उसी से ये होता है जब अनयूजुअल इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब इसमें एक तो पक्ष ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं कि हम क्लाइमेट रिजिलिएंट क्रॉप यानी कि ऐसी प्रजातियां जिसमें ऐसा लचीलापन है सर्वाइव करने के लिए कि अगर दोनों चीजों में, फ्लड में भी सर्वाइव कर जाए उस तरह की भी किस्में, और अगर उसको स्ट्रेस आता है उसमें भी वो सर्वाइव कर जाए कम पानी में कम न्यूट्रिशन में। ये इस तरह की प्रजातियां वैसे तो बहुत बड़े पैमाने पर ICAR और हमारे जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें उन्होंने डेवलप की हैं, बट इसमें अब ये देखना पड़ेगा कि वो किसानों की पहुंच में कितना है। आप कहें कि हमने 2200 वैरायटी रिलीज कर दी, बट अगर किसान को यही नहीं पता कि इनमें से कौन सी वैरायटी ऐसी है जो आज की परिस्थिति में मेरे लिए उपयोगी है, और उससे भी आगे क्या उसका सीड उसे अवेलेबल है, वो कहाँ से अवेलेबल है, वो क्या किसी पब्लिक सिस्टम का जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो या कुछ कोऑपरेटिव के संस्थान है वो हो या फिर प्राइवेट जो कंपनीज है उनके जरिए या उस तरीके से उपलब्ध है क्या, और उसका एग्जैक्टली देखिए होता क्या है कि अभी भी ये टेंडेंसी है, और इसमें क्योंकि जब आप इनकम पैरिटी की बात करते हैं क्रॉप की, अल्टीमेटली वट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो ए बिजनेस, किसान के लिए वो एक व्यवसाय है अपने सर्वाइवल का, अपने वेलबींग का। शर्मा जी कह रहे हैं कि पंजाब में जो है आपको धान बहुत ज्यादा नहीं उगाना चाहिए, बासमती उगाना चाहिए। गैर बासमती में हाई वैल्यू क्रॉप है, गैर बासमती आप ईस्टर्न इंडिया के लिए छोड़ दीजिए, वहां बहुत पानी है। लेकिन अब क्या है कि

0: अगर वो वहां पर कॉटन ग्रो करता है, कॉटन में कम पानी चाहिए, लेकिन क्या है कि पिछले 10 साल 15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कॉटन की क्रॉप बहुत वल्नरेबल हो गई है पेस्ट एंड डिजीज के लिए। हम नई किस्में नहीं ला पा रहे हैं जो किसान को एश्योर करें कि इस बार इसको लगाइए, पानी भी बचेगा, आपकी आमदनी भी ज्यादा होगी। तो जब तक आप उसको एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देंगे फार्मर को, और उसका पहला प्रायोरिटी है मेरी आमदनी कैसे हो, जैसे मिलेट्स की बात कही है, अगर आप मिलेट ग्रो करेंगे और उसके लिए मार्केट नहीं होगा, उसके लिए प्रोक्यूरमेंट का सिस्टम नहीं होगा, हमारे जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं बड़े पैमाने पर उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, तो फिर वो मिलेट के लिए उसको दाम कैसे मिलेगा। ये मल्टीपल चीज, जैसे मैंने कहा दालों का प्रॉब्लम है बट फिर भी नहीं ग्रो कर पा रहे फार्मर्स। तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का आता है, और बहुत सारी ऐसी क्रॉप हमारी है जहां पर अभी तक हमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा है, डिस्पाइट वर्ल्ड्स मोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च सिस्टम इन एग्रीकल्चर। तो अब उसमें हमारे साइंटिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, किसान साइंटिस्ट नहीं हो सकता। दूसरे, हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है, एक्सटेंशन का जो बड़ा रोल है वो बहुत बड़ा रोल है। एक्सटेंशन सिस्टम को लगातार रिफॉर्म करने की बात हो रही है, इस बजट में भी विस्तार की बात आई है, AI की बात हम लोग कर रहे हैं कि कैसे किसानों को बेहतर, ये सारा एक्सटेंशन वर्क है, उसको कैसे एक बेहतर जानकारी उपलब्ध हो, और ये राज्यों का विषय ज्यादा है एग्रीकल्चर। तो जो राज्य सरकारें हैं उनकी भूमिका इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है, और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है या जो बाकी जो लोग हैं जो एक्सटेंशन में काम करते हैं, उनको मेरे ख्याल से ज्यादा सशक्त करने की और उनका नंबर बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तैयारियां तभी किसान समझ पाएगा। दूसरे क्या है कि जैसे हमारा रेनफेड एरिया अथॉरिटी है, वो वाटरशेड सिस्टम चलाता है, और उसके लिए एक अच्छा खासा बजट है हमारा, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें वाटरशेड के लिए। तो ये उन इलाकों के लिए है जो ये ड्राउट प्रोन इलाके हैं, जैसे आपने कहा कि अगर बारिश नहीं हुई और एक सिंचाई भी उस वक्त उसको मिल गई तो क्रॉप सर्वाइव कर जाएगी। तो वहां पर जो वाटर बॉडीज हैं या पॉन्ड्स हैं या लेक्स हैं, उनमें चेक डैम बना के और पानी को रोका जाता है, और फिर वो इक्विटेबली जो फार्मर्स है के, बहुत जगह तो क्या है कि फार्मर्स के अपने कलेक्टिव्स और यूनियंस बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, वो आपस में तय कर लेते हैं प्रायोरिटी के आधार पे कब हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो जो इस तरीके जो स्टेप्स हैं वो जिस तरह की परिस्थिति ड्राउट के टाइम पे आती है उसमें बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि आपकी फसल को एक पानी चाहिए और आपके पास ऐसा ट्यूबवेल नहीं है, बोरवेल नहीं है कि आप इमीडिएटली सिंचाई कर सके। आप छोटे किसान हैं, हमारे 89% जो फार्मर हैं वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत सीमित है। तो ऐसे में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए काम करता है। हाँ, ये है कि पिछले कुछ वर्षों में कई चीजें हुई हैं, जैसे कि सोलर पंप का हुआ है, फिर हमने माइक्रो इरिगेशन पे फोकस किया है, माइनर इरिगेशन पे फोकस किया, वो सब इस तरीके के इलाकों के लिए है। और आप जो है कि कम पानी में टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रिप है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, राजस्थान में बड़े पैमाने पर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होता है, फ्लड इरिगेशन नहीं होता हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी की तरह, क्योंकि उनको पता है कि पानी की एक एक बूंद की वैल्यू क्या है। तो ये जो चीजें हैं, ये सारा सिस्टम आपको इस तरह की परिस्थिति से लड़ने में मदद करता है। और इसमें ये भी बात है कि जैसे मैंने कहा कि किसानों को सही जानकारी, प्रशिक्षण और जो अवेलेबिलिटी है, वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हो, फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं, या बीमारी आ जाए तो जो एग्रोकेमिकल्स हैं उनकी हम बात करते हैं, और पानी, लेकिन पानी सबसे किसी भी फसल को आगे तक ले जाने के लिए, उसको तैयारी और उसके उत्पादन के लिए, वाटर इज द फर्स्ट रिसोर्स और फॉरमोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है वो पानी है।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर हम आकाशवाणी की बात करें तो आकाशवाणी की लोकप्रियता इसलिए भी है क्योंकि जहां सुविधाएं नहीं है वहां लोग आकाशवाणी को सुनते हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, जो AI के थ्रू ऐप को भी समझते हैं, मौसम वैज्ञानिक जो सूचनाएं देते हैं वो भी उन तक पहुंच रही है। जैसा कि हरवीर जी ने कहा कि 89% के आसपास छोटे किसान हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अब भी तकनीक से दूर है, वहां तक मौसम विभाग मौसम की चेतावनी जानकारी पहुंचाने के लिए क्या कुछ नए कार्यक्रम शुरू कर रहा है या किया है, उसके बारे में थोड़े हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
2: बिल्कुल, इसमें हमारे मौसम विभाग ने एक ऐप बनाया है मेघदूत। उस मेघदूत में जो है मौसम की पूर्वानुमान होता है और मौसम पे आधारित कृषि सलाह होती है। क्योंकि देखिए, दो तरह की सलाह होती है, एक होता है पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ खरीफ क्रॉप, रवि क्रॉप, कि इतनी खाद लगाना है, इतना इरीगेशन लगाना, वो एक नॉर्मल एडवाइजरी है। पर हम जो देते हैं एडवाइजरी, वो है वेदर बेस्ड एडवाइजरी, मौसम पे आधारित। यानी कि बारिश आने वाली है तो भैया इरीगेशन पोस्टपोन कर दीजिए, आपका पानी बच जाएगा, बिजली बच गई। मान लीजिए आपकी फसल में बीमारी लगी है, आपको कहते हैं स्प्रे करना है केमिकल, बारिश आने वाली है। मैं कहूँगा नहीं, अभी पोस्टपोन करिए, बारिश के बाद करना, नहीं तो आपका केमिकल बह जाएगा और आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा और वो जाके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा या आपके पॉन्ड को करेगा, फिश में जाएगा, आप फिश खाओगे, आपकी हेल्थ को कैंसर होगा, एनवायरमेंट को खराब करेगा। तो वो एक बड़ी अच्छी बात होगी। तो इसमें मेघदूत एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमारे पास वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी सारी जानकारी रहती है। और आपने कहा फोन उससे भी मिलता है, और उसमें भी आजकल ऐसा है कि आप यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुन सकते हैं उसको, वॉइस में ला सकते हैं। और उसके और इम्पोर्टेंट बड़ी चीज है कि आप हर, जैसे कि विलेज के कह लीजिए पंचायत लेवल पर कियोस्क खोल दें, जहां पे भाई एक एक्सपर्ट रहेगा, उसके पास कंप्यूटर है, वो आप कंप्यूटर पे किसान वहां चले जाएगा, वो देख के फटाफट उसको बता देगा जी मेरे यहाँ का वेदर क्या है, बता दीजिए फटाफट देख देख के, वो एक्सेस करके उसको सिंपल भाषा में बता देगा, कौन सी फसल एडवाइस करेगी वो भी बता देगा, कहाँ अच्छे दाम मिलेंगे वो भी बता देगा। तो ये जो एक्सटेंशन कियोस्क है, ये मुझे लगता है जिसे कहते हैं ना, जैसे कि एक एक सेंटर जरूर रहने चाहिए इन एरिया में, जहां पे किसान आके ये सब चीजों को वो कर ले। एक और उसके अलावा हमें और क्या करना है कि जो भी मौसम की जानकारी है और सलाह है, वो हर गांव के अंदर एक जो वहां का सरपंच होता है उसको जरूर भेजें, जीते हुए को, और एक हारा हुआ सरपंच उसको भी भेज दे, क्योंकि जीता हुआ अपने बंदों को देगा, शायद दूसरे को ना दे, तो उसको भी दे दीजिए। तो इन दो के पास पहुंच गया तो सोच लिया आपके गांव के सब लोगों को तो जानकारी पहुंच गई। तो यदि ये हम करते हैं, वेबसाइट भी है, रेडियो टीवी अखबार भी है, और साथ साथ ऐप भी है, वेबसाइट भी है, फोन भी है, और ये कियोस्क भी है, और सबसे बड़ा रोल जो है मैं आज जो मानता वो है रेडियो का। एक समय ऐसा था जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे तो रेडियो बहुत पॉपुलर था, टीवी अभी आया नहीं था, या आया भी था तो किसी के पास होता नहीं था। और फिर जब टीवी आया तो रेडियो की इंपॉर्टेंस कम हो गई, मगर मैं अब ये कह रहा हूं ये अब ये युग है जो रेडियो का युग है, कम्युनिटी रेडियो। तो छोटे छोटे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने होंगे पूरे हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बल्कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे अलाउ कर दिया है। तो कम्युनिटी रेडियो खोलिए, और रेडियो भी कैसे आ गए हैं आज की डेट में, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, बैटरी नहीं चाहिए, हैंड वाइंडिंग है, आप पीछे हैंडल लगाए 60 बार घुमाइए एक घंटा चलेगा, और उसमें टोन अलर्ट भी है, यदि मौसम विभाग ने कोई वार्निंग दी है तो वो वार्निंग भी वो टू की आवाज करेगा कि भाई इसको ऑन करना है। तो इस तरह की जो आज का आ गई, तो मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो को पॉपुलराइज कराना है, लोगों को सरकारें फ्री बांटे रेडियो इनको, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, ऑल वेदर कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका, कोई भी डिजास्टर हो उस समय भी ये रेडियो आपके काम आएंगे। तो मुझे लगता है ये सब चीजें हम करें तो हमें जो लास्ट माइल, मतलब आखिरी आदमी तक हमें पहुंचना है, वो तो एक है ही है, उसके साथ साथ है क्रूशियल माइल कनेक्टिविटी। यानी कि इस समय यदि डिले हुआ मानसून तो कहाँ हुआ, महाराष्ट्र वाले इलाके में, आसपास के इलाकों में, तो उनको पहले से सूचित करना भाई मानसून आपके यहाँ डिले है और इतने दिन का डिले होने वाला है, तो आप अभी रुक जाइए थोड़ा, एकदम स्विंग पे मत जाइए, या फिर वर्षा अभी थोड़ी सी मिली है तो कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर आया मगर इतना नहीं है कि आपको वो सर्वाइव करेगा लॉन्ग पीरियड में, आपने सोइंग तो कर दी और बाद में एक हफ्ते में उड़ गया वो मॉइस्चर, तो आपका जर्मिनेशन प्रभावित हो जाएगा। तो सोइंग रेन कब होंगी तो वो भी मौसम विभाग बताते हैं, जो हम मौसम आधारित एडवाइजरी देते हैं, व्हेन टू सो, व्हेन टू हार्वेस्ट, व्हेन टू इरिगेट, हाउ मच टू इरिगेट, व्हेन टू स्प्रे केमिकल्स, ये सारी चीजें मौसम आधारित जो कृषि सलाह दी जाती है मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय दोनों से मिलकर, वो बहुत पॉपुलर हो रही है। तो मुझे लगता है वो सरकार को इसमें पूरा जोर देना चाहिए और इस सर्विस को हमें हर किसान तक पहुंचाना है, कैसे भी पहुंचाना है, और यदि हम ये पहुंचाते हैं तो डेफिनेटली हम प्रिपेयर होंगे, किसान प्रिपेयर है, और जैसा आपने कहा एक उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करना है, एक्सटेंशन सर्विस बेहतरीन होनी चाहिए, कहाँ से फर्टिलाइजर मिलेगा, कहाँ से केमिकल मिलेगी, कहाँ से सीड मिलेगा, कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं ले जा रहा, उसको गलत बीज तो नहीं मिल रहा, कहीं वो सुनिश्चित करना होगा, और उसके प्राइस भी ऐसा करना, ये ना हो किसी वो ऐसे दुकानदार से ले जाए जो उसको 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, तो लो इंटरेस्ट पे ये सारी चीजें उन्हें मिले। और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एश्योर्ड इरिगेशन, और वो चार नहीं पांच नहीं, एटलीस्ट एक या दो भी आपके पास लाइफ सेविंग इरिगेशन होंगे तो फसल आपके निकल जाएगी।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कुछ व्यवहारिक सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। एलनीनो की बात हम कर रहे हैं, अगर एलनीनो के कारण भारत के कुछ हिस्सों में मानसून से कम वर्षा होती है तो आपकी क्या सलाह है किसानों को कि वो सिंचाई के किन वैकल्पिक माध्यमों को अपनाएं, अगर कुछ राज्यवार आप बता सकें तो।
0: देखिए, जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें राजस्थान को आप छोड़ दें, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी का बड़ा हिस्सा है, सिर्फ वेस्टर्न यूपी नहीं, अब ईस्टर्न यूपी और उधर भी कैनाल इरिगेशन है। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इरिगेशन में काम हुआ है, और हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पर बोरवेल्स जो है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो आपके सिंचाई के जो संसाधन है वो दुरुस्त हों, जब भी जरूरत हो आप उसका इस्तेमाल कर सके, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरे देखिए क्या है कि ऐसी परिस्थिति में सरकारें किसानों की मदद करती रही हैं, उसमें ये है कि क्या अगर इवन आपका जो पावर सप्लाई है उसका कंस्ट्रेंट भी है तो भी आप इरिगेशन के लिए एक्स्ट्रा पावर उपलब्ध कराते हैं और उसका एलोकेशन किया जाए, पहले से प्लानिंग करके रखना चाहिए। उसी तरीके से कई जगह जहां कमजोर किसान है

0: सरकार देखे किस तरीके से उसका उनको डिसीजन लेना है। लेकिन जब अगर बारिश कम होगी तो किसान की लागत बढ़ती है, क्योंकि उसको सिंचाई के ऊपर अधिक खर्च करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या उनको सिंचाई के लिए कुछ आर्थिक मदद स्पेशली उस टाइम के लिए दी जा सकती है? पहले भी दी जाती रही है, डीजल वगैरह के ऊपर सब्सिडी दी जाती रही है, और मेरा मानना है कि सरकार ने अब समझ लिया है और काफी कुछ निर्भर करेगा। जैसे शर्मा जी ने बताया कि मानसून का क्या होता है, कि मानसून अगर 10% कम भी रहता है, उसकी अहमियत क्या है कि उसका जो हमारा मानसून का पीरियड है जून टू सितंबर, उस पूरी अवधि में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है। अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो कोई मुश्किल नहीं है, और अगर पता लगा आपको जुलाई में बहुत बारिश हो गई, उसके बाद अगस्त में आपके पास बारिश नहीं है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी और समय के हिसाब से जो हमारा विभाग है, कृषि विभाग है या सरकारों के जो सिंचाई विभाग है और जो ये तमाम सारे इन सबको विभागों को आपस में तालमेल बैठा कर कि किसान को कहाँ जरूरत है वहाँ उसको मदद करने की जरूरत है। और किसान भी अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे अब बहुत चीजें बदली हैं, बदलाव कृषि में भी आया है, वो समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, चीजों को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं और फैसले भी बेहतर तरीके से ले सकते हैं, तो एक अच्छा तालमेल बैठा है तो इस मुश्किल को पार कर सकते हैं।
1: जी हाँ, मौसम बदलेगा, चुनौतियां आएंगी और एलनीनो जैसी महाशक्तियां हमारी तैयारियों को परखेंगी भी, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत के किसान ने कभी हारना नहीं सीखा। विज्ञान की सटीक भविष्यवाणियां और कृषि के आधुनिक तौर तरीके अगर हमारे अनुभव के साथ मिल जाएं तो सूखी मिट्टी से भी सोना उपजाया जा सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मौसम के बदलावों से डरे नहीं, बल्कि अपनी रणनीति से उसे मात दें। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए हरवीर जी आपका, आनंद जी आपका बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: हम अपने तमाम श्रोताओं से बस यही कहना चाहते हैं कि बदलते दौर में सजग रहिए, वैज्ञानिक सलाह अपनाइए और अपनी खेती को सुरक्षित बनाइए। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण

के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबाह अल खालिद अल सबाह से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। इससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्यूक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मार्टेंस को और यूक्रेन की मार्ता कोस्यूक ने जैस्मिन पॉलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: DRDO today conducted a successful flight test of Pinaka Long Range Guided Rocket LRGR at the Integrated Test Range Chandipur in Odisha. The Defence Ministry said the rocket was tested for a user-defined minimum range of 60 kilometers. The Pinaka LRGR rocket is designed by Armament Research and Development Establishment in association with High Energy Materials Research Laboratory, with support from Defence Research and Development Laboratory and Research Center, Imarat. Defense Minister Rajnath Singh has congratulated DRDO, the Indian Army and the industry on the successful flight test. The minister described it as a major milestone in indigenous design and development capability for long-range guided rockets. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said several parts of the country have received good rainfall in recent days, reducing the number of rainfall deficient districts from 262 to 178. The minister said this while chairing a high-level review meeting in New Delhi over the possible impact of El Niño. He expressed confidence that rainfall will gain further momentum during July, leading to an acceleration in Kharif sowing. Mr. Chauhan said the centre is closely monitoring the situation in Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, Uttar Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Bihar, Jharkhand, Telangana, Andhra Pradesh, Punjab, West Bengal and Odisha. Union Home Minister Amit Shah today spoke to the chief ministers of several states affected by heavy rainfall, flood-like situation and landslides, and assured them of all possible assistance from the centre. Mr. Shah spoke to Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel and Kerala Chief Minister V.D. Satishan. Speaking to reporters at the North Atlantic Treaty Organization NATO summit in Ankara, US President Trump has said he does not want to waste his time negotiating with Iran. Trump's statement comes hours after the US carried out a new round of military strikes against Iran, targeting more than 80 sites. The US said the strikes were in response to Tehran's attacks on commercial ships in the Strait of Hormuz. Announcing the operation, US Central Command said the strikes were conducted using precision guided munitions and were aimed at degrading Iran's ability to threaten international maritime commerce. The Iranian military said coastal bases and civilian facilities were struck in the provinces of Hormuzgan and Marsheher. According to the Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, strikes also hit Bandarmash Shahar, southwest Iran. IRGC said it had responded to the strikes by targeting U.S. assets in neighboring countries as sirens went off in Bahrain and Kuwait. In tennis, Ukraine's Marta Kostyuk and Czech Republic's Linda Noskova have advanced to the women's singles semifinals in Wimbledon. And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त, भारत ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान जताया कि भारत इस वर्ष 7% की वृद्धि दर के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और

भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और संघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज और रूस के उप विदेश मंत्री दिमित्री ल्यूम्स्की ने की। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। बैठक में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि ईरान के साथ युद्ध विराम अब समाप्त हो गया है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्हें संदेह जताया। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने ईरान में 80 से अधिक ठिकानों पर सैन्य हमले किए हैं। अमेरिका ने कहा कि ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि इन हमलों में सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया गया और इनका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को कमजोर करना था। उधर ईरानी सेना ने कहा कि होर्मुज़गान और शहर प्रांतों में तटीय ठिकानों और नागरिक सुविधाओं को निशाना बनाया गया। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया कि उसने जवाबी कार्रवाई में पड़ोसी देशों में मौजूद अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया। इस बीच कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 2 बैलिस्टिक मिसाइलों और 13 ड्रोन को मार गिराया। कतर ने बहरीन और कुवैत पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और दोनों देशों की संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इस बीच भारत ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इन घटनाक्रमों से क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव कम करने तथा आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। भारत ने ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार की निर्बाध आवाजाही बनाए रखने पर भी बल दिया है। साथ ही सभी पक्षों से बातचीत और कूटनीति के माध्यम से इस संकट का शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान निकालने का आग्रह किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। IMF द्वारा आज जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 6.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुमानित प्रदर्शन को निजी उपभोग और सेवा गतिविधियों में मजबूत गति का समर्थन प्राप्त है। भारत की वृद्धि वैश्विक अनुमानों से दोगुने से भी अधिक है। रिपोर्ट में इस वर्ष विश्व अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3% बताई गई है। इसमें अगले वर्ष 3.4% की वृद्धि होने की उम्मीद है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने वार्षिक ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 यानी इस वर्ष की दुनिया के सबसे अच्छे और खराब शहरों की एक सूची जारी की है। IEU ने 173 शहरों में कराची को 170वां स्थान दिया है। इस सूचकांक में कराची से भी खराब स्थिति वाले शहरों में बांग्लादेश का ढाका, सीरिया का दमिश्क और लीबिया का त्रिपोली शहर शामिल है। IEU की ये रैंकिंग वैश्विक स्तर पर शहरी जीवन की सुगमता और लचीलेपन को मापती है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त। भारत ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान जताया कि भारत इस वर्ष 7% की वृद्धि दर के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य के लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम रेणुका विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is over. India expresses deep concern over escalation of tensions in West Asia. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. And in Wimbledon tennis, Marta Kostyuk of Ukraine and Czech player Linda Nosokova enter women's single semi-finals. Prime Minister Narendra Modi arrived at Melbourne in Australia this evening on the second leg of his three-nation tour after concluding his successful visit to Indonesia. Upon arrival in Melbourne, Mr. Modi was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities Claire O'Neill. Our correspondent covering the Prime Minister's Australia visit has filed this report.
5: The air in Melbourne buzzed with immense enthusiasm today as the Indian diaspora turned out in full force to welcome Prime Minister Narendra Modi. The high-profile reception was punctuated by a magnificent cultural showcase that beautifully illustrated the deepening cross-continental friendship through the universal language of music and dance. Before the stage came alive with the performances, the Prime Minister briefly interacted with the community members, sharing warm greetings with the gathered diaspora. Following this heartfelt interaction, the evening commenced with an extraordinary symbolic

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हर सिंगार आपके लिए स्वागत करती हूं मैं कुसुम। ये बादलों के डेरे, ये रात सुहानी, पुरवैया के होठों पे है दिन की कहानी, जमी पे आसमां के मिलन का गुमा है, जिसे ढूंढते हो हाँ यही वो समा है। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म चश्मे बद्दूर से, आवाजें यशुदास और हेमंती शुक्ला की।

देखिए, कहाँ से आई बद्रा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आजकल दिल्ली के आसमान पर शिद्दत से छाए हुए हैं और बूंदें रिमझिम कर बरस रही हैं। आज जब मैं अभी आकाशवाणी आ रही थी ना, तो इन बादलों ने मुझे भी भिगो दिया। वैसे मुझे लगता है ये जो बादल है ना, ये दिल्ली से किया, धरती से किया अपना वादा निभाने के लिए आते हैं। हर साल समय पर आ जाते हैं। यही सब कुछ था, यही मौसम था जब हम तुम मिले थे। वही सब कुछ है, यही मौसम है, लेकिन तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। मौसम तो बदल कर फिर भी लौट आते हैं, लेकिन बदले हुए इंसान फिर कभी लौट कर नहीं आते। हाँ, उनकी यादें आती हैं, है ना। फिर बावरी पुरवाई चली, तुम याद आए। फिर बूंदों की पाजेब बजी, तुम याद आए। फिर कोयल बोली घर के सुने आंगन में, फिर अमृत रस की बूंद पड़ी, तुम याद आई।

ये जो बादलों की रिमझिम है ना, ये काली घटाएं, ये ठंडी हवाएं, ये फिल्मी गानों में भी खूब चली हैं, खूब बरसी हैं। एक गाना जो इस मौसम में अक्सर याद आता है वो है फिल्म श्री 420 का गाना, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहते हैं कि जब शैलेंद्र ने इस गीत का मुखड़ा संगीतकार शंकर जयकिशन को सुनाया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसके एक अंतरे पर शंकर भड़क गए। अंतरे में लिखा था, रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां। इसे सुनकर शंकर ने कहा, शैलेंद्र दिशाएं चार होती हैं, दस नहीं। फिर दोनों इसी बात पर उलझ गए, बात राज कपूर तक जा पहुंची। राज कपूर ने शंकर से कहा कि अगर दस दिशाओं वाली बात गलत हुई तो लोग शैलेंद्र को ही मूर्ख कहेंगे, इसलिए तुम्हें शैलेंद्र के काम में दखल नहीं देना चाहिए। ये गीत बना, सुपरहिट हुआ और फिर कभी किसी ने दस दिशाओं की बात पर कोई टिप्पणी नहीं की। वैसे आपको क्या लगता है, दिशाएं दस होती हैं कि चार? जो भी हो, हम इसमें क्यों उलझे, हम तो वो गीत सुनते हैं, बरसात वाला।

ये जो ख्यालों की प्यार की दुनिया होती है ना, ये बड़ी अजीब होती है। लेकिन अगर ये ना हो तो जिंदगी बेरंग हो जाए। ख्याल दिल को वहां तक ले जाते हैं जहां तक हाथ नहीं पहुंचते। ख्यालों में दिल ख्वाबों के रथ पर सवार होकर आसमान के पार पहुंच जाता है, तो कभी हवाओं के पंख लेकर चांद की आगोश में समा जाता है, और कभी कभी तो बादलों की चादर ओढ़कर महबूब से मिलने पहुंच जाता है। और तब जब कभी बारिश के फूल महकते हैं, तो कभी हवाओं में प्यार की खुशबू तैरती है, महक रही है जमीन रिमझिम की बूंदों से, यूं लगता है फिजाओं में प्यार का मौसम आया है।

दिल का क्या है, ये तो दीवाना है, पुकारे ही चला जाता है। लेकिन तुम हो कि गैरों से तो तुम्हें फुर्सत दिन रात नहीं है। हाँ, मेरे लिए ही वक्त मुलाकात नहीं है। नहीं है तो फिर ये कसमें वादे भी ना किया करो, क्योंकि जब ये टूटते हैं ना तो इनकी चुभन रूह में महसूस होती है। और फिर ये दिल कहता है, क्या कहता है इस गीत में सुनते हैं।

जो है यार, अपना उसे जीते जी तो छोड़ पाना या भूल पाना आसान तो नहीं, मगर ज़िंदगी के सफ़र में चलते चलते कई चौराहे ऐसे भी आते हैं जहाँ से दोनों की कहानी अलग अलग मोड़ ले लेती है। और फिर दिल कहता है कि तू मुझको भूलना चाहे तो भूल सकता है, मैं एक हरफे तमन्ना तेरे किताब में हूँ। ये तमन्नाएँ, आरजुएँ, इच्छाएँ हमारी ज़िंदगी को रवानी देती हैं, कुछ इस तरह। फिल्म होली आई रे का ये गीत मुकेश की आवाज़ में।

इसी के साथ ही हर सिंगार यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस चैनल पर कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबावो ने

और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Gaurav Dhawanlal with my co-anchor, Prachi Priya.
1: नमस्कार. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. श्रोताओं, आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर नजर डालेंगे और चर्चा भी करेंगे. आज चर्चा के लिए हमारे समक्ष हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक संपादक एके भट्टाचार्य. महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: नमस्कार, थैंक यू.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: थैंक यू प्राची. एकेबी, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम. A quick look at the headlines first. Benchmark domestic indices shed over 2%. Sensex falls nearly 1,700 points. Nifty settles below 23,900. Asian stock market indices end on mixed note. And global crude oil prices surge.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में 2% से अधिक की गिरावट. सेंसेक्स लगभग 1700 अंक लुढ़का. निफ्टी 23,900 के नीचे बंद हुआ. एशियाई शेयर बाजार में मिलाजुला रुझान रहा और कच्चे तेल के वैश्विक मूल्यों में आया भारी उछाल.

0: Company advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any final financial decision.
1: और श्रोताओं, आइए अब जान लेते हैं कि आज दिन के अंतराल में शेयर बाजार की चाल में कितनी लचक रही। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में आज 2% से अधिक की गिरावट आई। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, कमजोर वैश्विक संकेतों और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण बाजार में मंदी देखी गई। सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 इंडेक्स 1.5% से अधिक लुढ़का, जबकि स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 2% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले सत्र के दूसरे भाग में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ये कहने के बाद कि ईरान के साथ टकराव खत्म करने के लिए किया गया समझौता समाप्त हो चुका है और वे तेहरान के साथ कोई बातचीत नहीं करना चाहते, बाजार में मंदी आई।
0: Benchmark domestic equity indices witnessed a sharp sell-off today, with both the Sensex and the Nifty plunging more than 2%. A spike in crude oil prices, weak global cues, and renewed geopolitical tensions weighed heavily on the markets. The Sensex tumbled 1,677 points to close at 76,504. The Nifty also dipped 517 points to settle at 23,882. In the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index fell over 1.5%, while the small-cap 100 index lost more than 2.2%. Earlier, markets opened on a negative note amid geopolitical concerns. Sentiment weakened further during the latter half of the session after US President Donald Trump said that the memorandum of understanding signed with Iran to end the conflict was over, adding that he did not want to engage with Tehran.
1: सेंसेक्स में शामिल सभी 30 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में इंडिगो के शेयर 5%, मारुति के 4% से अधिक और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर लगभग 3.5% लुढ़के।
0: All 25 sectoral indices on the BSE ended in negative zone. Among the key laggards, services shed 3.2%, PSU banks as well as mid-small private banks, quality tilt, fell more than 2.7%, and FMCG lost over 2.5%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 3,211 declined, 1,070 companies advanced, and 173 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95.56 रुपए पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101.14 पर कारोबार कर रहा था। भट्टाचार्य जी, आज हमने देखा बाजार में तकरीब 2% से अधिक का जो एक स्लिप आया है, ये क्यों आया है ये तो हम आपसे जानेंगे ही, लेकिन ये आगे आने वाले समय को स्टॉक मार्केट के लिए क्या क्या इंगित करता है?
2: देखिए, जो आज जो हुआ है, जैसे आपने भी और गौरा जी ने भी जो बताया है, उसमें ये साफ लगता है कि ये जो जियोपॉलिटिकल जो कंसर्न्स जो हैं, चिंताएं जो हैं, वो जरा और भी गंभीर हो चुकी हैं, क्योंकि ट्रंप साहब के ऐलान से विश्व को ये लगता है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो सीज फायर की बहुत पहली एक बहुत इम्पोर्टेंट एक कड़ी थी, वो जरा थोड़ी बहुत वीक हो गई है और मार्केट के सभी जो सिग्नल्स हैं वो अब नेगेटिव में जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को डर ये है कि शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो थोड़ी बहुत जो जो साधारण अवस्था जो आ गई थी वो फिर वही पुरानी स्थिति में पहुंच जा सकती है, जो तेल के मार्केट लिए ठीक नहीं है। और जो देश पर्टिकुलरली जो एशिया में जो देश हैं जो तेल के आयात के ऊपर काफ़ी निर्भरशील हैं, उनके लिए ये खबर ठीक नहीं है। उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, उनकी जो उपलब्धि की जो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें बाधा पहुंचेगी। तो हर तरह से देखें तो ये स्टॉक मार्केट ना कि ये शुरुआती तो विश्व की स्टॉक मार्केट से हुई थी, और पर इसका जो प्रभाव जो है वो भारतीय स्टॉक मार्केट में भी हुई है, रुपए में हुई है, क्योंकि रुपए में जो थोड़ी बहुत अप्रिशिएट कर रहा था पिछले कई दिनों में, वो आज लगा कि काफी डिप्रिशिएट कर गया, क्योंकि भारत की जो अगर तेल का दाम अगर फिर से बढ़ना शुरू हो जाए तो हमारी जो जो डॉलर की डिमांड होगी वो सप्लाई से थोड़ा बढ़ जाएगी। तो उसी सब चीज़ को देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये वेस्ट एशिया का जो जो वातावरण जो है उसके ऊपर स्टॉक मार्केट की जो गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा निर्भरशील है। उसी लिए जो जो डोमेस्टिक मार्केट की जो स्ट्रेंथ और जो वीकनेस जो है वो आज की तारीख में इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट निर्भरशील हो चुकी है। तब भी अगर आप ये देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में अगर आप अगर अगर अगर झुक के देखें, अगर अंदर जाकर देखें, तो आपको ये लगेगा कि जो सबसे ज़्यादा जो जो समस्याएं जो आ रही हैं वो जो तेल के दामों के ऊपर ज़्यादा सेंसिटिव हैं, निर्भरशील हैं, उनकी ज़्यादा, जैसे कि इंडिगो
1: जी।
2: जैसे आपने कहा इंडिगो की शेयर मार्केट के काफ़ी नीचे आ गया, क्योंकि वो तेल तेल इस्तेमाल करती है, ETF का दाम अचानक बढ़ जाएंगी तो उसकी सारी जो प्रॉफिटेबिलिटी में ख़त्म आएगी। उसी तरह जो मिड कैप स्टॉक्स जो हैं, जो पिछले एक हफ्ते में बहुत अच्छी रिकवरी उनकी हुई है, आज उनकी पिटाई हुई है। स्मॉल कैप में उतनी ज़्यादा नहीं हुई है, लार्ज कैप में हुई है, पर लार्ज कैप में जो उनको जो संभालने की स्थिति, संभालने की जो एक एबिलिटी है वो मिड कैप में उतना नहीं है,
1: उतना नहीं है।
2: तो इसीलिए मिड कैप की जो जो रिकवरी हुई थी वो काफ़ी न्यूट्रलाइज आज के स्टॉक मार्केट में ये हमें दिखने को मिल रहा है। और मुझे जो लगता है कि अगले सप्ताह में या अगले महीनों में हम सिर्फ इसी चीज को देखते रहें, जो भारतीय कंपनियां जो हैं उनकी स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक निर्भरशील रहेगी, किस तरह से जो वैश्विक वातावरण की गति किस तरफ जा रही है।
0: So this, I like the use of the word elan that you have made. It's like a declaration only. So this statement by President Trump, which has come in, do you think it's also going to further impact the inflow and outflow of foreign funds into our market?
2: That will have a there will be some impact, but what the bigger impact will be, to what extent the Fed responds to this deepening of the tensions. Hypothetically, the inflation rate in the US is slightly elevated. Now if it is elevated, it's likely that in the next policy review, the new Fed chairman might decide to increase the rates. Now, if they do that, then it is bad news for us. So money will flow out.
0: Right.
2: Already, we are seeing that India's ranking in gross FDI has gone up, but so has India's investment abroad. So what is happening is that while India continues to get a lot of gross FDI, but when it comes to the net FDI, which matters for our external sector and the impact on the rupee, our net FDI is not doing very well. So Indians are now investing abroad to also maybe to shield and provide a little safeguard to their overall investments in a global market. So I don't think that we should worry very much on our investments, because on what's really happened in the West Asia, we should worry more how the Fed reacts to it, maybe in the next month or two.
0: Right. So this volatility is going to, of course, remain not only in Indian markets but across the world. Now, if you're saying that the outflow of Indian funds into foreign markets has also increased, and hence the gap is not so much for the retail investor, because investment also in foreign funds, there are boundaries to that, there are limits. So basically HNIs would be investing because they have the resources and probably the view also and information to invest across. But for the retail investor in India, it's highly volatile, whether it's in India or out. And they are sitting on some very good shares, which despite waiting, and you know, it's like patience is a restless bird. The valuations are going to take some time, and the rate at which they're falling, people wonder whether the valuations will ever, or the prices will ever reach their purchase price. Well, what should they do?
2: You know, this is the time of any stock market investor's journey when he cannot look at things on a day-to-day basis or on a weekly basis or even on a monthly basis. If you are a trader, if you are a punter, you are, you know, you are making your living out of trading, then it's a different matter. But if you are an investor for building your asset base for your old age or something like that, then I would say the time is not yet ripe to keep investing or disinvesting from the market. It's a very, very important time where retail investors must realize that the best safety lies in staying invested and not trying to panic or pull out your money, because this is the time when you might just get shortchanged by the sharp fluctuations in the market.
0: Right.
1: श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एशिया के बाजार की तरफ. एशियाई शेयर बाजार में आज मिला जुला रुख रहा. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 5.3% से अधिक, जापान का निकेई 2% से अधिक और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 0.5% गिरा. वहीं हांगकांग का हैंगसेंग 3%, ताइवान का ताइएक्स लगभग 0.5% से अधिक और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.5% बढ़ा. भट्टाचार्य जी, हमने पिछले ही महीने देखा कि कॉस्पी अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा था और अभी हम देख रहे हैं कि कॉस्पी में एकदम मेजर करेक्शन, 20-22% तक उसमें गिरावट देखने को मिली है. ये वैश्विक स्तर पर ये किस तरफ का इशारा है, ये क्या हमें दर्शाता है?
2: जो मैंने पहले जो कहा था
1: जी,
2: कि जो मार्केट्स तेल के आयात के ऊपर अधिक निर्भरशील हैं, उनके लिए ये दौर काफ़ी पेनफुल रहेगा. और यही आज का मार्केट, जो कॉस्पी का जो मूवमेंट करीबन 5.5% का गिरावट दर्शाता है. कोरिया कहिए, जापान कहिए, इवन चाइना जो वेस्ट एशिया के तेल के ऊपर काफ़ी निर्भरशील है
1: जी,
2: उनके लिए जो वेस्ट एशिया में जो हुआ, जो ट्रंप साहब का जैसे ऐलान जो हुआ, उससे मैं समझता हूँ कि इन देशों के लिए और भारत के लिए भी एक एक एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है. हालांकि हमारे देश में हमने जो तेल को जो हमने मैनेजमेंट करने की जो हमारी पॉलिसी है, हम ज़्यादा क्विक रिएक्शन न देकर हमने ओवरऑल मैनेजमेंट का एक सिलसिला रखा है. और ईरान के साथ भी बात कर हमारी काफ़ी जहाजें वहाँ से आ गई हैं. पर इन देशों में जो इनका इम्पैक्ट रिटेल मार्केट में या प्राइस लेवल में हुआ है, अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो उनमें ज़्यादा हुआ है. और इसीलिए स्टॉक मार्केट को भी यही चीज़ दर्शा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो जो जो एक गार्डरेल कह सकते हैं हम आप, जो सरकार ने तेल कंपनियों को और जो उपभोक्ताओं को दिया है, वो उन मार्केट में ये अवेलेबल उपलब्ध नहीं है. इसीलिए उनके स्टॉक मार्केट में जो हलचल मस्ती है वो ज़्यादा मस्ती है और हमारे स्टॉक मार्केट में रिलेटिवली कम होती है, क्योंकि इम्पैक्ट थोड़ा सीमित रहता है.
0: So even for the US market, the Fed results, the what the Fed is going to say is going to play an important role.
2: Oh yes, absolutely. I think you are absolutely right. It will have an impact. The job market is under stress, not just for the oil but also for the AI. You know what has really happened? is that in this West Asian war debate and discussion, we have almost forgotten how the world economy is going to be or has been already been impacted by the advent of artificial intelligence.

0: के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 दिनों में हुई वर्षा के कारण कई राज्यों में कम वर्षा वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 हो गई है। महोदय, हम काफी वक्त से खबरें देख रहे थे, सुर्खियों में देख रहे थे कि अलनीनो का खतरा जो है हमारे कृषि प्रधान देश पर एक मंडरा रहा था, लेकिन अब शायद स्थिति सुधरती हुई नजर आ रही है।
1: जो ओवरऑल डेफिसिट जो है
0: जी,
1: वो कम हुई है, पर एल नीनो का जो प्रकोप या प्रभाव जो हमें जो डर है, होता है, वो सिर्फ ओवरऑल डेफिसिट के ऊपर नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के ऊपर होता है। और अगर मान लीजिए एल नीनो का प्रकोप सितंबर, अगस्त सितंबर के बाद आता है, मैं समझता हूँ कि उतनी चिंताजनक बात नहीं होगी जितनी चिंताजनक बात होगी अगर उसका प्रकोप अब होता है।
0: हाँ।
1: जब हमारी रेन की बहुत जरूरी
0: सख्त जरूरत है अभी।
1: सो ओवरऑल जो 43% का जो शॉर्टफॉल था वो कम हुआ है, 10% की घटी है, पर अभी भी गैप है। और ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे देश में वो कैसा होता है, पर एल नीनो से हमें संभल के और मेजर्ड अप्रोच लेना चाहिए। और सरकार जो स्टेटमेंट जो आ रही है तो वो लग रहा है कि पूरी तरह से सचेतन है और लोगों को चेतावनी दी जा रही है जिससे कि वो ठीक तरह से इसका प्रयोग करें।
0: जी,
2: इन सम मोर न्यूज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट टू ऑस्ट्रेलिया बिगिंस टुडे, ड्राइविंग डीप इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रियलाइनमेंट्स विद अ फर्म फोकस ऑन वाइब्रेंट डायस्पोरा ब्रिजिंग बोथ नेशंस। वी हैव अ रिपोर्ट।
3: The momentum of the economic engine of the India-Australia relationships are set to be further boosted with tomorrow's high-stakes engagement. A central highlight of the Melbourne itinerary will be the high-profile India-Australia CEOs Forum, where Prime Minister Modi will meet corporate and business leaders from both hemispheres to catalyze fresh investment pipelines. Furthermore, tomorrow's highly anticipated bilateral talks with Australian Prime Minister Anthony Albanese are expected to give a massive boost to the economic ties of both nations. Akash News, Suhas Ram from Melbourne.
2: So it could be a visit that holds significance for both India and Australia in these times, anchoring each other?
1: Oh yeah, absolutely. I mean, please remember that Australia is India's fifth largest trading partner. We also have a discussion going on with the Australian government for a comprehensive economic cooperation agreement. We have lot of investment coming to India, and India also invests a lot in Australia. So therefore, it's a relationship with potential gains for both the countries. The early doubts have been ironed out and resolved. And if the Comprehensive Economic Cooperation Agreement once again gets resolved and we get into a deal, my sense is both the economies will benefit, and strategically also, since Australia is located geographically in an area which is the Indo-Pacific zone, it's a very, very important message that the globe, the world will receive if India and Australia come together with deeper economic relationship.
2: Absolutely. In crude oil prices, global crude oil prices rose more than 4% today amid renewed fears of supply disruption. Brent crude was trading over 4.6% up at $77.61 per barrel. West Texas intermediate crude was trading over 4.5% up at $73.64 per barrel when reports last came in. So this elan, this announcement that came, touched a raw nerve for crude oil, because it's really just,
1: well, you know, it is still to my mind the Brent crude oil is still in a zone that should cause us concern, but should not be seen as an alarm bell.
2: It's
1: important to keep a watch on it, build more reserves in the country, and reduce our dependence on imports, but as of now $73 is not something that is one should be alarmed, but it is cause for concern.
2: Right. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 1.3% down at 1,40,000.

0: 43,930 rupees per 10 grams, while silver was trading 2.8% down at 2,24,680 rupees per kilogram a short while ago.
1: Multi-commodity exchange mein agast anubandh wala sona 1.3% ghatkar 1,43,536 rupees prati 10 gram par karobar kar raha tha, jabki sitambar anubandh wali chandi 2.8% ludhakkar 2,24,293 rupees prati kilogram par chal rahi thi. क्या सोने और चांदी की जो कीमतें हैं, स्पेशली जो सोने की कीमतें हैं, उनमें हमें अभी और
2: देखिए सरकार ने 2-3 जो निर्णय लिए थे पिछले एक महीने में
1: जी।
2: जो कस्टम ड्यूटी का जो इंक्रीज कर दिया गया था उससे सोने के दामों में तो जरूर एक प्रभाव तो हुआ है उसी के लिए मैं, और सेकेंडली जो ग्लोबल मार्केट जो सिचुएशन जो है उस तारीख आज की तारीख में सोना या चांदी की जो लुभावनापन जो था वो थोड़ा कम आया है और इसीलिए ये दाम कम आए हैं।
1: भट्टाचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे सवालों के तमाम सवालों के जवाब देने के।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
0: A quick look at the headlines. Once again, benchmark domestic indices shed over 2%. Sensex falls nearly 1,700 points. Nifty settles below 23,900. Asian stock market indices end on mixed note. And global crude oil prices surge. That's all for today. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मन में आपके लिए स्वागत करती हूँ मैं कुसुम। पहला गीत फिल्म जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली से आवाज लता मंगेशकर की।

आपको पता है जोहरा जमी का मतलब क्या होता है? नहीं, जोहरा का अर्थ होता है वीनस प्लेनेट, यानी शुक्र ग्रह, आसमान का सबसे खूबसूरत चमकता हुआ सितारा। प्राचीन रोमन सभ्यता में वीनस को सुंदरता और खूबसूरती का प्रतीक माना गया है। जबी का अर्थ होता है माथा, तो अब से आप भी अपनी प्रियतमा को जोहरा जबी बुला सकते हैं। फिल्म होली आयरी से ये गीत मुकेश की आवाज़ में।

ये तमन्नाएं आरजुएं हमारी जिंदगी को रवानी देती हैं, इसलिए जिंदगी में तमन्नाओं का होना बहुत जरूरी है। ये और बात है कि अक्सर ये तमन्नाएं पूरी नहीं होती, लेकिन जिंदगी के हर मरहले में ये किसी न किसी तरह मौजूद जरूर रहती हैं। और जब कभी ये तमन्नाएं पूरी होती हैं ना, तो दिल गुनगुना उठता है। क्या ये गीत फिल्म हाथी मेरे साथी से।

0: इसी गीत के साथ ही गीत मेरे मन मीत यहीं तक। कुसुम को दीजिए इजाजत, आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। फिलहाल इस चैनल पर अब आपके लिए है समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। श्री मोदी ने ये भी कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, साथ ही वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। भारत और रूस ने संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक

0: के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफगानिस्तान के कृषि, सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्ला ओमारी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने कृषि, सिंचाई, पशुपालन, कृषि अनुसंधान, शिक्षा, क्षमता निर्माण और कृषि व्यापार में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। भारत और म्यांमार ने सीमा सुरक्षा और द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में संपन्न हुए दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, साइबर अपराध और अन्य संगठित अपराधों से मिलकर निपटने पर चर्चा की। बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व गृह सचिव गोविंद मोहन ने किया, जबकि म्यांमार के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय के उप मंत्री मेजर जनरल मिंथू ने किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में निलिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्यूक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्यूक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi arrived in Melbourne, Australia yesterday on the second leg of his three-nation visit. He was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities Claire O'Neill upon his arrival. The Prime Minister said this visit will add vigour to the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. In a social media post, Mr. Modi said that he looked forward to the talks with his Australian counterpart Anthony Albanese. The Prime Minister said that he will also have the opportunity to interact with the Indian diaspora, which is an important pillar of India-Australia partnership. During his visit, Mr. Modi will participate in the third India-Australia Annual Summit. He will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both countries. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar yesterday called on Crown Prince Sheikh Sabah Al Khaled Al Sabah of Kuwait. In a social media post, the minister shared that he conveyed the greetings of Prime Minister Narendra Modi to the Crown Prince. Dr. Jaishankar appreciated the Crown Prince's commitment to take forward the bilateral cooperation of India and Kuwait. The External Affairs Minister also called on Prime Minister of Kuwait Sheikh Ahmed Abdullah Al Ahmed Al Sabah. Dr. Jaishankar thanked him for support to the Indian community's welfare and well-being. In a social media post, the External Affairs Minister welcomed the vision of Mr. Al Sabah for stronger and mutually beneficial India-Kuwait cooperation. Dr. Jaishankar also met Defence Minister Abdullah Ali Abdullah Al Saleem Al Sabah. The External Affairs Minister spoke about defence industry cooperation and maritime security. India and Russia yesterday reaffirmed their commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora, including at the UN, BRICS, EAG and SCO. The Ministry of External Affairs said that the 14th meeting of the India-Russia Joint Working Group on Counter-Terrorism was held in New Delhi. Secretary West, Ministry of External Affairs, C.B. George and Deputy Foreign Minister of Russia, Dmitry Lubinsky, co-chaired the meeting. Both sides condemned terrorism in all its forms and manifestation, including cross-border terrorism, and called for concerted action against terrorists, terrorist groups, and their proxies and affiliates. The Defence Research and Development Organisation, DRDO, yesterday conducted a successful flight test of Pinaka Long Range Guided Rocket, LRGR, at the Integrated Test Range, Chandipur in Odisha. The Defence Ministry said the rocket was tested for a user-defined minimum range of 60 kilometres. The Pinaka LRGR rocket is designed by Armament Research and Development Establishment in association with High Energy Materials Research.

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूँ राखी आपके साथ।

जमीन आसमान फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर की आवाज में अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। इस मौसम में मौसम के सिवा और क्या बात हो सकती है। और सच भी तो है, जब बादल आसमान पर अपनी चादर बिछा दे

ठंडी हवाएं खिड़कियों को सहला जाएं और बारिश की बूंदें अपनी मधुर ताल छेड़ दें, तब हर बातचीत का विषय भी यही मौसम बन जाता है। खिड़की के पास बैठकर दूर तक फैली हरियाली को निहारना और साथ में पुराने सुरीले गीत, बस यही तो है सुकून का दूसरा नाम।

लवर्स फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। मौसम की अपनी एक अलग ही जुबान होती है। कभी ये रिमझिम फुहारों में मुस्कुराता है, कभी ठंडी हवाओं में कोई भूली बिसरी याद जगा देता है, तो कभी बादलों की गड़गड़ाहट के बीच दिल की खामोशी में सुनाई देने लगती है।

तेरी कसम फिल्म का गाना आपने सुना अमित कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

वक्त हुआ है 12:31 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से आपने गाना सुना अनवर और सुलक्षणा पंडित की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। ऐसे लवली लवली मौसम में दिल भी कुछ हल्का हल्का हो जाता है, होठ अनायास गुनगुनाने लगते हैं, चाय की हर चुस्की सुकून का एहसास देती है और पुराने सदाबहार गीत यादों की खिड़कियां खोल देते हैं। हर धुन जैसे बारिश की बूंद बनकर मन की धरती को भिगो जाती है।

बाबू फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। कुछ मौसम सिर्फ बदलते नहीं, एहसास भी बदल देते हैं। हवा का हर झोंका जैसे कोई प्यारा सा पैगाम लेकर आता है। बादलों की हर आहट दिल की धड़कनों में एक नई लय जगा देती है और रिमझिम बरसती बूंदें मानो जिंदगी की भागदौड़ को कुछ पल के लिए थाम लेना चाहती हैं।

सत्ते पे सत्ता फिल्म का गाना आपने सुना, आशा भोसले और दिलराज कौर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। कुछ मौसम मंजिल से ज्यादा सफर को खूबसूरत बना देते हैं। ठंडी हवाएं चेहरे को छूकर गुजरती हैं, बादल आसमान पर अपनी कहानी लिखते हैं और हर मोड़ पर लगता है जैसे कोई नया नज़ारा हमारा इंतज़ार कर रहा हो। ऐसे मौसम में कदम अपने आप धीमे हो जाते हैं, रास्ते अनजाने ज़रूर होते हैं लेकिन डर बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि हर मोड़ एक नई मुस्कान, एक नया एहसास और एक नई याद अपने साथ लेकर आता है।

बरसात की एक रात फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। वक्त हुआ है 12:55 और ठीक 56 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। श्री मोदी ने ये भी कहा कि यात्रा के दौरान उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, साथ ही वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। भारत और रूस ने संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और संघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद को भी की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। नई दिल्ली में

कृषि नेतृत्व सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, पीएम किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि ऋण और उर्वरक सब्सिडी जैसी योजनाओं से किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफगानिस्तान के कृषि, सिंचाई और पशु

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 59 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम है गीत सुहानी। मैं हूं राखी आपके साथ।

बरसात फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। बरसात एक ऐसा मौसम जिसने बॉलीवुड के गीतकारों और संगीतकारों को हमेशा से प्रेरित किया है। इस भीगी रुत पर हिंदी सिनेमा में अनगिनत गीत रचे गए। कभी रिमझिम पुहारों में प्यार की खुशबू घुली, तो कभी बरसती बूंदों ने बिछड़ने का दर्द बयान किया। कहीं सावन ने दिलों को मिलाया, तो कहीं बारिश ने यादों को और भी गहरा कर दिया। सच्ची तो है, बॉलीवुड में बरसात पर लिखे गए गीतों की दुनिया जितनी विशाल है, उतनी ही दिलकश भी।

चलती का नाम गाड़ी फिल्म से आपने गाना सुना किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। बरसात, ये सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि एहसासों का सबसे खूबसूरत नाम है। जब आसमान से गिरती बूंदें धरती को छूती हैं तो जैसे हर ओर एक नई धुन, एक नई खुशबू और एक नया जादू बिखर जाता है। शायद यही वजह है कि बॉलीवुड ने भी इस मौसम को हमेशा खुले दिल से अपनाया है। वैसे यही कारण है कि जब भी बारिश की पहली बूंद गिरती है तभी अचानक से कोई ना कोई फिल्मी नगमा होठों पर आ जाता है। कभी मन झूम उठता है, कभी दिल यादों की गलियों में निकल पड़ता है, तो कभी कोई मधुर धुन इस मौसम को और भी हसीन बना देती है।

काला बाजार फिल्म का गाना आपने सुना, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात और साथ लाई भीगी भीगी यादें, महकती हवाएं और दिल को छू लेने वाले एहसास। बारिश का मौसम जब भी दस्तक देता है तो प्रकृति का हर रंग जैसे और भी निखर उठता है। ऐसे ही मनभावन मौसम को सुरों में पिरोता ये खूबसूरत नगमा जो अभी आपने सुना, वाकई रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात।

परख फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। बारिश की भीनी भीनी खुशबू, पत्तों पर ठहरी ओस, मिट्टी की सौंधी महक और मन को छू लेने वाली ठंडी हवाएं, जैसे प्रकृति ने चारों ओर संगीत बिखेर दिया हो। ऐसे ही सुरमय और मनमोहक मौसम का एहसास कराता है ये प्यारा गीत जो अभी आपने सुना। इसकी धुन और बोल बरसात की हर बूंद को एक मधुर एहसास में बदल देते हैं।

श्री 420 फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

वक्त हुआ है 1:33 और ठीक 4 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

उसने कहा था फिल्म से आपने ये गाना सुना, तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। बारिश बारिश और ये प्यारे प्यारे तराने कानों में रस खोलते, दिल में उमंग जगाते, ये प्यारे प्यारे तराने।

चोरी चोरी फिल्म से आपने गाना सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में। बरसात का जिक्र हो और हिंदी फिल्म संगीत की बात ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। कभी भीगी सड़कों पर प्रेम ने दस्तक दी थी तो कभी सावन की फुहारों ने बिछड़ने की टीस को सुरों में ढाल दिया था। 50 और 60 के दशक में रचे गए बरसाती नगमे आज भी उतने ही ताजा लगते हैं, मानो हर बारिश के साथ फिर से जन्म ले लेते हों।

बरसात की रात फिल्म से आपने ये गाना सुना। इसे गाया मोहम्मद रफ़ी ने, इसको लिखा साहिर ने और संगीत दिया रोशन ने। कुछ बारिशें सिर्फ मौसम नहीं बदलती बल्कि जिंदगी भर के लिए याद बन जाती हैं। कभी भीगी हुई राहें, कभी ठंडी हवाएं, तो कभी किसी अपने का साथ। बरसात अनगिनत लम्हों को हमेशा के लिए दिल में बसा देती है।

कश्मीर की कली फिल्म का गाना आपने सुना रफ़ी और आशा की आवाज़ में। SH बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया OP नैयर ने। जब दिल में मोहब्बत की पहली दस्तक सुनाई देती है तो हर बादल दीवाना लगता है, हर फिजा गुनगुनाने लगती है और हर मौसम में एक नई ताजगी उतर आती है।

नौजवान फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। वक्त हुआ है 1:56 और ठीक 42 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में सुनिए समाचार। ठीक आप 2 बजे सुनेंगे समाचार और 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। श्री मोदी ने ये भी कहा कि यात्रा के दौरान उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने हेतु शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों की उनकी उपज को उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। पाकिस्तान के कराची तट से 12 घंटे पहले लापता हुए बोइंग कार्गो विमान का मलबा गहरे समुद्र में पाकिस्तानी बचाव दल को मिल गया है। विमान

सवार पांच चालक दल के सदस्यों की तलाश जारी है। पाकिस्तान हवाई अड्डा प्राधिकरण ने बताया कि K2 एयरवेज के कार्गो बोइंग 737 विमान कमलबा ओरमारा बंदरगाह से 53 समुद्री मील दक्षिण में बरामद किया गया। फ्लाइट ट्रैकिंग सेवा फ्लाइट रडार 24 के अनुसार विमान कराची के दक्षिण पश्चिम में समुद्र में कई बार ऊंचाई में अचानक बदलाव के बाद तेजी से नीचे उतरने के कारण

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 56 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूँ राखी आपके साथ। रात सुरमई हो तो हर एहसास जैसे और भी गहरा हो जाता है। चांदनी की हल्की हल्की रोशनी, ठंडी हवा के झोंके और दूर कहीं बजते पुराने गीत, ये सब मिलकर मन को एक अलग ही सुकून दे जाते हैं।

कुछ गीत समय के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि हर बार सुनने पर नए लगते हैं। ये भी एक ऐसा ही सदाबहार नगमा है, जिसमें प्रेम की मासूमियत, साथ निभाने का विश्वास और जीवन के सफर की मधुर लय सुनाई देती है। गाइड फिल्म का गाना अभी आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

गैम्बलर फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। इसे लिखा कवि नीरज ने और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। प्रेम की तड़प, समर्पण और इंतजार की गहरी भावना झलकती है इस गीत में। ये एहसास दिलाता है कि जब कोई अपने प्रिय के बिना अधूरा महसूस करता है तो उसका मन उसी के स्नेह और साथ की प्यास से भरा रहता है।

अभिनेत्री फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: वक्त हुआ है 2:28 और ठीक 26 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: कैसे कहें हम प्यार ने हमको क्या क्या

0: सुमत हमसे खुद से हम।
1: शर्मीली फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। इसे लिखा कवि नीरज ने और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। प्रेम कभी मुस्कान देता है, कभी इंतजार, कभी सपनों को रंग देता है तो कभी यादों की हल्की सी कसक छोड़ जाता है। ये एहसास इंसान को बदल भी देता है और सवार भी देता है। शायद इसलिए कहा गया है कि प्यार अपने रास्ते खुद चुनता है और अपनी ही तरह जीवन को नए रंग दिखाता है।

तेरे मेरे सपने फिल्म से आपने गाना सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। कवि नीरज ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। जिंदगी की सबसे खूबसूरत खुशियां अक्सर बिना दस्तक दिए चली आती हैं, जब प्रेम अपने साथ नए सपने, नई उम्मीदें और नई किलकारियां लेकर आता है तो सचमुच लगता है जैसे जीवन की बगिया महक उठी है।

अभिमान फिल्म का गाना आपने सुना, रफ़ी और लता की आवाज़ में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया एस डी बर्मन ने।

वक्त हुआ है 2:43 और ठीक 49 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुरमई रात की खामोशी में जब कोई धुन गुनगुनाती है, हर भूली बिसरी याद मुस्कुराते हुए लौट आती है।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: कहिए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ।

अमर प्रेम फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। हर बीतता पल उम्मीद को थोड़ा और गहरा कर देता है और हर आहट पर दिल यही सोचता है कि शायद अब वो आ जाएं। रहना बीती जाए शाम ना आए, ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि उस बेचैनी और विरह का स्वर है जो प्रेम में इंतजार करने वाला हर दिल कभी न कभी महसूस करता है।

सफर फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। वक्त हुआ है 2:55 और ठीक 5 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही फिरोज आलम के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनेल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने हेतु शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अगरतला में त्रिपुरा व्यापार सम्मेलन 2026 में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंधिया पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश, संपर्क, रसद और औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की कार्ययोजना की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को उजागर करना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा है कि सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश, व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा स्थानीय उद्योगों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों से जोड़ना है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। पाकिस्तान के कराची तट से 12 घंटे पहले लापता हुए बोइंग कार्गो विमान का मलबा गहरे समुद्र में पाकिस्तानी बचाव दल को मिल गया है। विमान में सवार 5 चालक दल के सदस्यों की तलाश जारी है। पाकिस्तान हवाई अड्डा प्राधिकरण ने बताया कि K2 एयरवेज के कार्गो बोइंग 737 विमान का मलबा ओरमारा बंदरगाह से 53 समुद्री मील दक्षिण में बरामद किया गया। फ्लाइट ट्रैकिंग सेवा के अनुसार विमान कराची के दक्षिण पश्चिम में समुद्र में कई बार ऊंचाई में अचानक बदलाव के बाद तेजी से नीचे उतरने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अलशारा को पत्र लिखकर बताया है कि उन्होंने सीरिया को आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की अमेरिकी सूची से हटाने का फैसला किया है। ट्रंप ने कहा कि इससे सीरिया की पुनर्निर्माण का रास्ता खुलेगा और अमेरिकी कंपनियां वहां निवेश के लिए तैयार है। इस फैसले को लागू होने से पहले अमेरिकी कांग्रेस 45 दिनों तक इसकी समीक्षा करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 3:11 और 13 सेकंड। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। दोस्तों, रात के इस तन्हाई में हम और आप मिलकर चलेंगे एक बेहद खूबसूरत सफर पर, प्यार मोहब्बत के उन गुजरे दौर के उन दिनों को हम याद करेंगे, सुनहरे दौर के उन नगमों को लेकर हम आपके खिदमत में हाजिर हैं। ये वो दौर है जहां पर इमोशन भी है, मोहब्बत भी है, तकरार भी है और कुछ अनोखी कहानियां भी हैं। तो गोल्डन एरा के उन रोमांटिक और सदाबहार बेहद खूबसूरत गीतों के साथ हम हाजिर हैं और आज के इस सफर का आगाज करेंगे मौसम की नज़ाकत को देखते हुए ऐसे ही एक बेहद खूबसूरत नगमे के साथ। और वो नगमा है 1959 में आई फिल्म दिल देके देखो से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी की। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत है उषा खन्ना का।

मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में यह नगमा था फिल्म दिल देखे धोखों से। यह नगमा था 1959 की फिल्म से और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा था उषा खन्ना जी ने और गीत लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों कहते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में कई बार एक ऐसे मौके आते हैं जब इंसान अपनी तमाम मुश्किलात तमाम परेशानियों को दूर कर प्यार मोहब्बत की दुनिया में कदम बढ़ाता है और वह कदम कई बार इतने आगे चले जाते हैं कि फिर वापस मुड़ना मुश्किल होता है। हालांकि दूसरी तरफ से अगर वैसी बात ना हो तो फिर ये परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा है इस खूबसूरत गीत के संगीत के सफ़र में जिसका नाम है हमराही। और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल में मैं हूँ आपके साथ फिरोज़। और अगला नगमा एक ऐसा ही है मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ों में एक बार फिर से इन दोनों महान गायकों की जुगलबंदी इस गीत को और भी ख़ास बना देती है। तो आइए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा नगमा फिल्म मेरे सनम से। और ये फिल्म आई थी 1965 में। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में विश्वजीत, आशा पारेख, मुमताज और प्राण वगैरह थे। इस फिल्म के गीतों को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है हम सब के प्यारे, हम सब के चहेते ओपी नैयर साहब ने।

आशा जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों में यह नगमा था फिल्म मेरे सनम से, और यह फिल्म आई थी 1965 में। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल से जी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की, और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल में हम और आप मिलकर चल रहे हैं एक बेहद खूबसूरत सुनहरे दौर के नगमों के इस सफ़र पर, और मैं हूँ आपका हमराही फिरोज़। तो आइए इस सफ़र को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं एक और बेहद खूबसूरत नगमे के साथ। एक बार फिर से मोहम्मद रफ़ी साहब, लेकिन इस बार उनके साथ हैं लता जी। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है रोशन साहब ने, और ये नगमा है 1963 की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म ताजमहल से। एम सादिक के निर्देशन में बनी इस फिल्म में बेहद खूबसूरत अभिनय किया था इन तमाम कलाकारों ने। प्रदीप कुमार, मुमताज, जहांगीर के रूप में रहमान, जीवन, वीना नूरजहां, जबीन और अन्य कलाकारों ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपको सुनवाते हैं रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा है और रोशन साहब का संगीत है। जो वादा किया है निभाना तो पड़ेगा। आपने भी प्यार और मोहब्बत में इस तरह के वादे ज़रूर किए होंगे।

एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 3:33:20 और यह महफिल है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की, और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब एक बार फिर से। दोस्तों, कभी आपने ऐसा सोचा है या कभी ऐसा हुआ है कि आप जहां भी जाएं किसी की याद, किसी की शरारत या किसी का ख्याल आपका पीछा ही ना छोड़े? बस इसी खूबसूरत एहसास को बड़े ही दिलकश अंदाज में पेश करता है हमारा अगला यह नगमा, और यह नगमा है बहुत ही खूबसूरत फिल्म जो 1963 में आई थी, चोरी चोरी। फिल्म चोरी चोरी का ये मशहूर नगमा है जहां मैं जाती हूं, उसके बोल लिखे हैं मशहूर गीतकार शैलेंद्र साहब ने, और जिनके अल्फाज सीधे दिल में उतर जाते हैं, और जब इन अल्फाज को अपनी जादुई आवाजों से सजाए लता जी और मन्ना डे साहब, तो हर सुर एक नई मुस्कुराहट बिखेर देता है। तो आइए इसी बेहद खूबसूरत नगमे के साथ हम आगे बढ़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और इसको संगीत से सजाया है हम सबके प्यारे शंकर जयकिशन साहब ने।

ये रघुवता फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से। आवाजें थी लता जी, गीता दत्त, मुकेश, मन्ना डे साहब, महेंद्र कपूर वगैरह। और ये फिल्म आई थी 1960 में, और इस गीत को लिखा था शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन साहब की जोड़ी ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमराही की इस दिलकश महफिल में, और आज मैं हूं आपका हमराही फिरोज। दोस्तों, कहते हैं कि मोहब्बत की दुनिया में कुछ इजहार शब्दों से नहीं बल्कि नजरों से होते हैं और कुछ सुरों से होते हैं। जब दिल अपने जज्बात बयान करता है तो हर धुन एक नई दास्तान बन जाती है। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा आज की इस महफिल में हम आपके लिए लेकर आए हैं, फिल्म आई मिलन की बेला से। ये फिल्म आई थी 1964 में, और उसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है। उसके दिल को छू लेने वाले बोल लिखे हैं शैलेंद्र साहब ने, और इसकी मनमोहक धुन तैयार की है संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन साहब की। इस गीत को अपनी जादुई आवाज़ों से अमर बना दिया है मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी ने।

दोनों की बहुत ही मधुर जुगलबंदी इस गीत को सुनने वालों के दिल में हमेशा के लिए बस जगह बना देती है। तो आइए इस सफर को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत ये नगमा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

ओ सनम तेरे हो गए हम, फिल्म आई मिलन की बेला गाया नगमा था रफी साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गोल्डन एरा के उन रोमांटिक और बेहद खूबसूरत युगल गीतों के साथ हम हाजिर हैं जो क्लासिक नगमे हैं वो आपकी खिदमत में हम आपके लिए लेकर आए हैं। और दोस्तों कहते हैं कि मोहब्बत की सबसे दिलचस्प बात शायद यही है कि कभी कभी दिल की बातें अल्फाज से नहीं बल्कि सिर्फ एक मुस्कान, एक नज़र और एक कुछ खामोश इशारों से समझ में आ जाती है। हमारा अगला जो नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं वो भी कुछ ऐसा ही प्यार की खूबसूरती को बयान करता है और ये नगमा है फिल्म कश्मीर की कली से। ये फिल्म आई थी 1964 में और इस गीत को लिखा है SH बिहारी ने और अपनी यादगार धुनों से सजाया है OP नैयर साहब ने। इस गीत में अपनी मधुर और दिलनशी आवाजों का जादू बिखेरा है आशा भोसले जी और मोहम्मद रफ़ी साहब ने। तो इन दोनों की बेहद खूबसूरत आवाज़ें आपके खिदमत में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल

फिल्म कश्मीर की कली के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज़ को अब दीजिए इजाज़त। हमराही से अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूँगा ठीक 4:10 पर लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: रिपोर्ट। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, साथ ही वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने हेतु शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अगरतला में त्रिपुरा व्यापार सम्मेलन 2026 में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंधिया पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश, संपर्क, रसद और औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की कार्य योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश, व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा स्थानीय उद्योगों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों से जोड़ना है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। अमरीकी सेना ने कहा है कि वे ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। यह हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी हमलों से युद्धविराम समाप्त हो गया है और अमरीका जरूरत पड़ने पर और कार्रवाई करेगा। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा तनाव से बड़े युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इस बीच ईरानी मीडिया ने देश के दक्षिणी तटीय शहरों में कई विस्फोटों की खबर दी है। हालात को देखते हुए क्षेत्र में तनाव लगातार बना हुआ है। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की अंडर 23 महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 पदक पक्के कर लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11 और 5 सेकंड और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा का। और अरुणिमा के इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी हर दिन हमें कुछ नया सिखाती है, कभी खुशियों की धूप मिलती है तो कभी मुश्किलों की छांव, लेकिन हर अनुभव हर तजर्बा हमारे सफ़र को और भी खूबसूरत बना देता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि ज़िंदगी को सिर्फ समझना नहीं बल्कि जीना भी ज़रूरी है, और ज़िंदगी को जीने के लिए सब कुछ सकारात्मक होना बहुत ही अहम है। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसी नगमे से आज के इस सफर का आगाज करेंगे आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और यह नगमा है फिल्म जागते रहो से। फिल्म जागते रहो का ये यादगार नगमा जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है सलील चौधरी ने। आवाजें मुकेश साहब की, और ये ऐसी आवाज है जो दिल को सुकून देने वाली है और हमेशा आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करने वाली ये आवाज है। ये गीत हमें याद दिलाता है कि हिंदी सिनेमा में ये गीत बहुत ही मशहूर हुआ था। ये गीत हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में हर लम्हा हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसलिए छोटी छोटी खुशियों की कदर कीजिए, अपनों के साथ बिताए वक्त को सजोएं और हर नए दिन का इस्तकबाल मुस्कुरा कर कीजिए, यही तो ज़िंदगी की असली खूबसूरती है।

0: सच है क्या सब सच।
1: जी हाँ, जिंदगी ख्वाब है और ख्वाब में झूठ क्या सच क्या। जिंदगी बेहद खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है और इस जिंदगी को हमेशा हंसकर गुजारना हम सब की जिम्मेदारी है। और जब कोई ख़ास आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो फिर ये ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है। कहते हैं कि ज़िंदगी की भाग दौड़ में हम अक्सर बड़ी बड़ी खुशियों की तलाश करते रहते हैं, जबकि सुकून तो कई बार छोटे छोटे लम्हों में छिपा होता है। किसी अपने का साथ, भरोसे का एहसास और दिल से निकली एक मुस्कान, यही पल जिंदगी को खूबसूरत बना देते हैं। इसी प्यार जज्बे को अपने सुरों में समेटे हुए हैं ये बेहद खूबसूरत नगमा फिल्म वक्त से। आवाजें हैं आशा जी और महेंद्र कपूर साहब की।

हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। वक्त फिल्म का ये नगमा आशा जी और महेंद्र कपूर साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और ये महफिल है आपकी अपनी पसंदीदा अरुणिमा की। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी भी कितनी दिलचस्प है ना, कभी सीधी राह पर चलाती है तो कभी किसी मोड़ पर नई सीख नई उम्मीद दे जाती है। नए लोग और नई उम्मीदों से मुलाकात करने पर हमें कुछ अलग ही अनुभव होता है, इसलिए हर मोड़ को मुस्कुराकर अपनाइए, क्योंकि कौन सा लम्हा आपके जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन जाए कोई नहीं जानता। इन्हीं एहसासात को बेहद खूबसूरती से बयान करता है फिल्म मेरे हमसफर का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा, और ये फिल्म आई थी 1970 में। इस नगमे को अपनी बहुत ही मधुर आवाजों से सजाया है मुकेश और लता जी ने। इसके बेहद खूबसूरत बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी भाई ने। तो आज के इस खूबसूरत सफर को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अगर आज की राह थोड़ी मुश्किल है तो मायूस बिल्कुल ना हो। हर सफर में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहां से नई मंजिलें दिखाई देती हैं। बस हौसला बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि उम्मीद हमेशा आगे बढ़ने की वजह देती है। और जब ऐसा नगमा हो किसी राह में किसी मोड़ पर, हमें यूं न जाना छोड़कर, मेरे हम सफ़र मेरे हम सफ़र। बहुत ही खूबसूरत यह नगमा, जब इसको आप सुनेंगे इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको उस दर्द का, उस प्यार का, उस मोहब्बत का एहसास होने लगेगा।

किसी राह में किसी मोड़ पर यूं ही चलने देना छोड़कर मेरे हम सफ़र। लता जी की आवाज़ में और साथ ही थे मुकेश साहब, बेहद खूबसूरत ये नगमा फिल्म मेरे हम सफ़र से। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अरुणिमा की इस दिलकश महफिल में। जिंदगी एक ऐसा सफ़र है जहाँ हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। कुछ लोग रास्ते में मिलते हैं, कुछ यादें हमेशा के लिए साथ रह जाती हैं और कुछ पल सिर्फ हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए आते हैं। इसलिए गुजरे हुए लम्हों पर अफसोस करने से ज़्यादा आज को खूबसूरत बनाना ज़रूरी है। इसी गहरे एहसास को अपने अल्फाज और सुरों में डालता है फिल्म आपकी कसम का ये बेहद खूबसूरत नगमा। ये फिल्म आई थी 1974 में। इस अमर नगमे को अपनी दिलकश आवाज से सजाया है किशोर कुमार साहब ने और इसे लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है राहुल देव बर्मन साहब ने। दोस्तों, हमें हमेशा यह लगता है कि कोई तो हो हमारी जिंदगी में जो हमें आगे लेकर के जाए, यही उम्मीद होती है। जिंदगी में हर मुलाकात की कदर कीजिए, हर रिश्ते को मोहब्बत से निभाइए और हर दिन का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि वक्त आगे बढ़ता रहता है लेकिन अच्छे रिश्ते और प्यारी यादें उम्र भर दिल को रोशन करती रहती हैं। तो आइए ऐसे ही नगमे के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अरुणिमा की इस महफिल में। किशोर कुमार साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ में ये नगमा है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा इस महफिल में जिसका नाम है अरुणिमा। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 4:40 और 32 सेकेंड। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी की खूबसूरती कई बार बड़ी चीजों में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे पलों में छिपी होती है जो दिल को सुकून दे जाते हैं और एक अलग एहसास जगा जाते हैं। किसी अपने की मुस्कान, किसी खास इंसान का साथ और एक प्यारा सा एहसास, यही तो वो पल हैं जो आम वक्त को, आम दिनों को भी यादगार बना देते हैं। इसी खूबसूरत एहसास को बयान करता है अगला ये बेहद खूबसूरत कलाम। कहते हैं खुशियां हमेशा किसी बड़ी मंजिल के बाद नहीं मिलती, कभी कभी वो हमारे साथ चल रहे लोगों और उन अनमोल लम्हों में मिलती हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। रिश्तों की कद्र कीजिए क्योंकि यही यादें जिंदगी को खास और खूबसूरत बना देती है। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत गजल है, एक बेहद खूबसूरत ये गजल है जो है फिल्म साथ साथ से, और ये फिल्म आई थी 1982 में। आवाजें हैं हम सब के चाहे थे जनाब जगजीत सिंह साहब और चित्रा सिंह की। इस गजल को लिखा है जावेद अख्तर साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है कुलदीप सिंह ने। तो आइए इस सफर को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और इस दिलकश एहसास का लुत्फ उठाते हैं।

तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जगजीत सिंह साहब की बेहद खूबसूरत आवाजों में ये नगमा था, बल्कि ये एक गजल थी फिल्म साथ साथ से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अरुणिमा की इस दिलकश महफिल में जिंदगी में कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ कम नहीं होते, बल्कि हमें धैर्य, उम्मीद और रिश्तों की अहमियत सिखाते हैं। कभी किसी अपने की याद, कभी किसी सपने के पूरा होने की चाह, यही छोटे छोटे एहसासात हमारी जिंदगी को एक खूबसूरत कहानी बना देते हैं। इसी गहरे जज्बात को अपने मधुर धुन और दिल को छू लेने वाले अल्फाज में पेश करता है अगला ये बेहद खूबसूरत कलाम एतबार फिल्म से, और ये फिल्म आई थी 1985 में। एतबार फिल्म का ये बेहद खूबसूरत कलाम, बहुत ही प्यारी ये गजल। उम्मीद इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। कुछ मंजिलें देर से मिलती हैं, लेकिन जो लोग सब्र और हौसले के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके लिए हर इंतज़ार एक नई उम्मीद बन जाती है, एक नई सीख बन जाती है। तो आइए इसी बेहद खूबसूरत गज़ल के साथ हम आगे बढ़ते हैं भूपेंद्र सिंह और आशा जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में, जिसे लिखा है हसन कमाल साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से इसको संवारा है, मौसीकी से संवारा है बप्पे लहरी साहब ने।

किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। भूपेंद्र और आशा जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में ये गज़ल थी फिल्म एतबार से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपको कैसा लग रहा है हमारा ये प्रोग्राम, हमें ज़रूर बताइएगा अपने पैगामात के ज़रिए और अपने ईमेल के ज़रिए। उसके लिए हमारा ईमेल आईडी है fmgold@gmail.com fmgold@gmail.com। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी की खूबसूरती सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में नहीं बल्कि

फिल्म सफ़र के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज़ को अब दीजिए इजाज़त। अरुणिमा से आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूँगा लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने के लिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन उड़ीसा दीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुदरा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अगरतला में त्रिपुरा व्यापार सम्मेलन 2026 में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंधिया पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश, संपर्क, रसद और औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की कार्य योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को उजागर करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है और शेष कार्य तेजी से चल रहा है। राजस्थान के कोटा में श्री गडकरी ने एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अगले 2 वर्षों में दिल्ली से मुंबई के नरीमन प्वाइंट और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक की यात्रा केवल 12 घंटे में पूरी की जा सकेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत राज्य में 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा की खरीद की जाएगी, जिसमें 87,000 मीट्रिक टन मिलिंग खोपरा और 226 मीट्रिक टन बाल खोपरा शामिल है। खोपरा की पूरी खरीद मूल्य समर्थन योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर की जाएगी। स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1,000 करोड़ रूपये से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने CSIR UGC नेट जून 2026 परीक्षा के लिए अग्रिम शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.nic.in से अपनी पर्ची डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। अमरीकी सेना ने कहा है कि वह ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी हमलों से युद्ध विराम समाप्त हो गया है और अमरीका जरूरत पड़ने पर और कार्रवाई करेगा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की अंडर 23 महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 पदक पक्के कर लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Melbourne, Australia on the second leg of his three-nation visit. He was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities, Claire O'Neill, upon his arrival yesterday.

मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 5:11 और 8 सेकेंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का। और भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब। और दोस्तों कहते हैं कि रात कितनी भी गहरी हो सवेरा ज़रूर आता है, मुश्किलों के बाद ही इंसान को नया रास्ता नज़र आता है, क्योंकि जब आप मुश्किल हालात में होते हैं तभी आप सबसे बड़े विद्वान साबित होते हैं, जब आप उन मुश्किल हालात को बड़ी ही खूबसूरती से अपनी मेहनत अपनी लगन और अपनी चतुराई से उसे बाहर निकालते हैं। आप जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, मंजिल पाने में बहुत सारी कठिनाइयां रास्ते में आती है, लेकिन उसका डटकर जो मुकाबला करता है वही सच्चा योद्धा होता है। और दोस्तों हर सुबह हर दिन हम इस नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि आने वाला दिन हमारा अच्छा हो, आने वाला वक्त हमारे लिए बेहतर हो। इसी उम्मीद के साथ हम जिंदगी की शुरुआत करते हैं हर दिन हर नई सूरज की रोशनी के साथ। और हर दिन का आगाज हम उस खुदा के नाम से उस ईश्वर के नाम से करते हैं जो सर्वशक्तिमान है, वही सब कुछ करने वाला है, वही हमें देने वाला है, वही हमें जिताने वाला है, वही हमें आगे बढ़ाने वाला है। इसलिए हम जो भी काम करते हैं उस ईश्वर उस खुदा उस गॉड के नाम से करते हैं जो सर्वशक्तिमान है, और उन्हीं से दुआ करते हैं कि हमारी मुश्किलों को आसान कर दे और हमें तमाम परेशानियों से बाहर निकाल दे। ऐसा ही एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है फिल्म पैगाम का, मोहम्मद रफ़ी साहब की दिलकश आवाज़ में, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इसी नगमे के साथ हम आगे बढ़ेंगे भोर सुहानी की इस दिलकश महफिल में।

मुश्किलें आसान कर दे ऐ खुदा। जी हाँ, जिंदगी का सफर हमेशा आसान नहीं होता। कभी रास्तों में मुश्किलें आती हैं तो कभी हालात हमारे हौसले को परखते हैं, लेकिन यही चुनौतियां हमें मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने का जज्बा देती है। इसीलिए हम हर सुबह कोई भी काम करते हैं तो उस खुदा के नाम से, उस ईश्वर के नाम से शुरू करते हैं। हर दिन का आगाज हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, समय बहुत ही बलवान होता है। समय, वक्त एक ऐसा आईना है जिसमें हमारी ज़िंदगी के हर पल की तस्वीर दिखाई देती है। कुछ लम्हे हमें मुस्कुराहट देते हैं, कुछ हमें सीख देते हैं और कुछ हमें पहले से बेहतर इंसान बना जाते हैं। इसलिए गुजरे हुए कल का अफसोस करने के बजाय आज को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी खूबसूरत सोच के साथ हम भी आगे बढ़ेंगे एक और बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ। आवाजें हैं आशा भोसले जी और सुरेश वाडेकर की। कहते हैं, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो इंसान हर अनुभव से सीखता है वो हर दिन अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत बना सकता है। बीते हुए पल यादों का हिस्सा है, लेकिन आने वाले पल हमारी उम्मीद की कहानी।

नहीं लिख सकते हैं। तो आइए आप भी महसूस कीजिए इस पल को और इस जिंदगी के बेहद खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाइए भोर सुहानी के साथ।

दोस्तों कहते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए जीने का नाम नहीं बल्कि दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने का भी नाम है। जब हमारी छोटी सी कोशिश किसी के जीवन में खुशी भर देती है तो वही पल हमारी ज़िंदगी को और भी ख़ास बना देता है। कहते हैं इंसान की असली पहचान उसके पास मौजूद चीज़ों से नहीं बल्कि उसके दिल की नेकी और उसके व्यवहार से होती है। प्यार, मदद और अपनापन बांटने से जिंदगी में एक अलग ही सुकून मिलता है। जिंदगी का असली आनंद तब मिलता है जब हमारी खुशियों में दूसरों की मुस्कान भी शामिल हो। अपने सपनों को पूरा कीजिए लेकिन साथ ही अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्यार और खुशियों की वजह बनिए। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा है बादल फिल्म का, अपने लिए जिए तो क्या जिए। मन्ना डे साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर भोर सुहानी की इस दिलकश महफिल में आपके लिए।